मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 सितंबर सन 2026। सुबह के 5:56:40 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभी श्रोताओं को नमस्कार, शुभ प्रभात।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में ये देश गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये देशगान। लीजिए अब सुनिए हरिओम शरण की आवाज़ में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शर्मा बंधु के स्वर में ये भजन। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति। स्वर संजीव अभ्यंकर का है।

0: श्रोताओं, मंजू भाटिया के गाए इस भजन के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन, आलेख KS राठौर का है, वचन राजेंद्र कुमार का।
1: सत साहित्य ज्ञान का ऐसा खजाना है जो मानव को सद्मार्ग की ओर ले जाता है। सत साहित्य में वो संजीवनी शक्ति होती है जो निर्जीव प्राणी में भी जीवन का संचार कर देती है। अश्लील साहित्य मानव मस्तिष्क को विकृत कर देता है, वो उचित और अनुचित का विश्लेषण नहीं कर पाता, जबकि सत साहित्य उसके मस्तिष्क और हृदय का पोषण करता है। वो मानव के अंतःकरण का परिमार्जन करता है। मन पर तीन प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, तामसी, राजसी और सात्विकी। सत साहित्य रोगी मन की चिकित्सा कर तामसी और राजसी प्रभाव को दूर कर सात्विकता की स्थापना करता है। वो सद्गुरु की भांति मानव को लक्ष्यगामी बना देता है। सत साहित्य के गर्भ में सदैव हित छिपा रहता है। हितेन सहितस्य भाव साहित्यम, वो मनुष्य के ज्ञान चक्षु खोल देता है। सत साहित्य सिखाता है सत्य धर्म और न्याय, निज प्रकाश कीर्ण कर तम को देव भगाए। कीर्ति और रचना भी वही भली मानी जाती है जो जन जन का कल्याण करे। तुलसी ने सच ही कहा है कि कीरति भणित भूति भल सोई, सुर सर सम सब कर हित होई। एक समय एक व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों से घबरा कर मरने जा रहा था। तालाब की सीढ़ी पर पैर रखते ही एक कागज का टुकड़ा पड़ा मिला। उसमें लिखा था, आत्महत्या करना महापाप है, मरणोत्तर तन पाने के लिए तड़पना पड़ता है। इस कागज के टुकड़े ने उस व्यक्ति की आंखें खोल दी और उसे एक महामानव बना दिया। सत साहित्य में विद्वानों, वीर पुरुषों आदि के चिंतन कण होते हैं, जिनसे मानव को अंधकार में रोशनी मिलती है। नम्रता महानता की पहली पहचान है। विद्यासागर जी में सादगी इतनी थी कि उनसे भेंट करने आए व्यक्ति ने उन्हें कुली समझकर अपना बोझा ही ढुलवा लिया। बाद में पता पड़ने पर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा। सत साहित्य के सानिध्य में रहते हुए हमें मित्रों का अभाव नहीं खलता, वो हमारे अंतःकरण को सौंदर्य और शुचिता से भर देता है। वो एक ऐसा वटवृक्ष है जिसकी शीतलता व्यक्ति के दुर्गुणों की तपन को दूर कर सच्चरित्रता और सुख की अनुभूति कराती है तथा भटकते हुए मानव को सच्ची राह दिखाती है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व रचित सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना वीरों का कैसा हो वसंत कायरों में वीरता के स्वर फूंकती है। दूसरी ओर उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के बल और शौर्य का उनका गीत खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी वीरों में नया जोश और उत्साह भर देता है। भारतीय विभूतियों ने विश्व भर में अपने ज्ञान का आलोक विकीर्ण किया है, इससे हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता है। यहाँ के वेद पुराण संत और ज्ञानी विश्व भर में नया उत्साह भरते जा रहे हैं, जिनका एक एक शब्द अनमोल है। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो अनमोल है, शब्दई मोल न तोल। सत साहित्य सदा सत्यम शिवम और सुंदरम का शंखनाद करता है। सत साहित्य सिखाता है सद्व्यवहार सद्भाव, सद्मार्ग को पाए के रहे न कोई अभाव।
0: सद साहित्य विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, आलेख KS राठौर का था, वाचन राजेंद्र कुमार का। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है मानस कांड।

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीदे हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

0: ये थी आज की श्री रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज कार्यक्रम में जानकारी का विषय है धान के प्रमुख कीट एवं उनका नियंत्रण। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह।
1: धान की फसल में मुख्य प्रकार से तीन प्रकार के कीट लगते हैं, जिसमें रस चूसक कीट, छिदक कीट और पत्ती खाने वाले कीट। रस चूसक कीट में हरा फुदका, सफेद फुदका, भूरा फुदका और गंधीबग, ये कीट हैं जो धान के पौधे से रस चूसते हैं। दूसरे कीट हैं छिदक कीट, जो तना छेदक कीट कहलाते हैं, जो तने को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें तीसरे प्रकार के कीट हैं पत्ती खाने वाले कीट। इसमें पत्ती मोड़क, जो कि पत्ती को मोड़ के खाता है, फौजी कीट, हिस्पा और धान का टिड्डा, ये इसके प्रमुख कीट हैं। इन कीटों के द्वारा 40% तक फसल नष्ट हो सकती है। इन कीटों में जो सफेद फुदका और भूरा फुदका धान के मुख्य कीट हैं, ये पत्तियों से रस चूसते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये रस चूसते हैं और धीरे धीरे करके ये मधुरस विसर्जित करते हैं, जिससे पत्तियों पर फफूंद लग जाती है और उन पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाधा आती है। और दूसरे हरा फुदका है, वो भी इसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। इसमें जो गंधीबग कीट है, वो गंधीबग कीट ही एक ऐसा कीट है जो दानों की अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। जब दाने दूधी अवस्था में होते हैं तभी नुकसान पहुंचाता है। इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई सबसे पहले तो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। तो हमें किसी भी किसान के द्वारा प्रकाश प्रपंच का उपयोग करते मैंने आज तक नहीं देखा, जबकि वो सबसे सस्ता उपकरण है, 1000 रुपये में कृषि विभाग द्वारा बाजार से भी खरीद सकते हैं। उससे सबसे ज्यादा फायदा तो ये होता है कि जितने भी कीट होते हैं उसमें से 80% से ज्यादा कीट रात में सक्रिय होते हैं, उनकी सक्रियता रात में ही बढ़ती है। तो जितने भी होते हैं उसमें मरकरी बल्ब लगा सकते हैं या कोई भी सामान्य बल्ब लगा के, जिससे जितने भी कीट उसमें आकर्षित होकर उसमें आएंगे, उसमें नीचे थैली बांध दें या कोई भी उसमें डिब्बा रख दें, जिससे जितने भी कीट होंगे आसपास खेतों में रात के समय जो सक्रिय होंगे, खिंच के वहां पर आएंगे और उसमें आके नष्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरा, यदि हमें इनके लिए कीटनाशक, किसान भाई परंपरागत कीटनाशकों का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन बाजार में इस समय कुछ नए कीटनाशक उपलब्ध हैं, जिसमें फुदका के लिए विशेष तौर से बुप्रोफेजिन एक नई दवा आई है, जो 25 SC, जिसको SC का मतलब है सोल्यूबल कंसेंट्रेट, पानी में घुलनशील, इसकी मात्रा 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर में घोल बनाकर यदि हम छिड़काव करें, तो ये क्या करता है, इस कीटनाशक की विशेषता यह है कि जो कीट होता है उसके जब वो कीट एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो अपनी त्वचा उतारता है, जिस तरह से सांप केंचुली उतारता है, इस तरह से कीट की वृद्धि रुक जाती है, मोल्टिंग बोलते हैं इसको, वो रुक जाती है। तो कीट आगे की अवस्था में प्रवेश नहीं करेगा तो मर जाएगा। एक और खास बात है कि अंडों की संख्या में भी कमी लाता है। एक और कीटनाशक इमिडाक्लोपिरेट 17.8 SL में आता है, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल के किसान वही छिड़काव करें तो भी इससे काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। प्राथमिक अवस्था में जब कीटों का आक्रमण दिखे, किसान को शुरू से ही सचेत रहना चाहिए कीटों के आक्रमण पे, क्योंकि जब कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो जाती है तो कीटों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कीटों की संख्या एक लिमिट से ज्यादा जाती है तो कीटनाशक भी प्रभावी नहीं होते। इसलिए ध्यान रखें, किसान भाई समय रहते कीटों का नियंत्रण करें और कीटनाशक सबसे अंतिम अवस्था में इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में यदि कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें प्रतिरोधकता उत्पन्न होगी, कीटनाशक असरकारक नहीं होंगे और किसानों को कीटनाशकों का प्रयोग बार बार करना पड़ेगा। धान का सबसे ज्यादा प्रमुख कीट है उसको येलो स्टेम बोरर या पीला तना छेदक कीट कहलाता है। इसकी इल्ली पीली होती है इसीलिए ये तना छेदक कीट कहलाता, पीला तना छेदक कहलाता है। इसकी खास बात यह है कि नर्सरी अवस्था से जब पौधे को नर्सरी में तैयार करते हैं वहां से लेके जब तक फसल बड़ी होती है तब तक ये नुकसान करता है। ये तने के अंदर घुस जाता है जिससे तना के मध्य शरा सूख जाती है और बाली आने की आक्रमण होने पर अवस्था में ये पूरी धान बिना दाने की हो जाती है, जबकि बीज के तने को खींच के निकालते हैं पकड़ के तो निकल के आसानी से बाहर आ जाता है। ये पीला तना छेदक का आक्रमण स्पष्ट दिखाई देगा किसान भाई को। इसमें दूसरा जो छेदक कीट है तना छेदक, वो गोलमेज है, गंगई मक्खी जिसको बोलती है। इसको गोलमेज इसलिए कहते हैं कि ये गोल मतलब होती है गठान, ये तने के अंदर गठान पैदा करती है। जो कीट ग्रसित पौधे हैं उन्हें बालियां नहीं आती और कल्ले फूटने की अवस्था में इसमें सर्वाधिक नुकसान होता है। पत्तियां खाने वाले कीट मुख्य रूप से पत्ती मोड़क, स्किपर, स्किपर से मतलब जो कूद के चलता है, फौजी कीट, हिस्पा और धान का टिड्डा। जो पत्ती मोड़क कीट है, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि पत्ती को मोड़ के, पत्तियों को दो चार पत्तियों को मोड़ के उसके अंदर खाता है, पत्तियों को मोड़ के जाला बना लेगा और उसके अंदर खाना शुरू करता है, मोड़ के अंदर रहकर पत्ती को खुरच कर खाता है। इल्ली सफेद झिल्लीदार हो जाती है और झुलसी दिखाई देगी, उसमें क्लोरोफिल जो हरा पदार्थ रहेगा वो नहीं रहेगा और इस तरह से पत्ती मोड़क नुकसान पहुंचाता है पत्ती के अंदर ही अंदर रहकर। खड़ी फसल में मैं

0: चाहता हूं कि तना छेदक पत्ती मोड़क के लिए जो नवीन कीटनाशक है उसमें किसान भाई क्लोर एंट्रा निलीप्रोल 18.5 SC की 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से दवाई का छिड़काव करें।
1: श्रोताओ, कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय था धान के प्रमुख कीट एवं उनका नियंत्रण। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
3: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम। 26 जनवरी से 2400 घंटे उपलब्ध है DTH पर, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
4: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार होंगे।
7: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। न्यूयॉर्क नगरे आयोजितायाः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81 सत्रस्य उच्चस्तरीय उपवेशने भारतेन रंगभेदस्य, प्रजातीय विभेदस्य, परदेशी द्वेषस्य तथा तत्सम्बद्धानां असहिष्णुतानां उन्मूलनार्थं स्वकीया असंदिग्धा प्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता। DDPA इति दुर्बन घोषणा तथा कार्ययोजनायाः अंगीकरणस्य 25वार्षिकस्य स्मरणावसरे भारतस्य आधिकारिकं वक्तव्यं वितरता विदेशकार्यमन्त्रालयस्य सचिवेन सीबी जॉर्ज इत्यनेन जागतिक समतायाः मानव प्रतिष्ठायाः च संवर्धनार्थं भारतस्य पक्षः प्रकटीकृतः। विदेशकार्यमन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन उक्तं यत् सचिवेन सर्वेषां कृते समानतायाः गौरवस्य च संरक्षणार्थं अमोघ संकल्पः पुनः संप्रख्यापितः। ओएनजीसी इत्यायोगस्य अन्वेषण निदेशकः ओम प्रकाश सिंहा संप्राह यत् E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल इंधनम वैदेशिक तैल आयातम अधिक मात्रायां घटयित्वा देशस्य आत्मनिर्भरतां वर्धयिष्यति। अहमदाबादे भारत ऊर्जा सप्ताह 20-27 इत्यस्य पूर्वालोकन प्रसंगे भाषमाणः सः अवोचत् यत् E20 इंधनम एकं समाह्वानम् अस्ति, किन्तु आधुनिक प्रविधिना अस्य परिहारो भविष्यति। सः स्पष्टं न्यगादीत् यत् पश्चिमैशिया युद्धस्य कारणात् जगति देशैः वैदेशिक निर्भरता न्यूनीक्रियते। अस्मिन् काले भारतस्य वर्धमानाम् ऊर्जा आवश्यकतां विचार्य भारत ऊर्जा सप्ताहः एका प्रमुखा पीठिका वर्तते। भारतीय रेल विभागेन पूर्वोत्तर रेल विभागस्य वाराणसी मण्डले 14,600 किलोमीटर परिमिते क्षेत्रे कवच 4.0 इति प्रणाल्याः स्थापनायै 23,200 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। अनुमोदितया परियोजनया वाराणसी मण्डलस्य चिह्नितेषु अवशिष्टेषु खण्डेषु कवच 4.0 इति प्रणाल्याः विस्तारो भविष्यति, येन रेल परिचालनाय उपलब्धं सुरक्षातन्त्रं सुदृढं भविष्यति। उपक्रमोयम् अधिक सुरक्षितं विश्वसनीयं च रेल परिचालनं सुनिश्चेतुं तथा सम्पूर्णे भारतीय रेलजाले स्वदेशीय कवच प्रौद्योगिक्याः विस्ताराय क्रियमाणानां प्रयासानां समर्थनं करिष्यति। भारतेन स्वीय वस्तूनां सेवानां च आहत्य निर्यातस्य परिमाणं 63.8 बिलियन डॉलर परिमित धनात् वर्धयित्वा 1 ट्रिलियन डॉलर परिमितं विधातुं उच्च लक्ष्यं विनिर्धारितम्। ह्यः मुंबय्यां संजातस्य भारत संयुक्त अरब अमीरात निवेश संबंधी उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबलस्य 14th उपवेशनानन्तरम् अस्य ऐतिहासिक लक्ष्यस्य घोषणाकारी। वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोदीरितं यत् जागतिक संकटेषु सत्यपि प्रवृत्तस्य वित्तीयवर्षस्य प्रथम षट् मासेषु पण्यनिर्याते 15% अधिकं वृद्धिः समवापि। जापानदेशस्य आइची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक प्राप्तिक्रमः ह्यः अपि अनुवर्तितः। लक्ष्यवेधक क्रीडा क्रिकेट कुराश मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। भारतेन पदकसंख्यायाम् 8 पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। पुरुषाणां कुन्तक्षेप स्पर्धायां भारतस्य 2 पदके प्राप्ते। यशवीरसिंहेन रजत पदकं तथा रोहित यादवेन कांस्य पदकम् अवाप्तम्। इति वार्ताः।
8: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्र हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे।

0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस बुधवार से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तु, कृषि कारोबार, खुदरा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे कारोबारियों, स्टार्टअप और नवोन्मेषी कंपनियों के साथ परिचर्चा में भी हिस्सा लेंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि UAE ने भारत में अब तक करीब 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और जल्द ही 25 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश भी करने जा रहा है। हमारा दीर्घकालिक निवेश का लक्ष्य 100 अरब डॉलर है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CV जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर POC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत, 21 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हमारे श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं सुबह 7:20 से, समाचार प्रभात प्रातः 8 और मॉर्निंग न्यूज़ 8:15 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन। कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ हृदय चिकित्सक रविशंकर डालमिया से सुमित गौतम की बातचीत आप सुन पाएंगे। प्रातः 9 कार्यक्रम लेकर आएंगे गुड मॉर्निंग ग्वालियर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 स्टूडियो से हम प्रसारित करेंगे नासिर अहमद का मैंडोलिन पर बजाया राग अहिर भैरव।

जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे सुबह 10 बजे। 10:05 पर आप सुनेंगे व्हाट्सअप फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। फिल्म संगीत दिन में 12 बजे भी आप सुन पाएंगे। 12:30 पर कार्यक्रम होगा संग्रहालय से। दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करेंगे। ये तीनों ही कार्यक्रम इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। दोपहर 2 बजे सुनेगा फिल्म संगीत। दोपहर समाचार अनुप्रसारित होंगे। दोपहर 2:15 पर चित्रपट संगीत। दोपहर 2:30 पर आप सुन पाएंगे।

और अब श्रोताओं एक संक्षिप्त जानकारी। सांध्यकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। शाम की सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे, 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग लेकर आएंगे शाम 6 बजे। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार शाम 7:10 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे। शाम 7:30 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम होगा सुर्खियों में। 8:15 पर फिल्म संगीत का हमारे श्रोता आनंद ले पाएंगे। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम कहकशा। और रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मों फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन सकते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम पे 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी तैयारियों में केंद्र राज्य समन्वय पर दिया जोर। सारंगपुर में सेवा यात्रा का राज्य मंत्री गौतम डेटवाल ने किया स्वागत और प्रदेश की चार ऐतिहासिक धरोहरें यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल। अब समाचार विस्तार से। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता, जबकि पिंकी बलहारा ने कुराश के 78 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से रबी सीजन की तैयारियां समय पर पूरी करने और खेती की योजना आंकड़ों के आधार पर बनाने को कहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश और पानी की कमी के बीच केंद्र और राज्यों के बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए केंद्र की टीमें जमीनी आकलन करेंगी। श्री चौहान ने कहा,
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: प्रदेश की सारंगपुर में वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रही सेवा यात्रा का राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कल स्वागत किया। उन्होंने पचोर से सारंगपुर तक यात्रा में हिस्सा भी लिया। ये यात्रा काशी विश्वनाथ और वडनगर के हाटकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए निकाली जा रही है। इस दौरान उड़नखेड़ी में यात्रियों का सम्मान किया गया और पौधे लगाए गए। राज्य मंत्री ने स्वसहायता समूह की महिलाओं और लखपति दीदियों से भी बातचीत की। भोपाल में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों ने डीजीपी कैलाश मकवाना से मुलाकात कर पुलिसिंग के अलग अलग पहलुओं पर मार्गदर्शन लिया। डीजीपी ने तकनीक के इस्तेमाल, साइबर अपराध, सामुदायिक पुलिसिंग, नक्सल समस्या और कानून व्यवस्था से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने सिंहस 2028 की तैयारियों और नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की भी जानकारी दी। डीजीपी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और जरूरत के समय जनता की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने को कहा। इंदौर में ग्रामीण इलाकों में कचरा प्रबंधन को लेकर नई कार्ययोजना तैयार की जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के सभी 610 गांवों में घर घर से कचरा उठाने और उसकी वैज्ञानिक तरीके से निपटारे पर चर्चा हुई। इसके लिए गांवों को 56 क्लस्टर में बांटकर पीपीपी मॉडल पर काम करने की योजना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इंदौर में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जल संरक्षण के कामों की भी समीक्षा की गई। भोपाल में कक्षा 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 153 विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें नई शिक्षा नीति और एनसीईआरटी की नई किताबों के मुताबिक पढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जा रही है। गतिविधियों के जरिए बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाने और पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के चार ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में जगह मिली है। इनमें उदयगिरी गुफाएं, बाघ गुफा चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला और चंबल घाटी के मंदिर समूह शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को अब वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री ने विरासत के संरक्षण और उसे दुनिया तक पहुंचाने के प्रयासों को और मजबूत करने का आह्वान किया। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के जल्द समाधान के लिए चलाए जा रहे संपर्क अभियान 2026 को अच्छी सफलता मिली है। 14 मई से भोपाल और ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में करीब 6000 शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में 266,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही

समाधान किया गया है। इनमें गलत बिजली बिल, मीटर, वोल्टेज और ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याओं के साथ नाम बदलने और नए कनेक्शन जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के तहत कल आंगनवाड़ी मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी

संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की वर्चुअल मौजूदगी में हुए समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के संगीत और उनकी बहुमुखी प्रतिभा को याद किया। प्रदेश में खरीफ फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन जारी है। अब तक 40,454 किसान पंजीयन करा चुके हैं। किसान 10 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश में 1100 से ज्यादा पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विकास में सीएसआर की भागीदारी बढ़ाने के लिए कल भोपाल में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव होगा। इस सम्मेलन में आंगनबाड़ी, पोषण, स्वास्थ्य, शुरुआती शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कॉरपोरेट निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज बारिश का दौर अब थमने वाला है। अगले 4 दिन किसी बड़े मानसूनी सिस्टम के सक्रिय होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग में तेज धूप का असर ज्यादा रहेगा। बुधवार गुरुवार से प्रदेश में मानसून की विदाई भी शुरू होने वाली है। सबसे पहले उज्जैन और ग्वालियर संभाग से मानसून लौट सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ जिलों में तेज धूप खिलेगी जबकि बाकी हिस्सों में बादल और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। भोपाल में सहकारिता क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला तैयार हो गई है जहां आम लोग भी दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच करा सकेंगे। करीब 12 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनी इस लैब में 100 से ज्यादा मानकों पर जांच की जाएगी जिसमें मिलावट, कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स और हैवी मेटल्स जैसी चीजें शामिल हैं। जल्दी यहाँ जाँच की सुविधा शुरू होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज विश्व हृदय दिवस है और इस बार संदेश है कि आप दिल की धड़कन से जुड़े किसी भी संकेत को नजरअंदाज ना करें। WHO के मुताबिक 2022 में दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों से हुई है। कटनी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम और वीवीपैट के जिला स्तरीय वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण आज शाम 5 बजे किया जाएगा। खंडवा में नवचंडी मंदिर परिसर में 2 दिवसीय निर्माण की कलाओं का उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान निर्माण की लोक कला, लोक संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। धार में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए रवि 2026-27 की तैयारियों के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र में उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना जिला खनिज प्रतिष्ठान की कल संपन्न हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में जनप्रतिनिधि सदस्यों से प्राप्त सुझाव पर चर्चा की गई। उप निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आगरमालवा जिले की नलखेड़ा जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 6 और 11 में सदस्य और सुसनेर नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। झाबुआ के गौतम गामण ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर वाहन चालक से स्वयं के व्यवसाय के मालिक बनने तक का सफर तय किया है। मुरैना में निराश्रित गौवंश को लंपे स्किन डिसीज से बचाव के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। डिंडौरी में 1 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के कान्हा परिक्षेत्र की नकती घाटी बीट के कक्ष क्रमांक 138 में कल एक 11 माह की मादा बाघ शावक का शव मिला है। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच की और डाक स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
2: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म आराधना का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार एस टी वर्मन।
2: सो योर प्लेस और माइन।
3: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
2: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
3: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
2: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों का गाया ये गीत फिल्म अर्पण से। बोल आनंद बख्शी के थे और इसे संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम नमक हलाल। अर्ष भोसले, बप्पी लहरी और शशि कपूर की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं अनजान और इसे संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: एक कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म नगीना का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी के थे और इसे संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए अब लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण। रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और इसे संगीत से संवारा है आर डी वर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म लोफर में। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और इसे संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए, अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। स्वर एक बार पुनः लता मंगेशकर का है। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत है और इसे इसके लिए धुन तैयार की है रविंद्र जैन ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र

0: से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम

0: पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
2: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
1: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
3: नाम है चुन्ना हल्दा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उलदार है। उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
1: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
4: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स

0: में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को दो पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि किशोरियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े चार और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोक सत्य ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर टू कंसीडर एग्जाम्पटिंग क्लास 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम CBSE's 3-language पॉलिसी दिस ईयर। Indian Navy to host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. Delhi government prepares tougher action plan to control air pollution in the national capital during winter season. US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. And Indian men's cricket team advanced to the semi-finals at the Asian Games in Japan. The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the 3-language framework that has been granted to students of Class 7. We have more from a correspondent.
4: A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bharti appearing for the Centre and the CBSE to grant the same relaxation granted to students of Classes 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. On September 17, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of 3 languages, including 2 native Indian languages for Class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE's statement,

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं वरिष्ठ हृदय चिकित्सक रविशंकर डालमिया से सुमित गौतम की बातचीत।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डालमिया हार्ट सेंटर ग्वालियर।

0: हृदय यानी कि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है और आज है विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। इस अवसर पर हमारे साथ हैं ग्वालियर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविशंकर डालमिया, डायरेक्टर डालमिया हार्ट सेंटर ग्वालियर। स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में।
1: तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी टीम को।
0: कई सारे सवाल हमारे श्रोताओं के मन में भी उठ रहे होंगे आपके कार्यक्रम को लेकर कि आज हम किस तरह की बातें करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूंगा कि अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए।
1: देखिए, अपन जब बात करते हैं हृदय रोग की, तो जो हार्ट डिसीज़ है, जो किसी ज़माने में किसी व्यक्ति में 60 साल या 70 साल की उम्र पे हुआ करती थी, वो एक दशक के अंदर हमने बड़ा एक बदलाव देखा है कि अभी 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल के जो युवा हैं, जिनमें हम सोचते नहीं थे कि कभी हार्ट की बीमारी हो सकती है, वो बहुत कॉमनली सामने देखने आ रही है। तो जो हार्ट डिसीज़ है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल मतलब कि जैसी जीवन शैली आपकी होती है और वैसे वो आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करती है। जब बच्चा पैदा भी होता है तो भी अगर आप दिल की नसें की जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें छोटे छोटे से प्लाग्स बनने शुरू हो जाते हैं। हार्ट अटैक एकदम से नहीं होता किसी को। तो आपने कितने साल में जीवन शैली आपकी कैसी रही है पिछले 30-25 साल के अंदर, उससे आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो डिसाइड होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने हफ्ते में 2 दिन कुछ कर लिया, 5 दिन हमने उसको छोड़ दिया। तो जो लाइफस्टाइल में जो चेंज है, एक तो ये परमानेंट होना चाहिए। कुछ लोग देखा मैंने कि एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो महीने में 5 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, और जितना 10 दिन किया उससे ज़्यादा 10 दिन में खा लिया या उसको ख़राब कर लिया। तो उससे इस तरह की दिनचर्या हमारे हार्ट के लिए हानिकारक है। तो अब क्या करना चाहिए लाइफस्टाइल में, एक डाइट हम बोलते हैं, सेकेंड इज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर इसमें दोनों तरह की एक्सरसाइज रिकमेंडेशन की गई हैं, जिसमें कि जिसे हम कार्डियो बोलते हैं, कार्डियो वर्कआउट है, उसमें बोलते हैं कि आपको 40 मिनट वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक करना है, तेज प्रतिदिन करना है, उसमें हफ्ते में एक भी दिन नहीं छोड़ना है आपको, और हफ्ते में 2 बार आपको जो आइसोमेट्रिक बोलते हैं हम, जो वर्कआउट बोलते हैं जिम वाला, मसल वेट्स वाला, वो आपको हफ्ते में 2 दिन करना है, एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो ये एक संपूर्ण एक्सरसाइज है जो हर व्यक्ति को छोटी एज से ही स्टार्ट करना चाहिए।
0: जो सर आपने कहा कि इस दौर में 18 से 20 साल के लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम शुरुआत हो चुकी है, क्या अंतर समझते हैं कि पुराने दौर में और इस नए दौर में क्या एक अंतर आया है जीवन शैली को लेकर और एक वातावरण को लेकर या खान पान को लेकर, किस तरीके का चेंजेस आए हैं जिनके कारण इस तरह की बीमारियाँ कम उम्र में भी देखने को मिल रही हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कि इसके लिए हम युवाओं को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए जो वयस्क हैं, जो देश के निर्माता हैं, वही दोषी हैं, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें इतने केमिकल्स और पेस्टिसाइड मिले हुए हैं, और जो हम हमारा ले रहे हैं उसके अंदर इतने ज़्यादा सब्सटेंसेज हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हमारे हार्ट और हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। और दूसरा, हमारी जो जीवन शैली में प्रोसेस्ड फूड जिसे बोलते हैं, अब प्रोसेस्ड फूड क्या है, एक खाना प्रकृति ने हमें दिया और इंसान ने उसको प्रोसेस कर दिया। तो ऐसा बोलते हैं कि आपका जो डाइट है उसमें 70% जो फूड है, 70% पोर्शन है, वो नेचुरल होना चाहिए, जो कि किचन से नहीं निकला होना चाहिए, सीधे पेड़ से आपकी थाली में आए और उसको खा लीजिए। तो इसको हम हेल्दी फूड मानते हैं। पका हुआ खाना आपकी डाइट का मिनिमम पार्ट होना चाहिए। अब पके हुए में क्या है कि अगर आपने किसी भी चीज़ के अंदर, समझ लीजिए उसने 10 दिन पहले आपने खाना बनाया या मार्केट में अवेलेबल हुआ, उसमें आपने उसको प्रिजर्वेटिव करके प्रिजर्व कर दिया, और उसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव हैं, स्पेशली नॉनवेज फूड है, अगर नॉनवेज फ्रेश नहीं है, प्रिजर्वेटिव हैं, तो वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही जो वेज फूड भी हैं, अगर आप जो पैक्ड फूड जिसे बोलते हैं, चिप्स हैं और कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, इसके अंदर भी इस तरह के सब्सटेंसेस, केमिकल्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए अच्छे नहीं हैं, जो हमारे स्पेशली डायबिटीज़ ऐसे पेशेंट्स में जो कि ऐसे खाना कंज्यूम करते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांस रहते हैं।
0: अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं ऊपर से स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक प्रॉब्लम होती है। कई बार हम लोगों ने भी वीडियोज़ में भी देखे कि जिम करते करते कोई युवा, उसको अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया और वो एडमिट हुआ और वो वहीं डेथ हो गई। तो मेरा सवाल ये है कि ट्रिगर फेस कहाँ पे है जहाँ से हम ये समझने लगे कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है और जिसको लेके हमको मेंटेन करना शुरू कर दें?
1: देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले तो कोई व्यक्ति ये समझने को तैयार नहीं है कि ये बीमारी उसको हो सकती है। तो ये बीमारी मैं कहना चाहूँगा 50-55 साल के ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये 100% चांस है कि हर व्यक्ति को हार्ट की बीमारी होने के चांस ऑलमोस्ट 100% है। तो अब उसको कितनी एज तक डिले कर सकते हो? किसी को 70 साल की एज पे हो रही थी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को 25 साल पे हो जाती तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए लक्षण सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अपने रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो हार्ट डिसीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हम बोलते हैं शुगर, डायबिटीज़। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसको हार्ट की बीमारी छोटी एज पे होनी है, और पर डिफ्यूज़ तरह की बीमारी होती है जिसमें सभी तरह की नसें इन्वॉल्व होती हैं। तो शुगर को आप नियमित जाँच कराएं, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तब भी जाँच कराएं। दूसरा है ब्लड प्रेशर। कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बहुत सालों से बने रहता है, उन्हें लगता है कि दवा शुरू हो जाएगी मेरी तो मैं क्यों जांच कराऊं या मैं दवा क्यों खाऊं। लेकिन जब वो दवा शुरू करता है तो जब तक इतना डैमेज ऑलरेडी बॉडी में हो चुका होता है कि वो रिपेयरेबल नहीं होता। तो अगर रिस्क फैक्टर्स में शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, तंबाकू का पदार्थ है, और लाइफस्टाइल अगर किसी की डिसऑर्डर्ड है, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर में आता है। ये ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपके माँ बाप के अंदर हार्ट की बीमारी है, जैसे कि आपकी एज है, जैसे कि आपकी फैमिली में एक प्रॉब्लम है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो हर व्यक्ति को अपने रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने चाहिए। उसके बाद में आपको ये देखना है कि मुझे कोई सिम्टम तो नहीं है। सिम्टम नहीं होने के लिए आप नियमित जाँच कराएं, साल में एक बार हम बोलते हैं कि अपने हार्ट को, बाकी ब्लड टेस्ट कराएं, और एक्सरसाइज अगर आप डेली कर रहे हो तो आपको जब ऐसा लगे कि ये एक्सरसाइज करने में पहले मुझे दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब मैं अगर 20 मिनट चल रहा हूँ या 25 मिनट चल रहा हूँ तो या मेरी छाती में भारीपन है, या सांस फूल जाती है, या मुझे रुकना पड़ रहा है, तो ये अर्लीस्ट सिम्टम है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है।
0: इनको नोटिस करते
1: हैं, इसको नोटिस करें और नियमित जांच करें, प्रॉपर परामर्श लें, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं।
0: पिछले कई वर्षों से सरकार पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर भी काफ़ी ध्यान दे रही है, तो क्या समझ में आता है कि पारंपरिक खाद्य पदार्थ किस तरीके से हमारी बॉडी की बायोलॉजिकली किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं? जैसे सुनने में पहले आता था कि ज़्यादा घी खाया तो हार्ट की बीमारी हो जाती है, ये भी बहुत दिनों तक चला, तो क्या इनमें सच्चाई है या फिर कोई इस तरह की भ्रांतियाँ हैं?
1: नहीं, घी को मैं इतना ज़्यादा हार्ट की बीमारियों के लिए दोषी नहीं देना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैदा है, शक्कर है, गेहूं है, जो आटा है, जो स्पेशली ये जो ऐसे फूड्स हैं जो कि शरीर में खाने के बाद में शुगर का स्पाइक करते हैं सीधे, वो ज़्यादा डेंजरस हैं। बल्कि घी, जैसे हम पुराने ज़माने में हम रोटी खाते थे तो उसमें घी लगाते थे, वो बहुत अच्छा है। इसलिए लगाना चाहिए कि जब आप रोटी के साथ में घी ला के खा रहे हो तो जो घी है वो शुगर नहीं भरने देता आपकी, एकदम से स्पाइक नहीं आने देता
0: जी।
1: तो इसीलिए जो पुराने ज़माने खाना बड़ा अच्छा हुआ करता था, लेकिन उसको समय के साथ लोगों ने चेंज कर दिया और घी को बदनाम कर दिया। अगर घी शुद्ध है तो अगर गाय का आप देसी घी खा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, सरसों का तेल हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा है, इसके अलावा ऑलिव ऑयल है, अगर आप उसको बिना गर्म करें उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे वाइट शुगर है, इवन ब्राउन शुगर भी है, मैदा है, और आप आटा है, चावल है, ये सब चीज़ें, ये शायद मुझे लगता है कि ये ज़्यादा डेंजरस हैं, और प्रोसेस्ड फूड ये ज़्यादा डेंजरस है हमारे हार्ट के लिए।
0: आजकल सीड खाने के कई सारे प्रचलन चले हैं, कि कई सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं, तो उनमें क्या है कि मतलब किस तरीके से वो काम करता है हमारी बॉडी में?
1: सीड्स में क्या है कि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, और अब हार्ट के लिए ही नहीं बाकी पूरी बॉडी के लिए कार्डियो प्रोटेक्टिव माना गया, तो इन सबका उपयोग करना चाहिए। लेकिन जो हमारा पारंपरिक भोज है वो भी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। पुराने ज़माने में जो उन्होंने खाना बनाया हुआ है अगर उसकी तरह से आप खाना खाएं जैसे पहले ज़माने में क्या करते थे और मेहनत करें तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं।
0: आज के जो दौर है उसमें मोस्टली जो फिटनेस है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, लोग जिम भी जाते हैं, वर्कआउट भी करना शुरू कर दिया है। वर्कआउट को लेके किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए कि प्री वर्कआउट, वर्कआउट और वर्कआउट के बाद किस तरीके के जीवन शैली अपन अपना सकते हैं?
1: मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वर्कआउट के पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटे कुछ आपने खाया ना हो भारी खाना। और सबसे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग को बुखार है या कोई दवाई का सेवन कर रहे हैं, मुझे एंटीबायोटिक खा ली उन्होंने, उसके बाद में भी जिम चले गए, तो अगर आपको कोई बीमारी है, आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, उल्टी दस्त है, फीवर है, कोई वायरल इन्फेक्शन है बॉडी में, तो उस समय जिम को एब्सोल्युटली अवॉइड करना चाहिए पहला। तीसरा, जब भी वर्कआउट स्टार्ट करें एटलीस्ट 20 से 30 मिनट तक आपको पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। सडनली मैंने देखा बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं सीधे जाके वेट उठाना स्टार्ट कर देते हैं, तो बॉडी वार्म होनी चाहिए जिससे कि हार्ट पे एकदम से लोड ना आए। तो 20 मिनट 25 मिनट पहले आप अपनी बॉडी को गर्म करें, एक कार्डियो करें, और ऐसी कूलिंग भी बोलते हैं जब आपने पूरा वर्कआउट कर लिया है तो बॉडी को 10-15 मिनट रिलैक्स भी करना है, तो उसके साथ में आपकी डाइट है और हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड है तो कभी एक्सरसाइज ना करें।
0: आपने कहा कि 55 साल के बाद इस तरह की जो हार्ट की बीमारियाँ हैं उसका एक खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और मनुष्य को कभी ना कभी वो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। अगर हम ये कहें कि प्रिकॉशन के तौर पर कि 55 या 50 की उम्र के बाद हमें में कौन सी जांचें रेगुलर करानी चाहिए, किस तरह से हमें डॉक्टर से लगातार कितने अंतराल में कंसल्ट करते रहें कि हम अपने हार्ट के जो स्थिति है उसको हम जांचते रहें कि कैसा है ये हमारा।
1: तो मुझे लगता है कि अब तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस भी आई हैं, उसमें भी वो बोलते हैं कि 30 वर्ष की उम्र, क्योंकि इंडिया में थोड़ी सी हार्ट डिजीज़ पहले हो रही है, तो 30 वर्ष की एज के बाद में हर व्यक्ति को सबसे इम्पोर्टेंट जाँच है शुगर
0: जी।
1: आप HbA1c होता है जो कि पिछले 6 वीक्स की शुगर जो आपकी एवरेज है उसके बारे में बताता है आपको, तो एक शुगर की जांच कराएं, कोलेस्ट्रॉल अपने चेक करते रहें हर 6 महीने के अंदर, और अगर हार्ट की कोई टेस्ट करना है तो ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं जैसे स्ट्रेस टेस्ट है
0: जी।
1: और ECG ये साल में एक बार नियमित तौर से कराएं।
0: ECG, इको, TMT और एंजियोग्राफी जैसे जांचों का मतलब किस तरीके से ये काम करती हैं और हार्ट को की किस तरह की चीज़ों के बारे में ये पता लगाती हैं?
1: देखिए, ECG एक प्रारंभिक जांच है और ECG ऐसी जांच है जो कि हर जगह अवेलेबल है
0: जी जी।
1: बट ECG की एक प्रॉब्लम ये है कि अगर व्यक्ति को कोई ऐसा ब्लॉकेज है तो वो ECG में नहीं आता। ECG में चेंजेस जब भी आएंगे जब काफ़ी एडवांस स्टेज हो जाएगी, मतलब पेशेंट को अगर सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, ब्लॉकेज ऑलमोस्ट 99% बहुत ज़्यादा है, तब जाके ECG में शो होना शुरू होता है। इनिशियल स्टेज पे ECG बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इसीलिए हम लोग स्ट्रेस टेस्ट करते हैं जब एक्सरसाइज कर रहा है उस समय ECG में कोई खराबी तो नहीं आ रही है। और ECG जांच उनके लिए बहुत अच्छी है जिनके की जो पल्स की डिसऑर्डर है, एरिथमिया जिसे बोलते हैं, कि धड़कन या तो अनियमित है या बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ECG बेस्ट है
0: जी।
1: ECG नॉर्मल है तो हम ये नहीं बोल सकते कि हार्ट की बीमारी नहीं है, उसके लिए फिर और हमारे टेस्ट होते हैं जैसे कि ट्रेडमिल टेस्ट है जिसमें हम ECG रिकॉर्ड करते रहते हैं और व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज के समय हार्ट में कितनी ऑक्सीजन जा रही है वो हम उसे ECG देख के हम देख सकते हैं कि उसमें ऐसा कोई ब्लॉकेज होने के चांसेस तो नहीं है। तो ट्रेडमिल टेस्ट ज़्यादा स्पेसिफिक है ECG से, और लेकिन इससे भी 100% नहीं हम रूल आउट कर सकते कि किसी को ब्लॉकेज है कि नहीं, लेकिन उस पर रोशनी डाली जा सकती है। तीसरी जाँच आपने इकोकार्डियोग्राफी के बारे में बोला है, तो इको एक जैसे अल्ट्रासाउंड होता है पेट का, ऐसे हार्ट का अल्ट्रासाउंड है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हार्ट के वैल्व हैं उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, कोई सिकुड़न तो नहीं है, या हार्ट की जो पंपिंग पावर है, मांसपेशियां हैं, वो कमज़ोर तो नहीं है, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दिल में ऐसा कोई छेद तो नहीं है, तो इन सब के लिए इकोकार्डियोग्राफी की जांच है। और इको से भी अपन ब्लॉकेज के बारे में पता नहीं कर सकते, ये पता कर सकते हैं कि हार्ट में कितना डैमेज हुआ है या अटैक हुआ है कि नहीं पहले। और तीसरी जाँच जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे हम एंजियोग्राफी बोलते हैं, एंजियोग्राफी ऐसी जाँच है जिससे कि पेशेंट का जो ब्लॉकेज है उस बारे में पता कर सकते हैं और उसका रिस्क क्या है आगे और क्या इलाज होना है, ये संपूर्ण जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन है ये हमें एंजियोग्राफी द्वारा मालूम चलती है।
0: श्रोताओं, विश्व हृदय दिवस पर हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविशंकर डालमिया से। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि खान पान और जो एक्सरसाइज वगैरह है इनसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको अपने जीवन शैली में किस तरीके का बदलाव लाना चाहिए कि वो अपने हार्ट को कम से कम सुरक्षित रख सके?
1: नहीं, घुटनों की प्रॉब्लम से मुझे लगता है साइकिल तो हम बोलते ही हैं
0: जी, जी।
1: घुटनों के जिनको प्रॉब्लम है एक्सरसाइकिलिंग उन्हें करना चाहिए, घर पर भी कर सकते हैं अगर बाहर ना जाना चाहें, उसके अलावा अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो लोग बैठे बैठे भी वेट्स कर सकते हैं, और उसके लिए जितनी वॉक कर पाएँ वो तो खैर अपने उसके लिए अच्छा है ही है, बाकी फिर उनको योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और उसमें भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है, और एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है।
0: पिछले कई साल पहले हमने एक बड़ी महामारी को देखा और इसने दुनिया को एक अलग टर्म दिया कि प्री कोविड काल, कोविड काल और पोस्ट कोविड एरा, तो आपको क्या लगता है कि पोस्ट कोविड एरा में जो कई सारी प्रॉब्लम्स हम सुनते आए हैं कि लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्या इम्पैक्ट है उसका हमारी पूरी इस बदलाव में?
1: नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है कि हेल्थ हमारे लिए कभी भी शुरू से हेल्थ की इम्पोर्टेंस कभी हमने दी नहीं अपने स्वास्थ्य को कभी भी, ना गवर्नमेंट ने दी ना किसी व्यक्ति ने दी, तो हम एक जो विस्फोटक स्थिति में पहले से ही बढ़ रहे थे आगे, और कोविड ने उसको और विस्फोटक बना दिया
0: जी।
1: तो हम बिल्कुल टिप ऑफ आइसबर्ग पर बैठे हुए थे और वो एकदम से विस्फोट हुआ और कैंसर की बीमारियाँ हैं, हार्ट की हैं, ब्रेन की, किडनी की, मुझे लगता है घर में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कैंसर ना हो, जहाँ पे हार्ट की बीमारी ना हो, तो ये कोविड से हम इसको कोरिलेट नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि हमारी जीवन शैली ही इतनी ख़राब हुई है कि उसमें हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो और कोविड के बाद में हमने देखा कि एक पॉजिटिव चेंज जो मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं, पहले पेशेंट्स जाँचें नहीं कराते थे लेकिन हर एक पेशेंट जांच करा के ही लेके आते हैं हमारे पास, तो वो एक चेंज आया पॉजिटिव, हेल्थ के लिए प्रति थोड़े से फिट हैं। तीसरा, मैंने यंग जनरेशन जो जिन्होंने कोविड देखा वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने हेल्थ के लिए अवेयर हैं, वो लोग जिम भी अच्छा कर रहे हैं, उनकी डाइट अच्छी है और बाहर का भी वो लोग कम खाते हैं। तीसरा मैंने देखा है कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, वो हमारी नई जनरेशन में कम है एज कम्पेयर्ड की जो 30-40 साल के जो व्यक्ति हैं। तो जो यंग जनरेशन है ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, और मुझे लगता है ये कोविड ने हमें पार्ट भी सिखाया है। लेकिन कोविड की वजह से हार्ट की बीमारी बढ़ी हो ऐसा नहीं मानता मैं।
0: अल्कोहल और स्मोकिंग की आपने बात की, ये किस हद तक प्रभावित करता है हमारी पूरी हार्ट हेल्थ को?
1: मतलब कि स्मोकिंग और टोबैको जिसे बोलते हैं तंबाकू का सेवन, ये तो बिल्कुल ही हार्ट की हेल्थ के लिए और पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए डेंजरस है, जिसका कि कोई सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी फॉर्म में। अल्कोहल के बारे में ऐसा बोला जाता है कि सीमित मात्रा में अगर कुछ लोग इसको उपयोग करते, पुराने ज़माने में ऐसी डिक्टम थी, स्टडीज़ थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ आई हैं कि जो फ़ायदा शायद वो हार्ट को कर भी रहा है अगर, तो लेकिन बाकी बॉडी को इतना नुकसान कर देता है कि ओवरऑल हमारी तरफ से अभी ऐसे रिकमेंडेशन नहीं रहे कि आप अल्कोहल का सेवन करिए, बल्कि उसकी जगह अपनी लाइफस्टाइल को आप चेंज करें तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे।
0: पर मान लीजिए कि जो लोग एडिक्ट हैं, जो कर ही रहे हैं, उनको किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए कि उसका कम से कम नुकसान शरीर में?
1: देखिए, जो ऑलरेडी अल्कोहल डेली ले रहे हैं तो उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि कोशिश करें कि वो एक तो रेड वाइन ले, बाकी ड्रिंक से, रेड वाइन में पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं जिससे कि बॉडी को बेनिफिट मिल सकता है। और लेकिन जो बाकी ड्रिंक है तो भी आपको जो टोटल इनटेक है वो 30 ml से कम होना चाहिए, तभी हमारी हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर ज़्यादा इनटेक लेना है वो डेंजरस है।
0: कोलेस्ट्रॉल को लेके अगर बात करें कि ये किस तरीके से प्रभावित करता है?
1: तो कोलेस्ट्रॉल को जैसे हम बोलते हैं चर्बी जैसा, तो कोलेस्ट्रॉल जो प्लाग्स अंदर हमारी दिल की नसों में बने जाते हैं एंटीमा के अंदर, वो एक चर्बी जैसा होता है जो कि समय के धीरे धीरे धीरे धीरे जमा होते रहता है कोलेस्ट्रॉल। तो उसमें जो सबसे हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है वो उसको बोलते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। उसमें भी स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल करके आता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है जो नसों में जमा होता है, तो अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो उसके जमा होने की संभावित चीज़ वो है, चांसेस हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो माना गया है हार्ट अटैक के लिए।
0: अगर मोस्टली ये माना जाए कि हार्ट हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है वो किस किस ऑर्गन को किस किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है?
1: देखो, हार्ट तो मेन ऑर्गन है। अगर हार्ट आपका कमज़ोर हो गया है तो आपको जितने शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले किडनी, इस व्यक्ति को हार्ट वीक है, प्रॉब्लम है, किडनी सबसे पहले किडनी के ऊपर इफेक्ट आता है। उसके अलावा पूरा आपका पेट का सिस्टम है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा रहा, पच हो रही है, उल्टी वॉमिटिंग मितली जैसा लगता है, उसको इफेक्ट करता है। फिर तीसरा क्या, जैसे जो नसें हार्ट की होती हैं ऐसी नसें हमारे ब्रेन में भी होती हैं, तो अगर हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है तो ब्रेन में भी होने के चांसेस, उनको जो ब्रेन अटैक है उनके चांसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और प्लस जो आँखें हैं आपकी, आँखों में भी जो रेटिनोपैथी है, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: ये कहते हैं कि आप नए दौर में कि वाटर इज़ द बेस्ट ड्रिंक, तो कहते हैं कि 3 लीटर पानी 4 लीटर पानी अगर लगातार पी रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं साथ में, तो क्या ये हार्ट की हेल्थ को इम्पैक्ट करता
1: है? बिल्कुल हाँ, पानी तो मुझे लगता है कि अगर आपका हार्ट वीक नहीं है, नॉर्मल हार्ट है, तो आपको खूब पानी का इंटेक लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं
0: जी,
1: वो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो पानी के थ्रू ही निकल सकती हैं, स्किन के थ्रू निकल सकती हैं। तो पानी का इंटेक समुचित मात्रा में होना चाहिए पूरे समय। और लेकिन अगर किसी व्यक्ति का हार्ट वीक है, पंपिंग पावर कम है, उसमें हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपका पानी का इंटेक कम रहना चाहिए।
0: जिम जाने वाले जो यूथ है वो बॉडी बनाने के लिए कि एक अच्छी सुदर्शन शरीर बना सके, उसके लिए वो स्टेरॉइड और कई तरह के सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्या ये इम्पैक्ट करता है हार्ट की?
1: नहीं, बिल्कुल, मैंने देखा है कि जो जिम वाले बच्चे जाते हैं और उनमें किडनी की बीमारी बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा। इतने सारे बच्चे आते हैं जिनको कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सबसे पहले हम उनकी किडनी जांच कराते हैं। तो मैंने देखा कई सारे पेशेंट्स में किडनी डैमेज निकलता है। तो बॉडी बनाने के लिए मुझे लगता है पुराने ज़माने में पहलवान हुआ करते थे, उनको सप्लीमेंट्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपकी अगर डाइट अच्छी है, और जो सप्लीमेंट लेना है जो प्रकृति ने नेचुरल जो है उसको आप यूज़ करें, जो कंपनी बना के डब्बा वब्बा बना के प्रोटीन दे रही है वो सब डेंजरस है,
0: और जल्दी रिजल्ट के लिए लेना शुरू कर देते हैं उसके बाद वो इम्पैक्ट
1: बिल्कुल खतरनाक है। और ये मान के चलो कि शर्त ही आपकी किडनी ख़राब होने के चांस 100% है।
0: अगर आप हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहें कि 5 टिप्स जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है या अपने दिनचर्या फॉलो कर रहा है, 5 और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में शामिल कर ले तो हार्ट की बीमारियों से थोड़ा वो काफ़ी दूर तक चला जाएगा?
1: मुझे लगता है कि एक ऐसा हार्मोन हमारे शरीर में है जिसको इंसुलिन बोलते हैं, अगर आपने उसको रेगुलेट कर लिया तो आपको जितनी बीमारियाँ हैं उन सबको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो फैटी लिवर, लिवर जो है ये हमारी हार्ट का आईना बोलते हैं इसको, पर हम लिवर पे कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर से होता है। तो अगर आपका फैटी लिवर है तो उसको आप बिल्कुल ठीक करें, क्योंकि हार्ट के होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब क्या करना है आपको, मुझे लगता है कि आपको जितनी भूख है उसका 50% तो आपका पानी का इंटेक होना चाहिए, और खाना आप जो खाओ भूख का 70%, मतलब 30% आपको आपका पेट भरने के पहले आप खाना रुक जाइए, और उसके बाद में खाने के बाद में 20 मिनट एटलीस्ट वॉक करना है आपको, और खाने में आपका 70% जो फूड है वो रॉ होना चाहिए, बिना पका हुआ। और घी और तेल का उपयोग रॉ फॉर्म में करें, गरम करके तल के ना करें। जितना ठंडा घी खा सकते हैं, देसी घी या बाकी चीज़ें हैं, वो हमारी हेल्थ के बहुत अच्छा है। चौथा, आपको ये जो बाहर का फूड है, फ्रोज़न फूड है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो प्रोसेस फूड हमारे शरीर के लिए डेंजरस है। और सैलड जो है, सबसे जो हेल्दी फूड है वो सैलड है, फ्रूट से भी हेल्दी मैं सैलड्स को मानता हूँ, उसको उपयोग करें और डेली एक्सरसाइज करें। मुझे लगता है इससे हम सब तरह की बीमारी से बच सकते हैं।
0: कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर में किसी को अचानक से सीने में दर्द हुआ, या हम घबरा जाते हैं कि उसे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, हम उन्हें लेके पैनिक होके भागते हैं। कई बार बाहर जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो चेकिंग के दौरान ये पता चलता है कि इनको गैस की प्रॉब्लम थी, इसके कारण सीना वगैरह दर्द कर रहा है। इस अंतर को क्या पहचाना जा सकता है उस समय पर?
1: मुझे तो लेमैन को तो नहीं समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और गैस कभी नहीं समझना चाहिए। आपको इस तरह की घबराहट या दर्द हो जो जीवन में कभी नहीं हुआ है, तो गलती करके भी गैस ना समझें उसको, है ना। क्योंकि हमने 90% पेशेंट समझते हैं, एक दो दिन तो घूमते रहते हैं कि गैस का हो गया, और गैस का हो, गैस की दवा खा लेते हैं। उससे हमारा हार्ट जो है वो काफ़ी डैमेज हो जाता है जब तक हम किसी अस्पताल में पहुँचते हैं। फिर डॉक्टर के हाथ में भी इतना नहीं रहता कि उसको बचा पाएँ। तो गोल्डन पीरियड होता है वो हार्ट अटैक के शुरू के 6 घंटे के अंदर ही हमें इलाज शुरू करना होता है, जिससे कि हार्ट की मांसपेशियों को हम डेड होने से पहले सेव कर पाएँ। तो गैस को कभी ना समझे कि हमें गैस का दर्द हो रहा है। कभी आपको ऐसा अनुभव हो कि मुझे इतना लाइफ में प्रॉब्लम कभी आज तक नहीं हुई, जो अब हो रही है, पहली बार हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपको चिकित्सीय संपर्क हमेशा करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कई हमारे श्रोता हैं ग्रामीण क्षेत्रों से भी हैं, तो वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं उस तेज़ी तक नहीं पहुँच पाई हैं कि जैसे अगर किसी को सीने में दर्द है या हार्ट अटैक आने की संभावना हुई, तो उस समय प्राथमिक उपचार के तौर पे जो उनके परिजन हैं उनको किस तरीके से उसे डील करना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और सबसे पहले तो चलना फिरना उसको बंद कराएं, है ना। कई बार पेशेंट को लेके घूमते रहते हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा।
0: जी जी,
1: तो व्हीलचेयर दे दें या बेड पे ले लें उसको, और एक डिस्प्रिन की गोली है, मुझे लगता है कि हर घर में अफोर्ड कर सकते हैं, सस्ती टैबलेट होती है, और 325 मिलीग्राम की गोली होती है, इसको अपने घर पे रखें, और जब भी ऐसा लगे तो उसको चबाने के लिए हम दे सकते हैं। मूवमेंट जितना मिनिमम हो पेशेंट का उतना कम होना चाहिए, और इसके अलावा फिर आप ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाएं जहाँ पे कि उचित व्यवस्था हो हृदय के इलाज की।
0: व्यायाम को लेकर आपने बात की कि रेगुलर अपने जीवन शैली में उसको जोड़ें और हार्ट उससे बेहतर होता है, क्या शरीर की एक अपनी कैपेसिटी से ऊपर भी व्यायाम जो लोग करते हैं कि मतलब ज़्यादा करते हैं तो वो भी नुकसानदायक हो सकता है?
1: बिल्कुल 100%। जो बॉडी की कैपेसिटी है, हमने बहुत सारे देखें एथलीट्स होते हैं, जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, जिमर्स होते हैं, रेस्लर्स होते हैं, तो हमने इनकी लाइफ बहुत स्टडीज़ हुई है कि इनकी जो लाइफ है एक नॉर्मल व्यक्ति से कम होती है। उनका हार्ट है एक्सरसाइज करने की वजह से काफ़ी मोटा हो जाता है, जब इस तरह की, इसको हम बोलते हैं एथलीट्स हार्ट। तो ये जो हार्ट होते हैं इनमें सडन डेथ की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नियमित है, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, उतनी एक्सरसाइज करें, स्ट्रीनस एक्टिविटी एक्सरसाइज, फिर आप प्रॉपर ट्रेनिंग में करें, फिर उसको अपने आप ना करें एकदम से, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद नहीं है हमारे शरीर के लिए।
0: आपने शुगर को लेके बात की कि शुगर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, अगर इंसुलिन लेवल को भी हम मेंटेन करते हैं तो शुगर सबसे ज़्यादा शायद उसको बढ़ाता है। तो शुगर का विकल्प के तौर पे लोग आजकल जैगरी का यूज इस्तेमाल करते हैं, गुड़ का इस्तेमाल, क्या कोई अंतर है कि मतलब?
1: मुझे तो लगता है जो गुड़ बाजार में मिल रहा है वो शुगर ही, उसके अंदर कैरामेल मिला के उसको जैगरी बना देते हैं।
0: जी जी,
1: वो भी है, लेकिन अगर आपको शुद्ध गुड़ भी मिल जाता है तो भी गुड़ की भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी ऑलमोस्ट शुगर के बराबर ही है,
0: तो उस भ्रांति के तौर पर।
1: हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ लेना ही लेना है, तो गुड़ का ये कि अनप्रोसेस्ड है, उसमें केमिकल्स नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, तो मतलब नुकसान हमारी बॉडी को वैसे नहीं करेगा, लेकिन शुगर का ऑप्शन,
0: इंसुलिन लेवल तो उसी तरीके से
1: बढ़ेगा।
0: जैसे शुगर खाने वाले लोग भी हैं, कई सारे लोगों को क्रेविंग होती रहती है तो वो खाते हैं, शुगर को कम करने के लिए कौन सी और चीज़ें का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा इंसुलिन लेवल मेंटेन रहे?
1: अगर शुगर खाना है तो फिर मसल बनाओ आप, मांसपेशियाँ अगर आपकी स्ट्रांग हैं, ज़्यादा हैं, बड़ी हैं, तो फिर आपकी जो शुगर है वही खा जाएंगी, तो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन उतना नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जैसे बोलते हैं ना, जो वेस्टर्न यूरोपियंस होते हैं, अमेरिकन होते हैं, ये इतना क्यों जीते हैं, वो बचपन से उनका फूड और लाइफस्टाइल ऐसी कि वो मसल के ऊपर काम करते हैं, उनकी मसल स्ट्रांग होती है, उनकी हाइट ज़्यादा अच्छी होती है, तो जिनकी मसल स्ट्रांग है उन लोग को जो फूड है अगर वो ऐसा खाना खा भी लें तो उतना असर नहीं करता जितना कि एक दुबले पतले व्यक्ति को शुगर असर करेगी।
0: डॉक्टर साहब, हमारी बातचीत तो काफ़ी उन विषयों पे हुई कि हम किन तैयारियों को रखें कि हम हार्ट की बीमारियों तक न पहुँचे। जिनको हार्ट की बीमारी है या जिनको स्टेंट वगैरह डल चुके हैं, उनको किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए कि वो अपने आने वाले जीवन को और काफी बेहतर बना सकें या परेशानियों से दूर रहें?
1: देखिए, मैंने देखा है कई बार जिस व्यक्तियों के एक बार अटैक हो गया या एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टेंट डल गया या बाईपास हो गई, तो उनको लगता है कि हम तो मुक्त हो गए इस बीमारी से, बल्कि उल्टा है। अगर एक बार आपको स्टेंट हो गया है तो वापस से होने के चांस आप में काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन जिसको अभी तक नहीं हुआ।
0: आप खतरे की ज़्यादा
1: खतरे के ज़्यादा करीब हो आप। तो एक तो नियमित आप अपनी जो दवाइयाँ हैं उसका सेवन करें, और कई बार पेशेंट एंजियोप्लास्टी करा के 5-5 साल तक दिखाते ही नहीं है, जांच ही नहीं कराते, ये सब भी नहीं होना चाहिए। हर साल में एक बार कंसल्टेशन लें, और जिससे कि आप अवेयर भी रहते हैं और जांच भी कराएं। और रूटीन एक्टिविटीज़, अगर हार्ट में कमज़ोर मांसपेशी कमज़ोर नहीं है तो आप रूटीन एक्सरसाइज एक्टिविटी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, और जो एक्सरसाइज करें वो मार्गदर्शन के अंदर करें तो काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं।
0: आज की सबसे बड़ी समस्या नींद की कमी है। मोस्टली लोग स्ट्रेस्ड हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं, लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां चलती रहती है, तो क्या नींद किस तरीके से हार्ट को इम्पैक्ट करता है?
1: बिल्कुल करती है। मुझे लगता है कि बॉडी जो रिकवर होती है वो रात में सोने के समय ही होती है। तो अगर आपका जो सोने का स्पैन कम है, टाइम कम है, तो जो रिकवरी है बॉडी की वो भी स्लो हो जाती है। तो इसलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नींद किसी व्यक्ति की कम है तो उसको हर तरह की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
0: तो क्या इसके लिए कोई अपन कुछ कर सकते हैं?
1: उसके लिए मुझे लगता है कि योगा योगा प्राणायाम और ये सब चीज़ें हैं, शवासन है, ये जीवन शैली में चेंज है, एक्सरसाइज है, इसको आप करें तो मुझे लगता है इससे बेनिफिट होगा।
0: तो डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सारी बातें श्रोताओं को अपने आपने हमारी समझाई, और बहुत सारी बातें इस तौर पे भी बताई कि हम कैसे तैयारी रख सकते हैं, अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से किस तरीके से दूर रहें, और बीमारी होने पे या इस तरीके के खतरे होने पर आप क्या करें। आपने बहुत सारी जानकारियाँ श्रोताओं को हमारे समझा दी हैं। श्रोता इस जानकारी से ज़रूर लाभान्वित होंगे। आज विश्व हृदय दिवस पे आप हमारे साथ आए, हमारे श्रोताओं को आपने जानकारियाँ साझा की, अपना ज्ञान साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया इस इम्पॉर्टेंट टॉक के लिए, और मैं समझता हूँ कि अपन जो भी हमारा समाज है वो इससे स्वस्थ रह पाएगा। मैं तो ये कहता हूँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे वरिष्ठ हृदय चिकित्सक रविशंकर डालमिया से सुमित गौतम की बातचीत। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर।
1: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9 बजते हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओ नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, जहां आप सुनते हैं लेटेस्ट न्यूज़, खबरें, जानकारी से भरे हुए रोचक तथ्य और साथ ही साथ ढेर सारा गीत संगीत तो हम लेकर आते ही हैं। तो चलिए देर किस बात की है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हम आप से एक बात शेयर करना चाहेंगे आहार को लेकर। आज के जीवन सूत्र में हम बात करेंगे अपने आहार यानी भोजन की। हमें अपने आहार को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए। हमारा खाना शुद्ध, संतुलित और मर्यादित होना चाहिए। वह ऋतु और प्रकृति के अनुकूल हो, यही स्वस्थ जीवन का पहला सूत्र है। संभव हो तो हमारा भोजन स्थानीय और क्षेत्रीय होना चाहिए। जो अनाज, फल, सब्जियां, खाने पीने की दूसरी चीज़ें हमारे आसपास आसानी से मिलती हैं, वे हमारे शरीर और वातावरण दोनों के अनुकूल होती हैं। ऐसा भोजन चुनें जो हमारे माता पिता और उनसे पहले की पीढ़ियां खाती

आई हैं। हमारे पारंपरिक भोजन में लंबे अनुभव की समझ छिपी होती है। ऐसा भोजन हमें स्वस्थ रहने में मदद भी करता है। आज तरह तरह के पकवान, मिष्ठान और विदेशी भोजन हमें आकर्षित करते हैं। स्वाद अच्छा लगना स्वाभाविक है, लेकिन केवल स्वाद के आधार पर भोजन चुनना ठीक नहीं। हमें यह भी देखना चाहिए कि वह भोजन हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। जो भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, उसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, खाना या भोजन सिर्फ भोजन ही नहीं होता, वो हमारे मन पर भी असर डालता है। जिस खाने से हमारा शरीर बनता है, उसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। इसलिए भोजन केवल पेट भरने या स्वाद लेने की चीज़ नहीं है, ये हमारे शरीर, मन और जीवन शैली को प्रभावित करता है। हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, इन बातों के संबंध में सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, आज विश्व हृदय दिवस है। सुबह से शाम तक काम, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठना, समय पर खाना ना खा पाना, दिन भर की व्यस्तता के बाद व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाना, आज के युवाओं की ये दिनचर्या सामान्य लग सकती है। लेकिन लगातार ऐसी जीवन शैली का असर दिल की सेहत पर भी पड़ सकता है। करियर बनाने और आगे बढ़ने की दौड़ में युवा अपनी सेहत को पीछे छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि अब हृदय रोग को केवल उम्र दराज लोगों से जोड़कर देखना सही नहीं माना जा रहा। युवाओं की जीवन शैली में पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव आया है। निजी नौकरी, कारोबार और प्रतिस्पर्धा के बीच काम के लंबे घंटे आम हो गए हैं। कई लोगों का अधिकांश समय कुर्सी पर बैठकर गुजरता है। काम का दबाव और समय की कमी के कारण नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ बाहर का तला भुना और प्रोसेस्ड फूड, अनियमित खान पान, धूम्रपान और तंबाकू सेवन जैसी आदतें भी स्वस्थ हृदय के लिए जोखिम बढ़ा सकती हैं। हृदय रोग के पीछे किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आनुवंशिक कारणों के के साथ ब्लड प्रेशर, मधुमेह, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और जीवन शैली से जुड़े कई कारक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, केवल फिट दिखना ही पर्याप्त नहीं है। युवाओं में एक धारणा ये भी रहती है कि कम उम्र के कारण उन्हें हृदय संबंधी बीमारी का खतरा तो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से कई लोग नियमित स्वास्थ्य जांच को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बाहर से फिट दिखाई देने वाला व्यक्ति भी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम से अनजान हो सकता है। परिवार में कम उम्र में हृदय रोग का इतिहास होने, धूम्रपान या तंबाकू सेवन, बढ़ते वजन, हाई ब्लड प्रेशर या मधुमेह जैसी स्थितियों में स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता भी जरूरी है। शरीर की चेतावनी। दोस्तों, शरीर किसी भी बीमारी की शुरुआत में कुछ हमें चेतावनियां या संकेत देता है। उन चेतावनियों को या संकेतों को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सीने में दर्द या भारीपन, असामान्य सांस फूलना, अचानक अत्यधिक थकान, चक्कर, असामान्य पसीना या धड़कन में बदलाव जैसे लक्षणों को लगातार नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये लक्षण खासकर नए हो, अचानक शुरू हुए हों या बढ़ रहे हों, तो चिकित्सीय सलाह लेना भी ज़रूरी है।

श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, आज विश्व हृदय दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका परिचय और महत्व भी हम आपको बताते हैं। लोगों को हृदय रोगों और उनके जोखिम कारकों और बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात है गंभीरता। खराब जीवन शैली और तनाव के कारण हृदय रोग दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है और इसकी शुरुआत जो ही इसकी स्थापना विश्व हृदय महासंघ वर्ल्ड हेल्थ हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से 1999 में की गई थी। पहला आधिकारिक दिवस 24 सितंबर सन 2000 को मनाया गया था और 2012 से ये हर साल 29 सितंबर को मनाया जाने लगा। दोस्तों, HR सेक्टर में शानदार करियर और कुशल पेशेवरों की लगातार मांग बढ़ रही है। कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कंपनीज, अस्पतालों, कॉलेजों और IT फर्मों में इसकी ज़रूरत भी बढ़ी है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को मिल रहे बढ़ावा के बीच ह्यूमन रिसोर्स यानी HR प्रोफेशन की भूमिका भी लगातार महत्वपूर्ण हो रही है। किसी भी कंपनी या मिशन को सफल बनाने के लिए सही टैलेंट और कुशल वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। यही वजह कि कॉरपोरेट जगत में HR प्रोफेशन युवाओं के लिए करियर के नए अवसर लेकर आया है। कंपनियों के साथ अस्पताल, कॉलेज और IT फर्म्स में भी प्रशिक्षित HR पेशेवरों की मांग बनी हुई है। बारहवीं के बाद छात्र डायरेक्ट BBA इन HR या BMS कोर्स चुन सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद MBA इन HR या PGDM इन HR करना सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसके लिए CAT और CMAT जैसी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। ऑनलाइन ऑप्शन भी हम आपको बताते हैं। अगर आप बिना किसी कठिन प्रवेश परीक्षा या रेगुलर कॉलेज जाए पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन MBA इन HR एक मान्यता प्राप्त विकल्प है। करियर एक्सपर्ट के अनुसार यदि आपने रेगुलर डिग्री नहीं ली है तो भी आप इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हैं। इसकी प्रोफाइल मजबूत करने के लिए SHRM CP या PHR जैसे ग्लोबल सर्टिफिकेशन की तैयारी कर सकते हैं।

दोस्तों अब बात करते हैं करियर की। करियर अलर्ट। ITBP हेड कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन चयन और इस पद के लिए आवेदन करने के लिए इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस में हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 28 सितंबर से शुरू होकर 27 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। जो भी युवा ITBP में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं, वे ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। हेड कांस्टेबल पदों पर कौन कर सकता है अप्लाई? इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 12वीं उत्तीर्ण करने के साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किए हो। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित है। आरक्षित आयु 25 साल निर्धारित है। आरक्षित वर्ग से आने वाले ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आप घर बैठे

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, खाद्य हानि और अपव्यय के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 सितंबर यानी आज मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खाद्य हानि और बर्बादी को रोकना, खाद्य सुरक्षा में सुधार करना और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है? भोजन की बर्बादी से पानी, ऊर्जा और ज़मीन जैसे कीमती संसाधन बेकार होते हैं। बचे हुए या फेंके गए भोजन से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं, और ये दुनिया भर के लोगों को भोजन का सम्मान करने और बर्बादी रोकने का संदेश देता है। दोस्तों, मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा एवं भाषा अध्ययनशाला जीवाजी यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह सोमवार को गालब सभागार में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संरक्षक श्रीधर पराड़कर रहे, जबकि अध्यक्षता जीवाजी यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलगुरु प्रोफेसर विवेक वापट ने की। इस अवसर पर मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा के प्रांत अध्यक्ष डॉ. कुमार संजीव, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. राजीव कुमार मिश्रा और भाषा अध्ययनशाला के समन्वयक डॉ. नवनीत गरुण मंचासीन रहे। मुख्य वक्ता ने कहा कि हिंदी का स्मरण करना भी हम सबका कर्तव्य है। हम अपनी भाषा में ही अभिव्यक्ति कर सकते हैं। चेतना और अवचेतना में भी मातृभाषा निकलती है। सपना अपनी ही भाषा में आएगा और उसमें दृश्य भी वही देखेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रति चिंता करने की नहीं बल्कि सावधान रहने की ज़रूरत है।

दोस्तों, अब कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि समय हमें इशारा कर रहा है कि हम कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करें। चलिए, कोई बात नहीं, अगले कार्यक्रम में कुछ नई सूचनाओं, खबरों, सूचनाओं, समाचारों और ढेर सारे गीत संगीत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए नासिर अहमद का मैंडोलिन पर बजाया राग अहिर भैरव।

0: श्रोताओं, इस प्रस्तुति के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से।
1: पहले बात सेवा संकल्प अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने और उनके जन्मदिन के अवसर पर जिले में यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान में सेवा, स्वच्छता, सामाजिक सहभागिता, हितग्राही कल्याण और युवा नवाचार से जुड़ी गतिविधियां हो रही है। इसी अभियान के तहत अशोकनगर में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में निजी कंपनियों ने युवाओं का चयन किया, जिसमें 316 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ और 258 को ऑफर लेटर दिए गए। वहीं स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े 457 हितग्राहियों को करीब 2 करोड़ रुपए का लाभ भी दिया गया। सेवा संकल्प अभियान के साथ जिले में जल जन सेवा यात्रा भी पहुंची। बड़नगर से वाराणसी तक निकाली जा रही इस यात्रा के अशोकनगर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया। यात्रा का उद्देश्य जल संरक्षण और जन भागीदारी का संदेश लोगों तक पहुँचाना है। अशोकनगर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग की इस पहल के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। पहले चरण में शासकीय महाविद्यालय के 16 छात्रों का चयन किया गया है। आपात युवाओं की एक और जिम्मेदारी की, अशोकनगर में युवाओं को आपदा मित्र के रूप में तैयार करने की पहल की गई है। 18 से 40 साल के कॉलेज विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट, स्वयंसेवकों और तैराकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेवा और जिम्मेदारी की इसी कड़ी में जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है। ग्रामीण पाठशाला में विद्यार्थियों को 4 तरह के कूड़ेदानों के बारे में विस्तार से बताया गया। बच्चों को समझाया गया कि अलग अलग तरह के कचरे को अलग अलग रखना स्वच्छता की पहली सीढ़ी है। महिलाओं और बच्चों के लिए भी जिले में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम चल रहा है। 5 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बच्चों, माताओं और महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर है। इसी बीच अशोकनगर के 9 पोस्ट मैट्रिक कन्या और बालक छात्रावासों में नए मेस शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के जिला स्तरीय 106 पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में नए मेस का ऑनलाइन शुभारंभ किया था। इससे छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। अब बात न्याय की। अशोकनगर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 16 न्यायालयीन खंडपीठों के जरिए 1,298 मामलों का निराकरण किया गया। समझौते के आधार पर निपटाए गए मामलों में करीब 9 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित हुए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी जिले में लगातार जागरूकता गतिविधियां चल रही हैं। 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर आयुष विभाग ने पोषण जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जांच की, पोषण की जानकारी दी और आयुर्वेदिक दवाएं भी वितरित की। इसी तरह वर्ल्ड रेबीज डे के मौके पर अशोकनगर में लोगों को रेबीज से बचाव के लिए जागरूक किया गया। प्रचार सामग्री के जरिए बीमारी से बचाव और सावधानी का संदेश दिया गया। वहीं डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी अभियान चलाया। अशोकनगर की पहचान चंदेरी की साड़ियों से भी है और अब इस पारंपरिक हुनर को और निखारने की तैयारी है। प्रदेश का हथकरघा संचालनालय चंदेरी में साड़ी बुनाई कौशल प्रशिक्षण शुरू कर रहा है। 3 महीने के इस प्रशिक्षण में चयनित प्रशिक्षणार्थियों को बुनाई का कौशल सिखाया जाएगा और शासन की ओर से 750 रुपये मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जिले में बहादुरी और मानवता के काम करने वालों को सम्मान देने की तैयारी भी है। गृह विभाग ने जीवन रक्षा पुरस्कार 2026 के लिए योग्य लोगों के चयन के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और जिला होमगार्ड के जरिए ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जिन्होंने किसी की जान बचाने में साहस और सूझबूझ दिखाई हो। चयनित लोगों के नाम और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन भेजे जाएंगे। अंत में बात आस्था की। अशोकनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण पर्व के रूप में मनाया गया। जिले के 4 मंदिरों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्टर साकेत मालवी ने इन मंदिरों पर श्री कृष्ण पर्व मनाने के निर्देश दिए थे। वहीं इन दिनों जिले में पितृपक्ष भी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु नदी और तालाबों में स्नान कर अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं और घरों में श्राद्ध, दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्य हो रहे हैं। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज कुमार शुक्ल का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सागर।
0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं और प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं नमस्कार, व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम मेरे साथ। चलिए देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं। आप हम तक पहुंचाते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी फरमाइशें और हम उनको पूरा भी करते हैं। चलिए पहला फरमाइशी गीत हम ले रहे हैं, फिल्म का नाम है विजय पथ और इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याज्ञिक ने। ज़मीर काजमी का लिखा ये गीत है और इसे संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। जिला खरगोन सनाबद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार पुराना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी चांद नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें फरमाइश भेजी है छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। आइए सुनते हैं फिल्म विजय पथ का ये गीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म विधाता का ये गीत, लता मंगेशकर के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था और इसे संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी, MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरब खुराना, एस के पप्पी, साथ ही इस गीत को पसंद किया। ग्राम संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव ने, मुरार संतर ग्वालियर से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा, निशा मिश्रा, चौरसिया कॉलोनी ग्वालियर से कालू चौरसिया, पालू चौरसिया और रेखा चौरसिया, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म विश्वात्मा का ये गीत, आवाज़ साधना सरगम की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और इसके लिए धुन तैयार की है बीजू शाह ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, ग्राम महसवाणी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, साथ ही इस गीत को पसंद किया। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी भामिका और वाणी, नवाशहर पंजाब से हमें फरमाइश लिखते हैं। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया।

या झज्जर हरियाणा से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। साथ ही इस गीत को पसंद किया है जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत कुमार सानू और अलका याज्ञिक की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर और इसके लिए धुन तैयार की नदीम शवण ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार, साथ ही इस गीत को पसंद किया ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमें फरमाइश भेजते हैं। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैद अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशे।

मायरा सुरोशी, नेपाल पैलेस सागर से तिलोक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और राबिन राणा। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म रामलखन का ये गीत। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल ने और इस गीत के लिए भी हमें फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने भेजी है मुक्काम पोस्ट कालीगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सरपद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनुश्री बुरांडे। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यस सौम्या और उनके मम्मी पापा ने। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मन भावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शुभा, फुंदीबाई बागरी। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कृति भारती, मेघा राशि, माधुरी किरण और अनुराग मोहन।

श्रोताओ, राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म का ये गीत आपने सुना कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में। इस फरमाइशी गीत के साथ ही आज का व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। सुबह के 10:58 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से।

0: خاص خبریں۔
1: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। वहीं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 21 अक्टूबर की गई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत पौधरोपण, पेड़ों के स्थानांतरण, सुंदरीकरण और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। पिछले एक दशक में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में करीब 61% की वृद्धि हुई है। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विकास में सीएसआर की भागीदारी बढ़ाने के लिए कल भोपाल में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव होगा। इस सम्मेलन में आंगनवाड़ी, पोषण, स्वास्थ्य, शुरुआती शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कॉरपोरेट निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। प्रदेश में खरीफ फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए अब तक 46,454 किसान पंजीयन करा चुके हैं। इसके लिए प्रदेश में 1100 से ज्यादा पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। पंजीयन की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है। उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों ने भोपाल में डीजीपी कैलाश मकवाणा से मुलाकात की। डीजीपी ने तकनीक के इस्तेमाल, साइबर अपराध, सामुदायिक पुलिसिंग, नक्सल समस्या और कानून व्यवस्था से जुड़े अनुभव साझा किए। भोपाल में करीब 12 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से सहकारिता क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला तैयार की गई है, जहां आम लोग भी दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच करा सकेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
2: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, कहते हैं कि जिंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, हमारे भीतर एक धड़कन ऐसी है जो हर पल हमारा साथ देती है। वो कभी ठहरती नहीं, बस हमें आगे बढ़ने की ताकत देती रहती है, क्योंकि उसकी रफ्तार से ही जिंदगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हृदय की, आपके दिल की, क्योंकि 29 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व हृदय दिवस। दोस्तों, आज हृदय रोग केवल वृद्धावस्था का विषय नहीं रहा, आज का दौर बदला हुआ है। आज दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी बीमारियां युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही हैं। और बीते दिनों में तो अचानक आए हार्ट अटैक के न जाने कितने ही केस सामने आए, जिसने सभी को चिंतित और भयभीत किया। इसलिए जरूरी है कि अपने हृदय की हम चिंता करें, उसके बारे में जानकारी रखें और उसके स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रयास करें। और विश्व हृदय दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि लोगों में इस विषय को लेकर जागरूकता बढ़े। तो हमारे लिए दिन रात पूरे जीवन लगातार काम करने वाला हमारा दिल क्या चाहता है अपने लिए, क्या अपेक्षा है उसकी हमसे, ये सोचने का दिन है आज। सुबह की सैर हो, सीढ़ियां चढ़ना हो, योग हो या रोजमर्रा के कामों में हमारी थोड़ी अधिक सक्रियता, हमारे इन प्रयासों से दिल खुशी से मुस्कुरा उठता है। क्योंकि जब शरीर चलता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, धड़कनों में भी एक नई लय उतरती है। इसके साथ ही संतुलित खान पान, नशे से दूरी, तनाव रहित जीवन, भरपूर नींद, ये छोटे छोटे कदम हमारे हृदय के नाम लिखे जीवन के सबसे सुंदर उपहार हैं। इस तरह आज का दिन ये कहता है कि अपने हृदय को स्वस्थ रखने की शुरुआत किसी बड़े परिवर्तन से नहीं, बल्कि रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों से भी हो सकती है। तो आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसी विषय पर, शारीरिक सक्रियता और आपका हृदय। बताइए हमें कि आप क्या सोचते हैं कि शारीरिक सक्रियता हृदय के स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है, क्या महत्व है इसका। इसके साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपके लिए सक्रिय रहने का सबसे सहज और प्रिय तरीका क्या है। सुबह की सैर, योग, बागवानी, नृत्य या बस रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कदम अतिरिक्त, बताइए हमें कि वो दिल जो पूरे जीवन हर पल आपके लिए काम करता है लगातार, आप उसके लिए रोज क्या करते हैं। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
3: जी लक्ष्मण सिंह बात कर रहा हूँ, मैम ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह से।
2: लक्ष्मण सिंह जी कैसे हैं?
3: बिल्कुल बढ़िया है मैम।
2: और क्या चल रहा है इन दिनों?
3: सर अभी तो कटाई चल रही है मैम उड़द की।
2: अच्छा, आज का जो विषय है वो विश्व हृदय दिवस से जुड़ते हुए हमने ये रखा है कि शारीरिक सक्रियता कितनी आवश्यक है मनुष्य के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और आप किस तरह से एक्टिव रहते हैं, किस तरह से सक्रिय रहते हैं, आप बताएं।
3: देखिए मैं तो किसान हूँ और मेहनत करता हूँ, और हालांकि मेरा डेली काम है मतलब खेत जाना आना, 4 किलोमीटर की दूरी मैम हमारे खेत के घर से।
2: जी
3: 12 महीने हम पैदल जाते हैं, तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है मैम। और कोई नशा पानी जैसे जर्दा गुटखा है तंबाकू इनका हम सेवन नहीं करते।
2: ये आपने बहुत अच्छी बात की है लक्ष्मण जी कि नशा मुक्त रहना चाहिए। वास्तव में अगर हम नशे का सेवन करते हैं तो हमारे हृदय के लिए, हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बात बहुत ही खतरनाक हो जाती है।
3: बिल्कुल हानिकारक
2: है ना। अच्छा आप ये बताएं कि जो महिलाएं हैं वो अक्सर घर में काम करती हैं ना, तो आपको लगता है कि उन्हें अलग से कुछ व्यायाम करना चाहिए कि वही पर्याप्त है?
3: नहीं नहीं देखो घर में ऐसा मुझ का काम रहता है मैम, अपन से ज्यादा है लेडीज के लिए।
2: हाँ लेकिन इसके अलावा भी उनको व्यायाम या कुछ सैर करना चाहिए?
3: बिल्कुल मैम।
2: तो चलिए आपकी
3: जरूरी है मैम, उससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप चलते फिरते रहेंगे तो आप।
2: बिल्कुल, तो महिलाएं ये ना सोचें कि वो घर में काम करती हैं इसलिए उनका संपूर्ण व्यायाम हो गया है। ये सच है कि सक्रियता बनी रहती है, लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम व्यायाम आवश्यक है। तो अलग से अपने शरीर के लिए समय निकाल कर हमें ये करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा लक्ष्मण जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
3: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं लक्ष्मी घोषी बात कर रही हूँ।
0: कहाँ से?
1: घारा वार्ड नंबर 1 लल्लन खीरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से।
0: छतरपुर से। तो लक्ष्मी
1: हाँ,
0: जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि शारीरिक सक्रियता और आपका हृदय, यानी फिजिकल एक्टिविटी का क्या महत्व है, हम ये जानना चाहते हैं। तो आप बताइए कि क्या सोचती हैं इस विषय पर आप?
1: देखिए, जो हमारा हृदय है वह हमारी भावनाओं को भी, जो भावनाएं हैं वह हमारे दिल से ही जुड़ी हुई हैं, तो इसको स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमको रोज योग व्यायाम करनी चाहिए और अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो तली हुई चीजें हैं उनका कम प्रयोग करें।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही जी, क्योंकि हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए जो फैट है, वसा है, वो बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए बाहर से खाने की जिनकी आदत होती है उनके लिए खतरे की बात और ज्यादा हो जाती है ना? तो
1: जी बिल्कुल,
0: तली चीजें ना खाएं, और अगर खाने का मन भी हो तो एक तो संतुलित मात्रा में खाएं और घर का बना हुआ खाएं। अच्छा, ये बताइए लक्ष्मी जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरा BA सेकंड ईयर है इस वर्ष।
0: अच्छा, चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई के अलावा आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करती हैं?
1: मैं तो यही कि बाहर का कोई तला भुना नहीं खाती हूँ, अगर मन किया तो घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ,
0: और कुछ योग
1: और
0: प्राणायाम?
1: योग व्यायाम को भी अपनाने की कोशिश करती हूँ।
0: और चलती हैं, सैर करती हैं?
1: जी करती हूँ ना।
0: हाँ, कितने किलोमीटर, कितने कदम?
1: बस मैं तो गांव से ही जुड़ी हुई हूँ, तो पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है 2 किलोमीटर, तो पैदल ही जाती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि रोजाना 4 किलोमीटर तो आप यूं ही चल लेती हैं, है ना? तो
1: जी।
0: ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर जो लोग शहर में रहते हैं उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि वो बहुत नज़दीक की दूरी को भी गाड़ी से तय करते हैं और फिर अलग से समय निकालते हैं कि हमें वॉक करना है। तो बेहतर ये हो कि अपने जो दैनिक दिनचर्या के काम है उनको अगर हम थोड़ा सा पैदल चलकर कर लें तो भी बात बन जाती है ना?
1: या फिर साइकिल भी बहुत उपयोगी है हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल, साइकिल चलाने से भी हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ही अच्छी आदत है। आप चलाती हैं साइकिल?
1: हाँ चलाती हूँ।
0: तो लक्ष्मी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसी में स्वास्थ्य के कुछ मंत्र छिपे हुए हैं, है ना? आप पैदल पढ़ाई के लिए जाती हैं और साइकिल भी चलाती हैं और थोड़ा सा योग प्राणायाम करती हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने दिल का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फ़ोन किया।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं
1: जी। नमस्ते दीदी, मैं कोटरा जिला जालौन से पूजा तिवारी बोल रही हूँ।
0: पूजा जी कैसी हैं?
1: हम अच्छे हैं दीदी, आप कैसी हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: सुनीता दीदी बोल रही हैं क्या?
0: हाँ जी।
1: हाँ, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या
1: जी
0: करती हैं
1: दीदी,
0: पूजा जी?
1: कुछ नहीं दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: और रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, रेडियो तो हमारी जान है और खूबसूरती एक बहुत प्यारी चीज है रेडियो।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि बहुत एक खूबसूरत एहसास है रेडियो, है ना? अच्छा
1: जी जी
0: पूजा जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: विश्व हृदय दिवस का संदर्भ लेते हुए आज हम जानना चाह रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक सक्रियता का क्या महत्व आप देखती हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं पहले तो बताना चाहती हूँ, बहुत से श्रोता को ना पता, एक इसे हृदय रोग बोलते हैं। जैसे उन बीमारियों का वो समय जो है, जो दिल की जो कार्य प्रणाली होती है, जो रक्त वाहिका होती है, जो प्रभावित करती है, ये जब दिल की धमनियों फैट, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो जम जाता है, जो दिल की खून में कमी हो जाती है, जो ऑक्सीजन होता है वो अपन ठीक से पहुंच नहीं पाता, जिससे अटैक जैसी गंभीर समस्याएं बीमारी हो जाती है।
0: और आजकल तो अचानक हार्ट अटैक के कितने केस सुनाई पड़ते हैं ना?
1: जी हाँ जी ना, जैसे अब देखो जिसके लक्षण भी होते हैं दीदी, जब भारीपन हो जाता है, सांस फूलने लगती है, थकावट हो जाती है, थोड़ी कमजोरी हो जाती है,
0: बिल्कुल।
1: सूजन आ जाना होता है, तो ये ना इसके लक्षण तो हर किसी को पता होना बहुत जरूरी है।
0: आपने बहुत अच्छी बात की कि लक्षणों को अगर हम जानते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक अचानक होता है ना, तो
1: अचानक होता है,
0: हाँ थोड़ा सा लक्षणों के प्रति अगर हम जागरूक हो जाते हैं तो जीवन बच जाता है।
1: हाँ, तो हमें मतलब जैसे अगर इसे कैसे मदद की जाए इसकी हृदय रोग की, तो हमें कुछ संतुलन आहार लेना चाहिए, जैसे भोजन में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज शामिल करना चाहिए, बाहर का जैसे फ्रूट, ज्यादा नमक, चीनी, फैट वगैरह जो भोजन के लिए परहेज रखना चाहिए उसका परहेज करो, और अच्छी मतलब चीजें लेनी चाहिए, और व्यायाम भी करना चाहिए। 30 मिनट तो व्यायाम जरूर करें, जैसे साइकिल चलाना वाला योग भी होता है, तो शारीरिक रूप से एक्टिव भी रखता है, और दिल की मांसपेशियां होती हैं वो भी दीदी मजबूत होती हैं। और जो धूम्रपान करते हैं लोग, नशा करते हैं, जो अटैक के लिए बहुत बेकार है, वो खतरा बढ़ जाता है धूम्रपान से, वो नहीं करना चाहिए। मोटापा को भी मतलब थोड़ा घटाना चाहिए। तो बहुत चीजें हैं जो अपन को ही जागरूक होना पड़ेगा, उसके लक्षण भी जानिए और अपना ध्यान भी केयर करना चाहिए सबको।
0: तो पूजा जी आपने बहुत ही अच्छी और सार्थक बात की है, आपने लक्षणों की बात की है ना, और खान पान की बात की, बचाव की बात की। ये बताएं कि आप किस तरह से सक्रिय रहती हैं, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है किस तरह से रहती है?
1: दीदी मैं तो सुबह देखो 4 बजे उठ जाती हूँ, मेरी बहुत बार आकाशवाणी में भी बात हुई, उनको भी पता है मैं व्यायाम करती हूँ, मैं फिट भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ। हमें ऊर्जा जिमो से नहीं मिलती है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारा योगा जो होता है, हमारे एक्सरसाइज होती है, वो हमारे भोजन में भी अच्छा जागृत करती है, अच्छा लेवल बनाती है, जिससे अपनी ऊर्जा चेहरे पर भी दिखती है, मांसपेशियों में भी दिखती है, और वो खुद एक्टिव अपने आप में लगता है कि तनाव दूर हो गया हो, हमारे पास एक ऐसी ऊर्जा है जो हाँ हम कर सकते हैं, हमें पावर सी चीज लगती है।
0: बहुत अच्छी बात की है आपने पूजा जी।

0: और आप खुद भी फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रख के व्यायाम करती हैं, योग करती हैं,
1: जी बिल्कुल
0: ये बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है। और इस क्रम को हमेशा बनाकर रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए। बहुत अच्छा
1: जी
0: लगा आपसे
1: थैंक
0: बात करके।
1: जी थैंक यू दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, थैंक यू सो मच मैम।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। हेलो
1: जी मैडम नमस्ते, मैं समत सिंह बात कर रहा हूँ थार से।
0: सौमत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपका हम, और जानना चाहते हैं कि धार में आप कैसे हैं।
1: जी मैं धार में बिल्कुल खैरियत से हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ साथ सभी हमारे श्रोता साथी भी स्वस्थ बढ़िया अच्छे होंगे।
0: जी जी, अब देखिए आपने स्वास्थ्य की बात कर ली, और विश्व हृदय दिवस का संदर्भ लेते हुए हमने स्वास्थ्य की ही बात करने की सोची है। आपका जो हृदय है उसके स्वास्थ्य की बात करना चाहते हैं, शारीरिक सक्रियता और आपका हृदय, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: इसमें सबसे पहली चीज तो हमारी जो दिनचर्या है वो ऐसी हो कि हमारे हृदय पर कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा लोड ना हो। क्योंकि होता है ना कि हम जब बहुत सारे टेंशन लेके काम कर रहे होते हैं
0: जी,
1: तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे कामों में भी डिस्टर्ब होता है, और हमें अतिरिक्त काम करने के चक्कर में हमें मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है।
0: जी जी जी जी,
1: तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और खान पान आज के समय में जो है वो बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि आजकल भाग दौड़ का जो समय चल रहा है इसमें इंसान अपने काम के प्रति जो उसकी एक लगन या उसका जो कह सकते हैं कि समय में करने का जो एक टारगेट होता है उसमें फिर ये खाने पीने की कई बार ऐसा थोड़ा बहुत खा लिया, चलो ठीक है काम तो चल गया ना यार।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि दिनचर्या व्यवस्थित नहीं हो पाती है, खाना भी छूट जाता है, नींद बहुत ज्यादा छूटती है ना, ये सारी बातें होती हैं।
1: बिल्कुल छूट जाती है। मैं मैडम आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं
0: जी,
1: तो उन्होंने मतलब इतना हम लोगों को कर रखा है, हम लोग रोज डेली, मैं मेरी पत्नी हम दोनों ब्लाइंड हैं।
0: अच्छा अच्छा जी,
1: तो हम लोग मैडम बच्चे हमारे कम से कम 3 बजे से पहले नहीं सोते रोज डेली रात को।
0: ओहो, छोटे बच्चे
1: हैं। छोटे बच्चे हैं
0: जी जी।

0: हम लोग, लेकिन चूंकि ऑफिस भी है मेरा और घर की अपनी जिम्मेदारियां हैं, हम लोग 6-7 बजे फिर उठ जाते हैं सुबह, परिस्थितियां हैं, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा खान पान ऐसा हो जो हमारे दिलो दिमाग को तरोताजा रखने में कहीं ना कहीं मददगार हो, क्योंकि आजकल की जो स्थितियां हैं वो ऐसी हो गई हैं कि पता ही नहीं चल रहा है, एकदम साइलेंट अटैक जो आ रहे हैं उनमें ना तो कोई उम्र का बंधन रहा,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो और ना ही कोई ऐसा हम कह सकते हैं कि अरे हम तो बहुत अच्छा खा पी रहे थे, सब कुछ तो अच्छा था, तो कई जो आजकल का जो माहौल है उसको देखते हुए अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखें तो निश्चित ही हृदय भी
1: स्वस्थ रहेगा,
0: काम करेगा और हम लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे मेरे ख्याल से।
1: जी जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि दिनचर्या को हम व्यवस्थित करें, खान पान का ध्यान रखें, वजन भी एक जो बात है ना, वजन जब बहुत बढ़ता है तो भी आपके हृदय पर उसका विपरीत प्रभाव होता है।
0: नहीं अब उसमें क्या है ना, जैसे मैंने कहा काम का लोड इतना होता है लोगों को, जबकि सुबह सुबह अगर थोड़ी देर के लिए योग से जुड़ जाए तो भी कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलता है। अब मैं अपनी बात करूँ, मेरा जॉब है म्यूजिक का,
1: जी जी,
0: तो हम लोगों को बैठ के ही काम करना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: हमारा जॉब जितने 6 घंटे का जॉब है तो निश्चित पूरे समय हमको बैठ के ही अपनी ड्यूटी देनी होती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं और हमारा तो और जिम्मेदारी वाला मामला बढ़ जाता है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें।
1: जी जी जी,
0: हालांकि मैं बिल्कुल अभी आप समझिए 48 साल का हूँ, लेकिन ये आलम है कि मुझे ग्लूकोज की बोतल तक नहीं लगी आज तक।
1: बहुत अच्छी बात है, और आप यूं ही स्वस्थ बने रहें। और देखिए, आपने कहा है कि आपका जो जॉब है म्यूजिक है, तो मुझे लालच हो आया कि 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे क्या आप?
0: मैं मेरी अपनी खुद की कंपोज की हुई एक रचना आपको सुना देता हूँ।
1: जी जी जरूर।
0: साथ में खत के जब गुलाब आए, साथ में खत के जब गुलाब आए, तो समझ लो कि दिन खराब आए, तो समझ लो कि दिन खराब आए, साथ में खत के जब गुलाब आए।
1: क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत ही सुरीला गाया और आपकी कंपोजिशन थी बहुत खूबसूरत है, गजल आपने गाई, मन खुश हो गया हमारा। यूं ही सौमित जी आप गुनगुनाते रहिए, आपका दिल गुनगुनाता रहे, मुस्कुराता रहे, ये दुआ है हमारी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी जी मैडम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत आभार।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताएं।
1: अनोखे सिंह सर जी।
0: अनोखे सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बाग जिला धार।
0: धार से। आज के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं कि अपने हृदय के स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए?
1: हमारा अपना दिल, हृदय मतलब दिल।
0: जी जी, दिल।
1: दिल, अब दिल में जितनी स्वस्थता होगी, जितनी सफाई होगी, जितने अच्छे विचार होंगे, जितना अच्छा खान पान होगा सर जी।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि विचार भी अच्छे हों, मन साफ हो, यानी तनाव की स्थिति न बने, आपका हृदय खुश रहे और खान पान का हम ध्यान रखें, है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: और ये बताएं कि आप सुबह सैर करते हैं, वॉक करते हैं?
1: हाँ, मैं अभी तक तो पैदल ही चल रहा हूँ सर जी।
0: बहुत अच्छी बात है, सभी को थोड़ा पैदल चलना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि सोने और जागने का समय निर्धारित करना चाहिए। ये आपके हृदय के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है।
1: छह से आठ घंटे की नींद।
0: जी, छह से आठ घंटे की नींद हो और तनाव न हो, खान पान हमारा संतुलित हो, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा हृदय हमेशा प्रसन्न रह सकता है। तो अनोखे सिंह जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेलीखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हैं।
0: आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
1: आज के विषय पर हम ये कहना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छा विषय रखा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं हृदय रोग से संबंधित में।
0: जी जी,
1: लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि वो खान पान का विशेष ध्यान रखें। सुबह उठना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा टहलना, मतलब 2 किलोमीटर माने जाना आना होना चाहिए।
0: जी
1: और
0: जी,
1: शाम सुबह, और खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, समय पर टाइम से खाना पीना खाएं।
0: बिल्कुल।
1: और हृदय से संबंधित जो भी व्यायाम है वो भी थोड़ा सा करें।
0: जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि एक जो आपकी जीवनचर्या है उसको हमको बहुत ही सोच समझकर व्यवस्थित रखना चाहिए, है ना। खान पान सही हो, हमारी दिनचर्या अच्छी हो, और बहुत ज़्यादा हम फैट यानी वसा का सेवन ना करें। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है ओम प्रकाश जी कि समय समय पर अपना चेकअप भी कराते रहना चाहिए, है ना।
1: समय समय पर चेकअप भी कराते रहना,
0: हाँ, कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है या कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, इस तरह से एक चेकअप होते रहना चाहिए ताकि आपको अंदाजा हो, क्योंकि हार्ट अटैक का जो केस है अचानक होता है ना। तो इसलिए हम
1: लक्षण होते हैं मैडम इसके,
0: जी
1: इसके कुछ लक्षण होते तो मरीज को खुद भी अनुभव करना चाहिए कि ये हमको लक्षण है, तो वो लक्षण अपने डॉक्टर साहब को बता करके तो उससे भी कुछ बचा जा सकता है। लक्षण हो रहे हैं तो आप जांच करवाएं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा।
0: बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए बहुत ज्यादा सांस फूलती है, या आपको सीने में जकड़न महसूस हो रही
1: है,
0: हाँ, है ना। तो इस तरह से कुछ लक्षण अगर नजर आपको आते हैं तो संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से। आप ये बताएं कि आप शारीरिक सक्रियता किस तरह से रखते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है?
1: हम तो मैडम सवेरे सवेरे, हमारी दुकान है तो हम तो सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, और बढ़िया दूध कुछ भी लेने के लिए हमको 2 किलोमीटर दूर तक तो जाना ही पड़ता है, तो वो अपनी सुबह की सैर भी हो जाती है।
0: जी,
1: और आकर के कुछ न कुछ थोड़ी बहुत व्यायाम भी कर लेते हैं।
0: और खान पान का विशेष ध्यान रखते होंगे, है ना।
1: खान पान का विशेष ध्यान भी रखते हैं।
0: वजन को भी नियंत्रित रखना चाहिए, वजन का नियंत्रित होना बहुत आवश्यक होता है। तो ओम प्रकाश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यूं ही स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है ये, नमस्कार
1: जी। हम ग्राम चातरते से उदयपुर जिला रायसेन से भगत जी बैरागी बात कर रहे हैं। हम आपके कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर से सुन रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है भगत जी, आज के विषय पर क्या कहेंगे आप?
1: हमरो विचार जो है कि आजकल छोटी छोटी सी बातों ही लेके आदमी टेंशन कर लेते हैं। क्या मालूम ऐसा होगा कि नहीं, आजकल हर एक काम टेंशन से हो तो फिर आदमी टेंशन करे से सफलता प्राप्त कर लेते। इसीलिए हमारा यह विचार है कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर के टेंशन ना ले। टेंशन से क्या होता है, रक्तचाप, रक्तचाप से होता है अटैक। इसलिए छोटी छोटी सी बातों को नजरअंदाज करें। जिंदगी में संतोष ही सबसे बड़ा धन है, संतोष से ही खुश रहें और जितनी चीजें मिल रही उतने ही में खुश रहें।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि तनाव न लें।
1: तनाव ना लें क्योंकि मानस

0: इच्छा का जो जैसा करेगा वो वैसा तो भरेगा, लेकिन फालतू में टेंशन करने से अपन को कुछ नहीं मिलेगा।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर सुरीले अंदाज में आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई और एक संदेश।
0: अच्छा एक बात बताओ, आज जैसे मान लो

0: टेंशन से ही सब कुछ होते तो बच्चे टेंशन करके ही परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेती, फिर भी पढ़ाई थोड़ी करते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि तनाव से दूर रहें।
0: आगे से टेंशन मत लो सुनीता दीदी।
1: हाँ,
0: बात है असली बात।
1: जी जी, तो आपका ये कहना है कि तनाव बिल्कुल न लें, अपने हृदय का ध्यान रखें। आप कौन कौन सी शारीरिक गतिविधियां करते हैं, प्राणायाम, योग वगैरह?
0: हम योगा करते हैं और हम जिम पे जाते हैं और हम प्रवचन भी कर रहे थे और आकाशवाणी जबलपुर से आपके कंट्यूनर कार्यक्रम सुनाते हैं।
1: तो रेडियो का साथ रखते हैं तो जाहिर तौर पर तनाव तो दूर हो जाता होगा, है ना?
0: जी, तनाव से दूर हो जाता है।
1: जी जी, तो भगत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको दिन मंगलमय हो और हनुमान जी महाराज आपके ऊपर विशेष कृपा करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक पिपावड़ तहसील खरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर सिंह जी कैसे हैं?
1: ठीक है मैडम, आप लोग सभी कैसे हो?
0: हम सब बहुत अच्छे हैं। ये बताएं कितने दिन के बाद फोन किया है?
1: मैडम ये मेरा शायद आकाशवाणी मध्य प्रदेश पर दूसरी बार कॉल लगा हुआ है। पहली बार अभी कुछ दिनों पहले लगा था, उसके बाद ये दोबारा लगा है।
0: जी जी, तो क्या कहेंगे आज के विषय पर?
1: जी मैडम, आजकल ये जो समस्या चल रही है, हर व्यक्ति में हार्ट की समस्या चल रही, तो इस सबसे बड़ी बात है

0: जो हमारे खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे तेल की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सुबह से मतलब जो व्यायाम कसरत वगैरह रहती वो करना चाहिए, तो उससे हृदय पर बहुत असर रहता है मैडम।
1: तो आप कह रहे हैं कि खान पान का बहुत हम विशेष ध्यान रखें।
0: जी जी मैडम।
1: और व्यायाम करें, प्राणायाम करें, है ना?
0: जी जी मैडम।
1: और लगातार कई घंटे बैठने वाला अगर काम हो तो उसके बीच में याद करके थोड़ा सा कोशिश करें कि हम उठकर थोड़ा सा चलें फिरें, है ना? लगातार बैठने से भी बहुत बुरा प्रभाव होता है हमारे हृदय पर।
0: मैडम, अगर जैसे अगर आपका एक सही रूप से काम हो तो उसमें थोड़ा सा समय निकाल कर आप वर्किंग कर सकते हैं, इधर उधर टहल सकते हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर।
1: बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लक्षण है, सीने में दर्द होना, दबाव सा महसूस होना, या असामान्य रूप से अगर आपकी सांस फूलती है, या बेहोशी जैसा महसूस हो रहा है, या अचानक बहुत कमजोरी लग रही है, इस तरह से अगर आपके लक्षण आपके शरीर में होते हैं तो हमें डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए, है ना?
0: जी मैडम, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए मैडम और डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए।
1: जी जी। ये बताइए कि शारीरिक सक्रियता के लिए आप क्या करते हैं?
0: जी मैडम, शारीरिक सक्रियता के लिए जैसे मैडम मैं थोड़ी देर टहल लेता हूँ, घूम लेता हूँ बाहर। उसके बाद भोजन का विशेष ध्यान रखता हूँ, जहाँ चार रोटी खाना हो वहाँ तीन ही खाता हूँ, मतलब ताकि उससे शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहे और आलसपन ना आए मैडम।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप व्यायाम करते हैं, टहलते हैं और खान पान को संतुलित रखते हैं, भूख से थोड़ा कम खाते हैं। और ये स्वास्थ्य का राज बताया जाता है कि अगर भूख से थोड़ा कम हम खाते हैं तो हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं, है ना?
0: जी मैडम, अगर जितने ज्यादा भूख हो उससे थोड़ा मात्रा में कम भोजन किया जाए तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा और आपको जो आलस आते वो नहीं आ पाएगी।
1: जी जी,
0: उससे शरीर स्वस्थ रहेगा और स्फूर्ति बनी रहेगी।
1: तो रघुवीर जी, आज आपने फोन किया, आपका आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी मैडम, धन्यवाद।

श्रोताओं, आज की बातचीत ने हमें एक छोटी सी बात फिर याद दिलाई है कि अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोज थोड़ा सा समय निकालना जरूरी है। बस उसकी धड़कनों के साथ कुछ कदम चलना जरूरी है, थोड़ी सी सैर, कुछ पल योग के, अपने कामों में थोड़ी सक्रियता, और सबसे बड़ी बात, अपने शरीर और मन की आवाज को सुनने की आदत। ये छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में स्वास्थ्य की बड़ी पूंजी बन सकते हैं। तो आइए संकल्प लें कि हम अपने हृदय के लिए रोजाना कुछ प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि दिल की धड़कनें जीवन भर हमारा साथ निभाती हैं। उनके चलने से ही जिंदगी है। तो जो दिल पूरी जिंदगी हमारे लिए धड़कता है, चलता है, हम भी उसके लिए थोड़ा चलें, उसे थोड़ा समय दें। तो आप सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: आज विश्व हृदय दिवस है। इस वर्ष का विषय है एक भी धड़कन न चूके। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने एक पोस्ट में कहा है कि ये दिन लोगों को बीमारी के लक्षणों को पहचानने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, जोखिम को नियंत्रित करने और समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की याद दिलाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पिछले वर्ष 15 अगस्त को निजी वाहनों के लिए शुरू किए गए फास्टैग वार्षिक पास की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। ये पास लगभग 1000 से अधिक टोल प्लाजा पर मान्य है। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। भोपाल में करीब 12 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से सहकारिता क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला तैयार की गई है, जहाँ आम लोग भी दूध और दुग्ध उत्पादों की जाँच करा सकेंगे। प्रदेश में तेज बारिश का दौर अब थमने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन किसी बड़े मानसून सिस्टम के सक्रिय होने के आसार नहीं है। और जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। फिलहाल भारत एशियाई खेलों की पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। भारत के कुल 45 पदक हैं, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले आप सभी की फरमाइश हम पूरी करते हैं। लिखने वाले हैं डबरी पारा से महेंद्र प्रताप, श्रीमती जया, जागेंद्र, गजेंद्र और जयंती। मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप और इनके परिवार के सभी सदस्य। थाना रोड बक्सर से आशीष गुप्ता, सतीश, आयुष, आयुषी और सानवी। आप सभी ने सुनना चाहा है साथ ही फिल्म का नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में साथ ही फिल्म से ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम, कविता, संजना और सानवी। दिल्ली शहर मेरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। एक और ये पत्र हमें लिख भेजा है वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकना खत्री, मोहम्मद अलमश और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं कयामत से कयामत तक का फिल्म का नगमा जिसे गाया है उदित नारायण ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे हुए गीत को आनंद मिलन की तर्ज पर फिल्म कयामत से कयामत तक में।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन बेगम, रोज़ी परवीन, बिट्टू, सजता रानी और हिना कौसर। आप सभी ने सुनना चाहा है साजन फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनवाते हैं साजन फिल्म का ये नगमा।

आशा रेडियो श्रोता संघ उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस एकांश, मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, बहादुरपुर नागपुर से वैशाली, सुमित और ध्वनि, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबरी, महराज जहां, आप सभी ने ये ख़त हमें भेजा हरिद्वार से। आप सभी सुनना चाहते हैं यादें फिल्म का ये नगमा।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 11वीं कड़ी।

Amen. Amen.

हाँ, बहुत अरसे बाद सरकारी दौरे के सिलसिले में रतनपुर आना हुआ है। रतनपुर जहां मैं पैदा हुआ, मेरा बचपन गुजरा। सिवाय कुछ मामूली बदलावे के रतनपुर आज भी जस का तस वहीं ठस खड़ा है जहां तब था। हम एक एक कर गांव छोड़ गए, हम यानी अम्मा, कुंदनजीत जी और मैं खुद। यही छोटा सा परिवार था हमारा। कुंदनजीत जी ब्याह कर चली गई। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जो गांव छोड़ा तो लौटा नहीं। नौकरी लगने पर अम्मा भी मेरे साथ चली गई। 2 एकड़ का खेत मामा ने हथिया लिया और हमारे कच्चे घर पर कब्जा कर उसे तुड़वाकर गोकुल साहू ने पक्का मकान बना लिया है। हमारा घर, घर की याद के साथ कितनी यादें मन में घुमड़ने लगी हैं।

0: ikam tera, tera duni chabbis, tera tia unchalis, tera chok, tera chok, tera chok, haan, tera chok bavan. तेरा इक्कम तेरा तेरा दुनी छब्बीस तेरा दिया उनचालीस तेरा होता है यमुना तीरे
1: मैं भी इस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे यह कदम का पेड़ अगर माँ होता है यमुना तीरे मैं भी इस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे
0: बनता नहीं तुम लड़की हो इसलिए बोलो बनती धीरे धीरे
1: तू चुप कर मैं कविता याद कर रही हूँ
0: तो याद करो पर व्याकरण क्यों भूल रही हो
1: कविता जैसी होगी वैसी ही याद करेंगे ना हम माँ इसे कहो ना बीच में पिटर पिटर ना करे
2: किशन किशन उसे नाहक परेशान ना कर चलो अपना सबक जल्दी याद करो दोनों आज शनिवार है ना दोनों को हाट भी जाना है किशन ये लो तुम्हारे पैसे और कुंदन बेटिया ये रहे तुम्हारे पैसे
0: अम्मा तुमने मुझे फिर दो पैसे और जिजी को एक पैसा दिया है ऐसा क्यों
2: अरे बेटा वो लड़की है
0: इसलिए उसे कम पैसे दिए हैं ये तो गलत बात है
2: तुमसे बहस नहीं करना मुझे और ये बता तेरे माथे पर ये घुमड़ा कैसा
0: कुछ नहीं मैं बस यूं ही
2: सच सच बता फिर किसी से झगड़ा किया ना
0: अम्मा गणेश मुझे चिढ़ा रहा था कि उसके बापू हैं पर मेरे नहीं मैंने भी कह दिया फिर कि तेरा बापू मर गया तो तेरे पास भी बाप नहीं होगा
2: हाय राम ऐसे कहते हैं क्या किसी को
0: उसने मुझे ढेला मार दिया
2: तो और क्या करता मूर्ख वो
0: पर माँ हमारे बापू क्यों नहीं है
2: हमारी किस्मत ही फूटी है बेटा तेरे जन्मते ही तेरे बापू मर गए हैं

0: आज अम्मा नहीं है इस दुनिया में, पर रतनपुर में बिताए बचपन और अम्मा की यादें तो आज भी मेरे साथ हैं। हम दोनों बच्चों पर जान देती थी हमारी अम्मा। बटाई पर दी 2 एकड़ जमीन से मिलने वाले 8-9 मन अनाज से बस बस 3 लोगों का पेट भरता था, और बाकी खर्च कहां से पूरा होता। बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ जाता है, फिर अपनों की क्या कहें। मामी ने मां को ही अपने घर और खेती पर मजूरी के लिए रख लिया था। एक दिन की बात है,
1: मैं कहूं आ गई महारानी जी, कितनी देर कर दी।
2: भाभी वो मैं रास्ते से आ ही रही थी।
1: बस बस बस, रास्ते में आते हुए ज्यादा लक्षण न दिखाया करो, लोग हमें 4 बातें सुनाते हैं।
2: भाभी कल रात भर कुंदन को ताप चढ़ा रहा, बेचारी सो ना पाई, सुबह सुबह उसकी आंख लग पाई, इसी कारण देरी होगी। भाभी
1: रहने दो रहने दो, मैं कहूँ तुम्हारे सब बहाने पता है मुझे।
2: भाभी बच्ची की तबीयत का झूठ क्यों बोलूंगी, आपकी सौ
1: है, है, है। मेरी झूठी सौगंध खाती है तू, तो चाहती ही है कि मैं मर जाऊं, सुनते हो जी।
3: अरे सुबह सुबह क्या कुकरहाव मचा रखी है घर में।
1: मैं क्यों मचाने लगी कुकरहाव, अपनी बहन से कहो मुझसे जबान न लड़ाया करे। लो अब रोना भी चालू कर दिया, खाते पीते घर में काहे बिना बात के ऐसा गुण कर रही है, करम जली।
2: भाभी तुम्हारी बड़ी ननद हूँ, कम से कम गाली तो मत दो।
1: लो जी कुछ बोलना गुनाह हो गया नौकरों को। सुनो जी तुम ही निपटो अपनी बहन से, अब से मैं कुछ ना बोलूंगी।
3: अरे जी जी तुमसे लाख दफे कहा कि आदमी को अपना बखत देखकर बात करनी चाहिए, पर तुम हो कि समझती नहीं है?
2: मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि कुंदन को ताप चढ़ा था इसलिए देर हो गई।
1: अरे मैं कहूँ ताप ही तो चढ़ा था ना कुंदन को, अरे मर तो ना गई थी।
2: भाभी भगवान से डरो, तुम्हारी भी भांजी है कुंदन और तुम्हारे अपने भी बच्चे हैं।
1: लो पहले अपना खसम खा गई और अब मुझ पर और मेरे बच्चों पर नजर है इस डायन की।
3: देखो जीजी जीजी ये रोज रोज अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी है?
2: तुम्हारे पांव पड़ती हूँ भैया, कहो तो भाभी के पढ़ लूं, मुझे काम से अलग ना करना, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम्हारा ही तो सारा है भैया।
1: क्या क्या बर्दाश्त करें, महारानी जी चोरी करती है वो भी बर्दाश्त करें।
2: हे भगवान अब ये सुनना भी बता था भाग में, 2 बच्चे न होते तो डूब मरती, चोरी का दोष सुनने से तो मरना अच्छा।
1: मैं कहूँ सुनिए आपने इनकी नौटंकी। अरे मैंने खुद इसे अपनी आंखों से पल्लू में छुपा कर मकई के दाने और ककड़ी के टुकड़े ले जाते देखा है।
2: वो तो भाभी तुमने मुझे खाने को दिए थे, वही बच्चों के लिए ले जा रही थी।
1: वही बच्चों के लिए ले जा रही थी, मैं कहूँ रहने दो, खूब समझती हूँ तुम्हारे ये झूठ।
3: अरे अच्छा अच्छा बहुत हुआ, मुझे और भी काम है इस पंचायत के अलावा।
1: एक बात क्या बोल दी तू, इतनी बातें हो गई, चल जा अपना काम निपटा जल्दी।
3: और हाँ जी जी एक बात साफ साफ सुन लो
2: जी।
3: तुम्हें अपने यहाँ काम दिया है, ध्यान रहे आइंदा शिकायत नहीं आए। हाँ
2: अब चाहे जान चली जाए पर कुछ ना कहूंगी,
1: वही तुम्हारे हक में होगा समझी।
0: गांव की यादों में गोकुल साहू की याद ना आए ऐसा कैसे हो सकता है भला। सफेद टोपी वाले खद्दरधारी टाइप देशभक्त गोकुल साहू, उनका गांव में बड़ा वजन, शगुन बांझने, स्टाम्प लिखने, दवा बताने से लेकर नकली मामलों में फंसाने, नकली गवाह तैयार करने तक हर मर्ज का एक इलाज। गोकुल साहू, मुझे और कुंदन को हुक्म था माँ का कि जब वो मजदूरी करने जाए तब हम गोकुल साहू के यहाँ रहें और सेवा टहल करें। इसके एवज में माँ को केवल एक उम्मीद थी कि साहू जी मां पर मुकदमा ना चलवाएंगे।
4: किशन तू बाहर के दलान की झाड़ू बुहारी निपटा जल्दी, मैं भीतर की जल्दी निपटाती हूँ। जिज्जी थोड़ी मदद तुम भी कर दो।
1: ठीक है तो इधर साफ कर, मैं उस कोने में शुरू करती हूँ।
5: अरे ओ छोरा छोरी, झाड़ू बुहारी निपटी या नहीं?
1: बस निपटी जाती है बहू माँ।
5: अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, उसके बाद फटाफट पानी भर लेना।
1: जी बहू माँ।
6: किशन, अरे ओ किशन वा।
4: जी बहू जी।
6: अरे एक लोटा पानी ला बेटे।
4: अभी लाया।
6: राधे कृष्णा कृष्णा राधे, अभी से धूप कैसी तेज हो गई है, तीखी हो गई है। अरे जा जल्दी से एक लोटा पानी लेकर आ मेरे लिए।
4: अभी।

0: घोड़ा गाड़ी में कुछ सामान है, उठाकर भीतर बहू माँ को दिया।
1: जी, बड़ी देर कर दी आने में।
0: अरे पहले थाने गए, वहां से कचहरी और उसके बाद बाजार से सौदा सुल्फा लिया।
1: कुछ काम बना कि नहीं?
0: बना तो, लेकिन थोड़ी मुश्किल से। पहले तो मानता ही न था, कहता था झूठा मामला बनवा रहे आप मुझ पर।
1: हाँ, छोटे लोगों के तेवर तो देखो।
0: देखा देखा क्यों नहीं। अरे हमने तो कहा बच्चू चुपचाप अंगूठा लगा दो कागजों पर, नहीं तो पछताओगे पीछे।
1: अच्छा,
0: लातों के भूत कहीं बातों से मानते हैं भला। अरे हमने तो फिर दरोगा से कहा कि अब आप ही समझाओ इसे।
1: फिर तो भूत भाग गए होंगे उसके। अच्छा सुनो, जगेश्वर आया था तुम्हारे पीछे, सूद की रकम दे गया है, कह रहा था आधी है, आधी अगले महीने के सूद के साथ देगा।
0: इसीलिए मेरे पीछे आया था, पहले पता कर लिया होगा कि मैं तहसील गया हूँ, है ना?
2: बहुमा झाड़ू लग गई, पानी भर गया।
1: अच्छा जा, कमला और विमला के सिर में तेल थाप दे। और तेरा भाई कहाँ है?
2: औसारी में है, सूख गई बड़ी कचरिया समेट रहा है।
1: ठीक है, चल जा तो तू कमला विमला के पास, और सुन उसके बाद मेरे पैरों में जरा तेल मल देना, बड़े दुख रहे हैं।
0: अरे कृष्णा, अरे ओ कृष्णा।
3: जी बाऊजी।
0: हाँ, अरे देखो, अरे मेरी धोती और कुर्ता उठा लाओ उधर से, नहा लूं तो चैन आए। उफ, ये गर्मी तो अभी से जानलेवा हो रही है।
1: सुनो जी, सुबह सुबह रमिया को क्यों गालियां दे रहे थे जब वो बच्चों को छोड़ने आई थी?
0: क्यों क्यों क्यों क्यों है? अरे अब मैं नौकरों को भी गाली तुमसे पूछ कर दूंगा भला।
1: सो बात नहीं है, बस यूं ही पूछ लिया मैंने।
0: अरे कहीं काम से जा रहे हैं तभी मरेगी। अरे अपनी काली कलूटी शक्ल लेकर असगुन करने के लिए।
1: ठीक ही किया।
0: अच्छा अच्छा, मुझे नहाने दोगी या नहीं?
1: हेलो, तो मैं कौन सा रास्ता रोक कर खड़ी हूँ तुम्हारा? जाओ नहा लो जाके, और जल्दी करना जरा, खाना तैयार हुआ जाता है तब तक।
0: ए, सुनो, अरे उम्दा भट्टे मिल गए थे, बहुत अच्छे किस्म के, मैं ले आया हूँ, भरता बनवा लो, मजा आ जाएगा
1: ठीक
0: खाने
1: है,
0: में।
1: ठीक है।
3: अम्मा बहुत भूख लगी है।
2: मुझे भी अम्मा।
4: हाँ बेटा, बस रोटी तैयार समझो। कुंदन बेटा, जरा प्याज धनिया मिर्च की चटनी पीस ले तब तक।
3: माँ, आज भी खाने में तरकारी नहीं है?
4: मामी से मजूरी मिलने की उम्मीद थी पर नहीं मिली। बेटा कल मजूरी मिलेगी तो जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है?
3: रोज ही ऐसा कहती हो, और रोज ही चटनी से रोटी खानी पड़ती है।
4: मेरा बस चले बेटा तो रोज तुम दोनों को मालपुए खिलाऊं।
2: आज बहू माँ ने दो दो बासी पूड़ी और छोटी सी गुड़ की डली भी दी थी साथ में, है ना किशन?
3: हाँ।
4: कोशिश में हूँ कि चार पैसे बचे तो तुम दोनों को खूब पढ़ाऊं।
3: मैं पढ़ूंगा माँ, खूब बड़ा आदमी बनूंगा।
2: मैं भी खूब पढ़ूंगी, हमारे भी दिन फिरेंगे, है ना अम्मा?
4: जुग जुग जियो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो।
3: अम्मा फिर हम भी हमारे घर में रोज तरकारी बनाएंगे।
2: दाल भात भी होगा साथ में।
4: अच्छा अच्छा, अभी तो थाली उठा लाओ। अरे कब से हंगामा कर रहे थे, भूख लगी है भूख लगी है। तुम खाओ, मैं फटाफट गरम रोटियां डालती हूँ। हाँ
2: अम्मा, आज तुम भी हमारे साथ खाओ।
4: हर पग

0: ली, फिर रोटियां कौन सेकेगा? चलो पहले तुम लोग खा लो।
1: फिर मैं भी बचा कुचा खा लूंगी, है ना?
0: बचा कुचा क्यों खाऊंगी? मैं अपने लिए भी रोटियां सेकूंगी।
2: अगर आटा बचा तो, जो नहीं बचेगा?
0: नहीं रे पगले, बहुत आटा है।
2: हमें झूठ बोलने से मना करती हो और खुद बोलती हो।
0: अच्छा मेरे बापू, बहस बंद कर और खाना खा। तू भी आ कुंदन, आज तुम दोनों के सामने अपनी रोटियां भी थोपूंगी, बस।
1: फिर ठीक है।
2: आज तो रोटी के साथ चटनी भी बहुत अच्छी लग रही है।
1: हाँ।
2: अम्मा, मम्मी बहुत बुरी है, तुमको नाहक गाली देती रहती है।
0: बेटा, काम में गलती होने पर कोई भी टोकेगा।
2: टोकना एक बात है और गाली देना दूसरी।
1: किशन, गुस्सा मुझे भी आता है पर
0: बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते।
2: आप भी तो मामा मामी से बड़ी हैं।
0: बेटा, गरीब आदमी कभी किसी से बड़ा नहीं होता।
2: मैं बनूंगा माँ बड़ा आदमी,
1: खूब पैसा कमाऊंगा। बोल बोल, वही जो हमेशा बोलता है।
0: अच्छा पंडित जी, अभी सो जाओ, बहुत रात हो गई।
1: अम्मा लेटो, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ, दुखते होंगे ना?
0: लाडो, मेरी तो सारी थकान तुम दोनों की बातों से ही उतर जाती है।
1: बहुमा के तो हमेशा ही दबाने पड़ते हैं, आज तुम्हारे दबा देती हूँ।
2: वो मोटी काम करे ना धाम, बस जब देखो कुंदन पैर दबा दे, बहुत पिरात है।
1: और वो गंजा साहू, वह भी आज तुम्हें गाली दे रहा था, है ना? टकला कहीं का।
0: फिर वही बात, मना किया ना बड़ों के लिए ऐसी बात बोलने से।
2: तुम ही कहती हो ना हमेशा कि हमारे भी दिन फिरेंगे।
0: हाँ बेटा,
2: एक बार हमारे दिन फिर जाए, फिर देखना अम्मा इन सब को, मामा मामी साहू और वो मोटी को फिर कनी बना दूंगा।
0: अच्छा बस करो अब, सुबह मामी के यहाँ जल्दी पहुँचना है ना, और तुम दोनों की भी स्कूल है, चलो अब जल्दी करो।
3: कहते हैं मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, इकट्ठी आती है। मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, दे कम इन बटालियंस। सुबह हमारे दरवाजे पर कोटवार खड़ा था, नायब तहसीलदार का फरमान लिए। माँ ने बहुत चिरौरी की, पर वो क्यों मानने लगा? माँ की बात सुनता तो उसकी नौकरी जाने का अंदेशा था।
0: कौन है?
4: कोटवार।
0: कोटवार जी आप?
4: अरे नायब साहब ने बुलाया है तुम्हें।
0: किस लिए?
4: उनसे कोई सवाल कर सकता है क्या है जो तू कर रही है?
0: भैया मैं तुम्हारे पैर पड़ूं, घर में एक दाना अनाज का नहीं है।
4: अरे
0: भौजाई ने रूट कर 3-4 दिन हुए काम से अलग कर दिया है, पहले की मजूरी भी नहीं दी।
4: अरे तो मैं क्या करूं है?
0: मुझ पे दया करो मल्लू भैया, सच में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं।
4: जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। अरे चल नायब साहब के पास चल।
0: मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मुझे छोड़कर किसी और को बेकार मिले जाओ भैया।
4: अरे जबान संभाल कर बोल रहा मियाँ, तू इतनी बड़ी कब से हो गई जो नायब साहब के बुलावे पर भी ना जाएगी है?
0: हम तो बहुत छोटी हैं भैया, पर आज तक बेकार पर नहीं गई।
4: अरे तू कौन सी बड़ी पटवारन है जो बेकार में जाते, शर्म लगती है तेरे को है?
0: भैया पटेल दद्दा के पैर पड़ लूंगी, हाथ जोड़ लूंगी, आज मेरी बेकार हटा दो भैया।
4: अरे मुझे क्या जूते खाना है तेरी बेकार छुड़वा कर है?
0: पटेल दद्दा मान जाएंगे?
4: अरे ना मानेंगे, उन्होंने तो पहले ही कही थी कि रमिया कभी बेकार में नहीं जाती।
0: फिर भैया?
4: अरे फिर क्या, गोकल साहू ने 4 बंगरियों के नाम दिए थे, उनमें पहला नाम तेरा है। चल देरी मत कर, चल चल। अरे तेरी भौजाई, अरे रहने दे, अब क्या कहूँ तुझसे,
0: कुछ कहने की जरूरत नहीं।
4: हाँ सारा गांव जानता है तेरी भौजाई और उस गोकल साहू को, समझी के नहीं है?
0: अम्मा आप ही इस मुसीबत से बचा सकती हो।
2: अम्मा अम्मा क्या हुआ और कैसी मुसीबत?
5: कुछ नहीं हुआ, जाओ तुम दोनों जाकर अपना काम करो। बता क्या हुआ?
0: बहुमा नायब जी ने बिगार के लिए बुलाया है, वो खड़ा मल्लू कोटवार मुझे ले जाने आया है।
5: पगली तुझे कौन बेगार में भेजेगा? अरे बड़े आदमी के कुत्ते को भी कोई मारे या दुत्कारे तो मुकदमा चल जाए।
0: कल से तो मैं बड़े आदमी की कुतिया भी नहीं रही बहुमा।
5: क्या बकती है, तुझसे कोई गलती हो गई क्या री?
0: गरीबी की गलती से बड़ी कोई गलती होती है क्या बहुमा?
5: सो तो ठीक है, पर अभी क्या हुआ?
0: परसों संजय को भैया किसी पेशी के मामले में तहसील गए, उन्हें खाना खिलाकर रवाना किया और मैं घर आई। आते वक्त भौजाई ने कहा मेरा पेट दुखता है, गोकुल साहू से कहना कोई दवा भिजवा दे।
5: तो दवा ले जाती?
0: घर जाकर मैं किशन के साथ रामलीला देखने चली गई, बड़ी जिद कर रहा था और मेरी अक्कल पे पत्थर पड़े थे। भौजी का पेट दुखने की बात भूल ही गई।
5: अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है मेरे।
0: मैं क्या जानू कि भैया की गैर हाजिरी में भौजी के पेट को अगर साहू जी की दवा ना मिली तो वो मेरी नौकरी खाकर पेट ठीक करेंगी।
5: तो तेरी नौकरी ले ली तेरी भौजाई ने?
0: बहुमा पेट में अजीरन होने पर सिर तो दुखने ही लगता है, भाभी के रूठने पर साहू दादा क्यों नहीं रूठते? आपसे कुछ छुपा तो नहीं है ना बहुमा?
5: ठीक है और ज्यादा खुलासे की जरूरत नहीं है अब।
4: अरे रमिया जल्दी कर, नायब साहब गुस्सा होकर मुझ में बॉस मार देंगे, समझी के नहीं?
0: चलती हूँ भैया। तो बहुमा जाती हूँ मैं बेकार करने।
4: मैंने पहले ही कहा था ना कि साहू जी ने ही नाम जुड़वाया तेरा, अरे अब कुछ नहीं होगा, तू चल।
0: क्या करूँ दादा, बच्चों की शक्लें आंखों के आती हैं।
4: हाँ, तू कुछ मत कर, तू तो जल्दी चल चल, तू गाली खाएगी और मैं जूते खाऊंगा आज तेरे चक्कर में, चल जल्दी चल।
0: किशन कुंदन मैं जा रही हूँ बेटा।
4: चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल

0: अम्मा को रोते देख मुझे भी रोना आ रहा है,
1: मुझे भी रोना आ रहा है।
0: कितना अच्छा होता अगर हमारे भी दादा होते।
1: दादा, दादा तो गए भगवान के पास,

मैंने और कुंदन जीजी ने अम्मा को अच्छे दिन दिखाए। कुंदन जीजी आज ससुराल में है मजे से। माँ ने भी आंखें मूंदने से पहले सुख देखा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 11वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

Arrotata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। वहीं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 21 अक्टूबर की गई है। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विकास में सीएसआर की भागीदारी बढ़ाने के लिए कल भोपाल में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव होगा, जिसमें आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कॉरपोरेट निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। प्रदेश में खरीफ फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए अब तक 46,454 किसान पंजीयन करा चुके हैं। प्रदेश में 1100 से ज़्यादा पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं और इसकी तारीख 10 अक्टूबर रखी गई है। भोपाल में करीब 12,40,00,000 रुपये की लागत से सहकारिता क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला तैयार की गई है, जहाँ आम लोग भी दूध और दुग्ध उत्पादों की जाँच करा सकते हैं। प्रदेश में तेज बारिश का दौर अब थमने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक किसी भी बड़े मानसूनी सिस्टम के सक्रिय होने के आसार नहीं हैं। और जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीत कर इतिहास रच दिया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

दिल से दिल तक। हमारी प्यार भरी बातों को दिल से सुनने वाली सभी प्यारी प्यारी सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी आराधना का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कहते हैं ये नन्ना सा दिल हमारे शरीर का सिर्फ वो हिस्सा नहीं है जो लगातार धक धक धड़कता रहता है, बल्कि ये हमारी जिंदगी की रफ्तार को बनाए रखने वाला एक अनमोल साथी भी है। यानी ये छोटा सा दिल सिर्फ धड़कता ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को महसूस भी कराता है। लेकिन सखियों, जब बात हम महिलाओं की हो तो ये बात और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम महिलाएं अक्सर अपने परिवार के हर सदस्य का हर समय और हर कहीं यानी हर छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखती हैं, सबकी चिंता करती हैं, लेकिन अपने ही दिल की बात सुनना भूल जाती हैं। सखियों, दिल से जुड़ी बातें आज हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है 29 सितंबर और आज का दिन खास है विश्व हृदय दिवस के लिए। और सखियों, आज का ये खास दिन हमें खूबसूरत संदेश देता है कि जिस दिल से हम अपने परिवार को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अपने इस नन्हे से प्यारे से दिल का ख्याल रखना चाहिए। सखियों, यहाँ पर एक बात हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपनी सेहत के लिए समय निकालना स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि खुद के प्रति और अपने परिवार के प्रति आपकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो फिर लेते हैं आज के इस खास दिन पर एक प्यारा सा छोटा सा संकल्प कि सबका ख्याल रखते रखते अब हम अपने दिल का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि स्वस्थ दिल में ही स्वस्थ जीवन की खूबसूरत धड़कन बसती है। और वैसे भी कहते हैं ना सखियों कि हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन वही है जो एक स्वस्थ दिल से निकलती है। इसलिए दिल को स्वस्थ रखिए, धड़कनों को खुश रखिए और जिंदगी को हर पल मुस्कुराने का अवसर दीजिए, कुछ इस गीत की तरह।

0: और सखियों दिल के प्यार से सजे इस खूबसूरत गीत के बाद बात करते हैं सखियों इस वर्ष 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 की जो मुख्य थीम है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, जिसका उद्देश्य है आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को केवल कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रखना बल्कि पूरे समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। और जब समाज के सभी लोग इन आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ेंगे तभी हम सभी इसके उद्देश्य को सही ढंग से पूरा कर सकेंगे। तो सखियों जुड़िए आंगनवाड़ी केंद्रों से और स्वयं भी इसका लाभ लें, साथ ही दूसरों को भी प्रोत्साहित करें इन आंगनवाड़ी केंद्रों की योजनाओं से जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं एक सरकारी योजना की। योजना है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। सखियों प्रधानमंत्री जी द्वारा आदिवासी समुदायों का समग्र एकीकृत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से समूहों तक पहुँचाना, सतत आजीविका रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देना ताकि हर आदिवासी परिवार की आय जो है वो बढ़ सके, और साथ ही जनजातीय समुदायों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत और पहचान की रक्षा करना। सखियों इस योजना से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं और इस योजना से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सखियों ये तो ही बात सरकारी योजना की, और अब चलते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज आपको मिलवाते हैं मेरी उड़ान की एक और नई सखी से, जो ऑनलाइन सीएस का ना सिर्फ काम करती हैं बल्कि काम करके बहुत खुश भी हैं और आर्थिक रूप से सशक्त भी। तो चलिए मिलते हैं मेरी उड़ान की नई सखी रीना जी से और जानते हैं उनके सफर की कहानी। सखियों किसी ने क्या खूब कहा है, जरा कामयाब तो होने दो मुझे मेरे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। जी हाँ सखियों, वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। सखियों आज इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ कर रही है हमारे क्रम मेरी उड़ान की हमारी आज की सखी, जो ना केवल अपने क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है बल्कि घर बैठे आर्थिक रूप से परिवार को भी सशक्त बना रही हैं। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं आज की हमारी मेरी उड़ान की सखी से। तो रीना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खास क्रम मेरी उड़ान में।
1: धन्यवाद आराधना जी।
0: तो रीना जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आप ही की तरह आपका खूबसूरत सा परिचय, आपकी एजुकेशन जानना चाहेंगे और आप क्या करती हैं ये हमारी सखियों को बताएं।
1: जी बिल्कुल आराधना जी, मेरा नाम रीना जैन है। मैं प्रोफेशन से क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल फील्ड में काम करने के साथ साथ मुझे सोशल एक्टिविटीज और नए एक्सपीरियंस से जुड़ना भी बहुत पसंद है। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में मेरी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होती है कंपनी को लीगल, रेगुलेटरी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े मैटर्स में गाइड करना। मैं इंश्योर करती हूँ कि कंपनी अपना लीगल कंप्लायंसेस को प्रॉपरली फॉलो करे और मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ आराधना जी, तो कंपनी सेक्रेटरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंस, गवर्नेंस और रिस्पॉन्सिबल फंक्शनिंग को इंश्योर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
0: रीना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने सीएस की पढ़ाई की है और घर से ही आप ऑनलाइन काम कर रही हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली?
1: जी बिल्कुल आराधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने जब ये कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कंप्लीट किया तो उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। गवर्नमेंट जॉब करते करते ही मेरी मैरिज हुई, उसके बाद मुझे एक प्यारी बेबी हुई। बट बेबी को संभालने के लिए घर पे कोई था नहीं, तो जॉब के साथ बेबी को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने अपनी जॉब स्विच कर दी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी बच्ची बड़ी हुई, फिर मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। तो इस कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स की यही खास बात है कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू घर से भी ये काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं।
0: क्या बात है, यानी आपने सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद में आपने ये काम शुरू किया।
1: जी बिल्कुल, मैंने अपनी बच्ची को अपनी पहली प्रायोरिटी समझा, क्योंकि इस प्रोफेशन की बात ऐसी है कि इसमें हम जॉब भी कर सकते हैं और अपना सेल्फ वर्क भी कर सकते हैं।
0: क्या बात है। तो रीना जी, एक बात और जानना चाहेंगे हम यहाँ पर आपसे कि ये जो आपका सीएस का काम है, क्या इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ अन्य कोर्स या फिर कोई ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है?
1: नहीं, इसके लिए कुछ अलग से तो करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हम CS कोर्स करते हैं उसी में हमारी सारी पढ़ाई भी हो जाती है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो जाती है, जो हमें जॉब में भी हेल्प करती है और यदि हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं तो उसमें भी हेल्प कर सकती है। जैसे कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम के कारण CS प्रोफेशनल्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज और बढ़ गई हैं। इस वजह से प्रोफेशन उन लोगों के लिए भी अट्रैक्टिव है जो प्रोफेशनल करियर के साथ साथ वर्क लाइफ की स्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं।
0: आप जो भी काम कर रही हैं उसमें आपको मजा तो आ रहा है ना?
1: जी बिल्कुल, ये मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। मैं अपने डेली वर्क में सबसे पहले अपने क्लाइंट्स और कंपनीज से जुड़े कंप्लायंस मैटर को रिव्यू करती हूँ, उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को चेक करती हूँ। मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, लीगल और कॉरपोरेट मैटर पर रिसर्च करना और क्लाइंट्स को अब जितनी भी इम्पोर्टेंट गाइडेंस देनी रहती वो मेरा काम है।
0: क्या बात है। तो रीना जी, अब आगे हमें ये बताएं कि जब आप कोई काम करती हैं तो उस काम में कुछ चुनौतियां, कुछ परेशानियां भी आती होंगी, तो उन्हें आप किस तरह से मैनेज करती हैं, हैंडल करती हैं, ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो और आपका काम भी डिस्टर्ब ना हो, यानी कि परिवार डिस्टर्ब ना हो।
1: हर प्रोफेशन की तरह मेरे काम में भी कई तरह के चैलेंजेस और हर्डल आते हैं, लेकिन मैं उन्हें प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ। जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती है मैं पहले शांत रहकर उसे समझने की कोशिश करती हूँ और फिर सही सॉल्यूशन पर फोकस करती हूँ। मेरे लिए पेशेंस, कंटिन्यूस लर्निंग और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें प्रोफेशनली और पर्सनली मजबूत बनाती है। इसी सोच के साथ मैं अपने काम और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ आराधना जी, मैंने अपने अनुभव से यही सीखा है कि रास्ते में हर्डल्स आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन हर्डल्स का सामना हम किस कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में।
0: बिल्कुल, यानी कि हमें उन हर्डल्स को ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से उनको हैंडल करना है, है ना? ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो काम करती हैं उसमें आपके परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है या फिर कुछ कम रहता है?
1: मेरी प्रोफेशनल जर्नी में मेरे परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे परिवार ने हमेशा मेरे काम को समझा, मुझे प्रोत्साहित किया और हर कदम पर मेरा साथ दिया। जब परिवार का विश्वास और सहयोग आपके साथ हो तो किसी भी चुनौती का सामना करना बहुत आसान हो जाता है आराधना जी।
0: बिल्कुल, चुनौतियां अपने आप धीरे धीरे पार होती चली जाती हैं।
1: मैं मानती हूँ कि एक महिला के लिए परिवार का सपोर्ट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। मेरे परिवार ने मुझे अपने करियर को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए हमेशा मोटिवेट किया है। मैं जो भी कर पा रही हूँ उसमें मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे परिवार के प्यार, विश्वास और सहयोग की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके लिए मैं अपने परिवार के लिए दिल से आभारी हूँ।
0: बिल्कुल, दिल से आभारी होना ही चाहिए क्योंकि परिवार का सपोर्ट आपके साथ में है। और अंत में रीना जी, आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगी?
1: अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक महिला की पहचान केवल उसके परिवार से नहीं बल्कि उसकी अपनी प्रतिभा, मेहनत और आत्मनिर्भरता से भी होती है। आज की महिला अपने परिवार को संभालने के साथ साथ एजुकेशन, प्रोफेशन, बिजनेस और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। मेरी सभी सखियों से यह अपील है कि अपने सपनों को कभी छोटा मत समझिए, सीखते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़ती है। याद रखिए, एक सशक्त महिला सिर्फ अपना भविष्य नहीं बनाती, वह आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य संवारती है।
0: रीना जी, आपने हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, निश्चित तौर पर हमारी सखियां भी इस क्षेत्र से जुड़कर ना सिर्फ अपना नाम कमाएंगी बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त भी बनेंगी। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी उड़ान में अभी आप सुन रही थी रीना जी के सफर की कहानी। और अब सुन लेते हैं दिल की धड़कनों को बयां करता एक और खूबसूरत सा गीत।

और इस प्यारे से गीत के बाद अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं रूप लावण्य में रूखी और बेजान त्वचा की। सिक्यों रूखी और बेजान त्वचा को अलविदा कहना और प्राकृतिक निखार को बनाए रखना, ये बात इस चिपचिपे उमस भरे मौसम में बहुत जरूरी है, क्योंकि रूखी और बेजान त्वचा में चमक न होने के कारण सब कुछ सूना सूना सा लगता है। भले ही आप कितना ही मेकअप कर लें, तैयार हो जाएं, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है ना? तो फिर चलिए जल्दी से नोट कीजिए ये घरेलू फेस पैक जो आपकी त्वचा को इस मौसम में भी तरोताजा, चमकदार और सेहतमंद बनाए रखेंगे। तो फिर सबसे पहले तैयार करते हैं खीरे का फेस पैक। इसे बनाने के लिए सखियों एक बाउल में 2 चम्मच खीरे का रस लें, उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 छोटा चम्मच ही शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को 20 मिनट तक सूखने दें। जब आपका चेहरा सूख जाए तो उसे ठंडे पानी से धो लें। इससे त्वचा न सिर्फ तरोताजा रहेगी बल्कि चमकदार भी बनेगी। इसी तरह सखियों निखार लाने और टैनिंग हटाने के लिए चुटकी भर हल्दी पाउडर में 2 चम्मच दही और 1 छोटा चम्मच शहद मिलाकर चिकना पेस्ट बना लें। इसे पूरे चेहरे व गर्दन पर 15 मिनट लगाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी से आप अपना चेहरा धो लें, चेहरे पर निखार आएगा। तो सखियों ये तो थे कुछ आसान से घरेलू फेस पैक रूखी और बेजान त्वचा को अलविदा कहने के लिए। और अब प्यार की कसौटी पर कसा दिल के करीब रचा बसा सुन लेते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

देखियो, रोज सुबह बच्चों के टिफिन के लिए अलग अलग तरह का नाश्ता बनाना हम माओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो खाने में बच्चों की अलग अलग पसंद फरमाइश, और दूसरा रोज रोज रोटी सब्जी भी नहीं दे सकते, है ना। तो चलिए लंच बॉक्स के लिए आज बनाते हैं रसोई में कुछ अलग, कुछ नया, जो न केवल पौष्टिक हो बल्कि ठंडा होने पर भी बच्चों को पसंद आए। तो चलिए आज अपनी रसोई में बनाते हैं मिल्क पाउडर पराठा। इसे बनाने के लिए सखियों आपको चाहिए आटा एक कटोरी, नमक चुटकी भर, दूध आटा गूंथने के लिए, घी या तेल सेंकने के लिए, मिल्क पाउडर 2 बड़े चम्मच, मिश्री 2 बड़े चम्मच या स्वादानुसार, काजू 5 से 6 और बादाम भी 5 से 6। और अब नोट कीजिए इसे बनाने की विधि। सबसे पहले आटे में नमक मिलाएं और आवश्यकतानुसार दूध डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। आप जो दूध लेंगे वो सामान्य तापमान का होना चाहिए। अब इसे 10 मिनट ढककर रख दें। और अब मिल्क पाउडर, काजू, बादाम और मिश्री, इन सभी को चिकना पीसकर एक बाउल में रख लें। अब आटे की एक लोई बनाकर गोल रोटी बेल लें। इसमें थोड़ा सा घी फैलाएं और तैयार भरावन को रोटी के बीच में रखें और लोई बना लें। अब इस लोई को थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बेल लें। पराठे को गर्म तवे पर मध्यम आंच पर घी से सुनहरा सेंक लें। तो लीजिए तैयार है सखियों बच्चों के टिफिन में रखने के लिए स्वादिष्ट पौष्टिक मिल्क पाउडर पराठा। तो सखियों बनाइएगा जरूर, और हाँ हमें भी बताइएगा कि कैसा बना और खाने में बच्चों के साथ साथ आपको भी कैसा लगा। और अब सुन लेते हैं दिल की खूबसूरत बातों से सजा एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में हम बात कर रहे थे दिल के स्वास्थ्य की देखभाल की, क्योंकि सखियों अक्सर हम महिलाएं घर परिवार और काम की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाती हैं कि अपने दिल की और अपनी सेहत

की देखभाल करना ही भूल जाती हैं। तो चलिए आज काम की बातों में हम बात करेंगे दिल को स्वस्थ रखने के लिए कुछ सरल आदतों की, जैसे कि रोज सुबह या शाम को थोड़ा घूमना, चलना फिरना या व्यायाम करना, पौष्टिक खाना खाना, भरपूर साफ स्वच्छ पानी पीना, पूरी नींद लेना, तनाव को कम करना और हाँ, नशे या धूम्रपान से दूर रहना। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सखियों यहाँ पर ये है कि अपने शरीर के संकेतों को सुनना और हाँ, अगर कभी कुछ असामान्य लगे ना तो संकोच बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना। यानी कहने का मतलब है सखियों, सबका ख्याल रखिए लेकिन अपने दिल को बिल्कुल भी मत भूलिए। याद रखिए सखियों, स्वस्थ रहना केवल अपने लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और यही संदेश है राष्ट्रीय पोषण माह का भी, यानी संतुलित भोजन कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो सखियों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें कि हमारे इस खूबसूरत कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। तो फिर मिलने के वादे के साथ अनुमति दीजिए आराधना जैन को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम और उसके बाद आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं करण सिंह गुर्जर और साथी, और सुगम संगीत के कलाकार होंगे यूनुस मलिक, जिनसे आप सुनेंगे गीत और भजन। शुरुआत करते हैं करण सिंह गुर्जर और साथियों से मालवी लोकगीतों की।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:57 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, आपके मन में जिज्ञासा होती होंगी कार्यक्रम के संबंध में, तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, जिस कार्यक्रम के संबंध में जो भी जानकारी हो, या जो भी आप कहना चाहते हैं, आप पत्रों के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। आपके पत्रों से हमें मार्गदर्शन मिलता है अपने कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने में। आपको जो भी कार्यक्रम पसंद आता है या जिसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं, सबसे पहले उस कार्यक्रम का नाम लिखिए, उसके बाद लिखिए द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल। आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने को हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जंजीर का एक गाना। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं पुरानी फिल्म साजन का एक गाना, और आवाज़ें हैं इसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
1: रेशम की डोरी

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसी के साथ ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेल 2026 में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह असीम गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरू ढांडा की जीत ने नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी यह जीत भारतीय युवाओं को निशानेबाजी में जाने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित

0: जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में लगभग 24,500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
1: आज की कैबिनेट ने 24,500 करोड़ के कामों को स्वीकृति दी। दमोह कटनी 105 किलोमीटर का मार्ग जिसकी लागत 4,470 करोड़ रुपए है, इसकी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सिंगरौली में पूर्व में 450 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के साथ बंदा था, वहां पर 150 सीटें MBBS की होने के बाद 155 स्तरीय अस्पताल एक नया जो उसके साथ में रिविजन होगा, 372 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई।
0: बुरहानपुर जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शाहपुर स्थित सांदीपनी विद्यालय में नुक्कड़ नाटक का मंचन कर विद्यार्थियों एवं नागरिकों को जनसेवा, सामाजिक सहभागिता और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं नेपानगर के शासकीय महाविद्यालय में भी छात्र छात्राओं ने आकर्षक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर आमजनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया। कटनी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा मेरा योगदान विशेष अभियान का 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृद्धजन एवं अनाथालय सेवा तथा नेत्र परीक्षण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण और सैनिक परिवारों का सम्मान तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री वितरण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में आत्मसमर्पित नक्सलियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत पुलिस लाइन में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र में महिला और पुरुष आत्मसमर्पित नक्सलियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने ड्राइविंग, जेसीबी ड्राइविंग और सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षण लेने की इच्छा जताई थी। उन्हें कौशल प्रशिक्षण के साथ मुख्य धारा से जोड़कर सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार किया जा रहा है।
2: मध्य प्रदेश में जो पुनर्वास एवं राहत नीति है उसके पर भरोसा करके करीबन 13 नक्सलाइट्स ने मध्य प्रदेश में और सीमावर्ती MMC क्षेत्र में करीबन 45 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया। हमने जितने भी नक्सल्स यहाँ पर सरेंडर किए उन लोगों के बैंक खाते भी खुले हैं और उसमें उनको जो फाइनेंशियल राहत वो मुहैया कराई जा चुकी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो भविष्य में अपना जीवन यापन कर सकता है। अधिकतर लोगों की गाँव के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से गाँव को छोड़ चुके थे, तो वहां पर खेती किसानी करना, अन्य चीजों को करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है जैसे हार्वेस्टर चलाना, ट्रैक्टर चलाना, कोई जो बीज है उसकी देखरेख करना, फर्टिलाइजर्स का यूज, इन सब के बारे में भी इनको जानकारी दी जा रही है।
0: अब रुक करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई हिस्सों में तेज धूप निकल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद उपनिर्वाचन में सुबह 11 बजे तक 47.88% मतदान दर्ज किया गया है। कटनी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में विश्व रेबीज दिवस पर रेबीज प्रबंधन विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुरैना में चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए कलेक्टर और SP ने देर रात विभिन्न गांवों का दौरा कर SAF चौकियों का निरीक्षण किया। शिवपुरी में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में 30 सितंबर से इंटर स्कूल U14 डायरेक्टर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ में शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित 25 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण का समापन हुआ। बुरहानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में 1 से 7 अक्टूबर तक बकरी एवं पोल्ट्री पालन पर 7 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीकरण जारी है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
4: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया।

0: और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सरायकाले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने

0: हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की है सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है। महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी सूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है।

0: ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
1: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रुपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
2: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
1: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
3: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में मैं हूं आपके साथ जावेद खान। शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के एक गाने से, जिसको लिया है हमने फिल्म सरगम से। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नगीना मोहम्मद अजीज़। इन्होंने लिखा है सरोज चौक अमरावती से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब मुजतबा, सादिक और सादिक। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है धामणी मनोरा ज़िला वाशिम से, लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत्र डेरे ने इसी गाने को पसंद किया है। लिखने वाले हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा। इन्होंने लिखा है प्रमिलागंज आलोट ज़िला रतलाम से। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है घंटाघर चौक खंडवा से, लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना है फिल्म धर्म वीर से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है। ये फिल्म 1977 में रिलीज़ हुई थी और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राही, सरिता गायकवाड़ प्रिंस से, एकांश गायकवाड़ बदलापुर मुंबई से, लिखने वाले हैं सिद्धांत गायकवाड़, प्रणेता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़ टुक टुक, आकार हाइट बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गायकवाड़, सुमित गायकवाड़ कुंवारी ध्वनि गायकवाड़ परी। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सिंहपुर बड़ा से, लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है।

नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नोपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। कवई 12 राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, ग्राम सनोतिया, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, जिला गुना, मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार, हिमांशु और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी कार्य को पसंद किया है। पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, आमना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म पाकीज़ा से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। कैफ भोपाली ने इस गाने को लिखा है, ग़ुलाम मोहम्मद का संगीत है और यह फिल्म आई थी 1972 में। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गोला बाजार बक्सर से, श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है, लिखने वाले हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये खत है पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से, लिखने वाले हैं मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और सानवी गुप्ता ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए ये खत है गौरी नगर इंदौर से, आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो। अब हम चांद से पार निकल आए हैं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मी शराबी का एक गाना। आवाज़ किशोर कुमार की है, प्रकाश मेहरा का लिखा हुआ गाना है, बपी लहरी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है चांडोर बिस्वा, तालुका नांदुरा, ज़िला बोरडावा, महाराष्ट्र से, नारायण भाऊ खाड़से, रक्षाबाई खाड़से खड़से, ललिता रंजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी ने। इसी गाने के लिए फरमाइश हमारे पास में भेजी है ज़िला बुरहानपुर, मुकाम पोस्ट मोहद से, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ से, मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज़ तड़वी, रोज़मीन, तैमूर भैया, रीना, मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू, पारू,

परू और समस्त तड़वी परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, असालत पुरा मरादा पास से लिखने वाले हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबेर अंसारी। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नागिन से, आवाज आयशा भोसले और मोहम्मद रफी की है। वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये फिल्म 1976 में आई थी। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छबड़ा राजस्थान से, आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बिजानन माता रोड भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खर्चे, सोनू वाणी, मोनू वाणी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप ताम्रकार, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता। और इसी को पसंद किया है संजय सोनी, पवन यादव, सुनीता, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और सौम्या और उनके मम्मी पापा ने। सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
2: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
3: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
2: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
3: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
2: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
3: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
2: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
4: ए भाई जरा देख।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए आप प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेल 2026 में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा यह भारत के लिए असीम गर्व का क्षण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बुरहानपुर जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शाहपुर स्थित सांदीपनी विद्यालय में नुक्कड़ नाटक का मंचन कर विद्यार्थियों एवं नागरिकों को जनसेवा, सामाजिक सहभागिता और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। बालाघाट में आत्मसमर्पित नक्सलियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत पुलिस लाइन में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र में महिला और पुरुष आत्मसमर्पित नक्सलियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मौसम में प्रदेश में अगले चार दिनों तक बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई हिस्सों में तेज धूप निकल सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। आइए हम बता दें आपको शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। आज का युवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 5:33 पर और 6:30 पर, रात 8:35 पर और आप सुनेंगे 10:20 पर। पांच बजकर 40 पर हम आपको सुनवाएंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। 6 बजे का समय है एनसीईआरटी के प्रायोजित कार्यक्रम का। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर। रात 8 बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं उर्दू प्रोग्राम कहकशां और रात 10 बजे आप सुनेंगे एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स और रात 10:30 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत शिराज हुसैन खां का सारंगी पर बजाया राग मेघ। ये थे हमारे आकाशवाणी

भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। मीडिया वेब डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 हुए हैं। अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5 बजे से आप मीडियम वेव पर हमारा प्रसारण सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति। इसमें आप सुनेंगे करण सिंह गुर्जर और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थे और आप सुन रहे थे डीटीएच ऑडियो चैनल भोपाल से ये कार्यक्रम। डीटीएच ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी का एक गाना जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से। सुनिए ये गीत।

0: बाल तो देखो।
1: अरे रंग लगाया
0: इसके बाल तो देखो।
1: अरे झूठे मूठे
0: इसके दांत तो देखो।

0: चेहरा किसी का खिलता है, हमको है मालूम किसी से किसी से किसी से छुप कर ये भी मिलता है। मैं नाम बताऊं
1: ना ना ना ना ना जी,
0: तस्वीर बताऊं
1: ना जी ना जी ना जी,
0: घर घर

अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में एक गाना, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म शान का एक गीत, लिखा है आनंद बख्शी ने, आर डी बर्मन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

0: अब हम आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म दीवार का एक गीत। साहिल लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन के संगीत है, सुनिए ये गीत।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।
1: कह

0: लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए।
1: कातिलों के कातिल ये फिल्म का नाम है। इसमें जो गाना हमने चूज़ किया है वो है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनिए ये गीत।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फर्ज का एक गाना। आवाज़ें हैं सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण, और लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल कटाई के बाद प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेल 2026 में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह भारत के लिए असीम गर्व का क्षण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। गांधी जयंती से राष्ट्र सेवा और सामाजिक सहभागिता की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में सेवा मेरा योगदान अभियान का आयोजन 2 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस अभियान में समाज के प्रत्येक वर्ग को सेवा कार्यों से जोड़ते हुए स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृद्धजनों एवं अनाथ बच्चों की सेवा, नेत्र परीक्षण सहित अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई हिस्सों में तेज धूप निकल सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण, और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने को हैं।

0: इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम शब्द सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे हमारी भाषा, संस्कृति, साहित्य और हमारी पहचान को भी अपने भीतर समेटे होते हैं। हिंदी की यही व्यापकता और वैश्विक यात्रा आज के हमारे विशेष संवाद का विषय है। आज शब्द सागर में हमारे साथ एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व है जिन्होंने हिंदी भाषा, साहित्य, पत्रकारिता और भारतीय संस्कृति को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे अतिथि है डॉक्टर जवाहर कर्नावट, बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई से महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त है। डॉक्टर कर्नावट वर्तमान में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र के सलाहकार तथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र के निदेशक है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी जी धन्यवाद।
1: डॉक्टर कर्नावट जी, आज हिंदी भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व के अनेक देशों में अपनी पहचान बना रही है, आपके अनुसार विश्व पटल पर हिंदी के इस विस्तार की प्रमुख वजह क्या है?
2: देखिए, जो हमारी भारत की भाषा और संस्कृति है वो पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है।
1: जी,
2: क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हमारी भाषा और संस्कृति है ये सदियों से खासकर ज्ञान परंपरा के कारण और उसका जो एक महत्व है वो पूरे विश्व में बहुत पहले से फैला हुआ है, 2000 वर्ष पहले से। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथों पर अध्ययन करना है, हमारी संस्कृति के बारे में जानना है, तो वो ये मानते हैं कि भाई अगर हमें उन ग्रंथों को जानना है तो उसकी भाषा भी सीखना पड़ेगी।
1: बिल्कुल।
2: और इसीलिए आपने देखा होगा कि विश्व में जो विश्वविद्यालय हैं, जितने प्रमुख विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर एक इंडोलॉजी डिपार्टमेंट भी होता है, यानी भारत की ज्ञान परंपरा का विभाग। और इसलिए उनका ये मानना होता है कि अगर उस ज्ञान परंपरा को जानना है तो उस भाषा को भी सीखना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि विश्व के कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ाई जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए इस भाषा का विस्तार हुआ, एक तो प्रमुख कारण ये रहा। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि आज

0: से लगभग समझ लीजिए 190 वर्ष 195 वर्ष पहले 1834 से हमारे प्रवासी भारतीयों का गिरमिटिया के रूप में जाना हुआ, तो उनके माध्यम से भी ये जितने देश हैं वहाँ पर हमारी भाषा गई, हमारी संस्कृति गई, और उसके बाद वो लोग गए, उन्होंने अपने संघर्ष से वहाँ पर भाषा को स्थापित किया, संस्कृति को स्थापित किया, और आज देखिए तो वो कहीं पर प्रधानमंत्री है, कहीं पर राष्ट्रपति है। तो इस कारण ये हमारी जो भाषा और संस्कृति है इसका व्यापक प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर हुआ है।
1: जी जी जी। अब जैसे आपने एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 से अधिक लगभग देशों में हिंदी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यक्रमों में भाग लिया है
0: जी।
1: इन यात्राओं के दौरान आपको विदेशों में हिंदी के प्रति किस तरह की रुचि और जुड़ाव देखने को मिली?
0: हाँ देखिए, ये 30 तो पुराना आंकड़ा है, मैं अभी तक 44 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि एक तो विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई जाती है उसके कारण उसका महत्व है, दूसरा अभी आप देखिए कि करीबन 209 देशों में 4.5 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं
1: जी।
0: तो एक तो शिक्षण में हिंदी है, दूसरा सामाजिक जीवन में भी हमारी भाषाएं हैं, तो क्योंकि वो मूल रूप से तो भारतीय हैं, वो भले उस देश में रह रहे हैं तो वो अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, उसका पालन करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भाषा गई तो संस्कृति गई,
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए वो उस भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति को जी रहे हैं। तो एक तो इन देशों में कई कार्यक्रम होते रहते हैं, इनकी अपनी संस्थाएं बनी है जो हिंदी को, हिंदी साहित्य को फैलाती है। जैसा कि मैंने आपको अपने परिचय में बताया था कि हमारा प्रवासी भारतीय शोध केंद्र है, तो हमने अभी तक 19 देशों की रचनाएं छाप दी कि वहां पर भी लोग हिंदी को जी रहे हैं
1: जी,
0: प्रवासी जो भारतीय हैं। तो इस प्रकार वहां पर इस तरह की सक्रियता इन भाषाओं के लिए है। दूसरा, हमारे धार्मिक पर्व वहां पर मनाए जाते हैं
1: जी,
0: हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं वहां पर हैं, तो वहां पर भी इस कारण भी भाषा को बल मिलता है
1: जी।
0: तो इस प्रकार इन सारे देशों में मैं जहां जहां गया हूं, मैं तो हिंदी के कार्यक्रमों के लिए गया हूं। जैसे अभी मैं जब फ्रैंकफर्ट गया था तो वहां पर भारतीय भाषा सम्मेलन था, केवल हिंदी का नहीं था, वहां पर मराठी वाले थे और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अपनी भाषा को कैसे बचाए हुए हैं
1: जी।
0: मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मलेशिया में 1,00,000 बच्चे 522 विद्यालयों में तमिल माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में पढ़ते हैं, आप बताइए, क्योंकि उन्होंने कहा भाई हमारी भाषा अगर जीवित रहेगी, अगर प्राथमिक शिक्षा पढ़ेंगे, साथ में वो मलय और अंग्रेजी भी पढ़ते हैं
1: जी।
0: तो इस प्रकार इन सारे देशों में कहीं ना कहीं हमारी भाषा का विस्तार, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी लोग उसके लिए संघर्ष करते हैं
1: जी, बिल्कुल संघर्ष करते हैं, और ये निश्चित तौर पर बेहद जरूरी भी है। अब जैसे हम बात करें तो मॉरिशस, फिजी जैसे देशों में हिंदी की अपनी एक मजबूत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, प्रवासी भारतीय की जैसे अभी आपने बात करी, तो प्रवासी भारतीय समुदाय ने हिंदी को विदेशों में जीवित रखने और आगे बढ़ाने में किस प्रकार अपना योगदान दिया?
0: देखिए, प्रवासी भारतीय तो मैंने जैसा कि बताया सबसे पहले 1834 में मॉरिशस गए थे
1: जी,
0: उसके बाद अन्य देशों में, और वहां पर अब वो एक तरह से चौथी पीढ़ी भी आ गई है 3 पीढ़ियों के बाद। लेकिन चूंकि उनके मन में अपनी मिट्टी के प्रति भारतीय होने का गौरव आज भी इतना अधिक है, इसलिए वहां पर अब देखिए उन लोगों ने उसके लिए संघर्ष भी बहुत किया। मैं आपको बता दूं, जब ये लोग गिरमिटिया देशों में मजदूर के रूप में गए तो ये तो अपने साथ आप जानते हैं बहुप्रचलित है कि ये तो रामायण के और छोटे धार्मिक ग्रंथों के गुटके लेकर गए थे
1: जी।
0: उसमें अधिकांश उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे, है ना, और कुछ दक्षिण भारत से भी थे, तो उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था। तो वहां पर आप देखिए कि उन्होंने फिर ये अभियान चलाया कि भाई खाली सुनने से क्या काम होगा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 1901 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे, तो उनका जहाज खराब हो गया था, 10 दिन मॉरिशस में रुके। तो उन्होंने जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के स्थापित करने के लिए, उनके अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया, तो उन्होंने मॉरिशस में 10 दिन में उपदेश दिया कि भाई आप राजनीति में भाग लो, आप शिक्षा ग्रहण करो, और उसके बाद उन्होंने एक मनीलाल डॉक्टर को भारत से भेजा था जिसने वहां पर लोगों को जागृत किया, और इसीलिए वहां पर आज भी आप देखिए हिंदी के लिए शाम को बैठकाएं चलती है, उनको हिंदी की क्लासेस नहीं कहा जाता है, बैठकाएं कहा जाता है, बैठकाओं के माध्यम से हिंदी सिखाई गई और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने हिंदी सीखी। फिर सरकार ने स्कूलों में हिंदी को लाया, हिंदी को मान्यता मिली, और आप देखिए आज वहां पर विश्वविद्यालयों में PhD भी हिंदी में होती है। हालांकि आप जानते हैं कि उन देश की भी अपनी भाषाएं हैं, मॉरिशस है तो वो फ्रेंच डोमिनेट है, तो लेकिन कहीं ना कहीं इन सारे गिरमिटिया देशों में जिसमें मॉरिशस है, फिजी है, गयाना है, सुरिनाम है, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारी वो भाषा का अस्तित्व है और लोग अपने अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं
1: जी। जी जी। आपके पास 27 देशों से पिछले 120 वर्षों में प्रकाशित हिंदी पत्र पत्रिकाओं का दुर्लभ संग्रह भी है
0: जी। जी,
1: इस संग्रह में हमें विदेशों में हिंदी पत्रकारिता के विकास की कौन सी महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई देती है?
0: देखिए, ये पूरी यात्रा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि जो पत्रकारिता है वो समाज को जागृत करती है
1: जी।
0: और इन सारे देशों में हिंदी पत्रकारिता ने लोगों को जागृत किया। आप इसके उदाहरण कई है, मेरी तो पूरी पुस्तक है 300 प्रश्नों की जिसमें इसका विवरण है। तो आप देखेंगे कि अगर गिरिमिटिया देशों में उत्थान में, कई लोग कहते हैं ना भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता का योगदान रहा,
1: जी जी जी।
0: विदेशों से हिंदी पत्रकारिता का भी भारत स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा। आप यदि देखेंगे तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो 1904 में उन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन को टेकओवर किया। वो इंडियन ओपिनियन चार भाषाओं में निकलता था और उसमें तीन भारतीय भाषाएं थी। आप देखिए इंडियन ओपिनियन का, मैं दक्षिण अफ्रीका तीन बार गया हूं, मैं सारे अंक लेकर, बहुत सारे अंक लेकर आया, तो उसमें वो इंडियन ओपिनियन हिंदी गुजराती तमिल और अंग्रेजी चार भाषाओं में छपता था। आप सोचिए 1904 में चार भाषाओं में समाचार पत्र क्यों निकाला गया, क्योंकि वो उन लोगों की सारी भाषाओं में संवाद करना चाहते थे
1: जी।
0: तो उसके बाद हालांकि तमिल बंद हुई, हिंदी बंद हुई, फिर आ गई। तो इस प्रकार उस समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से जागृति हुई। आप देखिए एक सत्याग्रह शब्द है, वो कैसे आया, आपको बता दूं कि वहां पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ एक काला कानून लाया गया था, तो उसका नाम अंग्रेजी में दिया गया था, तो उसके विरुद्ध अभियान छेड़ा गया। तो गांधी जी ने कहा कि ये मेरे जो भारतीय लोग हैं जो हिंदी जानते हैं ये क्या समझेंगे, तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन में विज्ञापन छापता कि इसके लिए अच्छा सा नाम सुझाइए कोई, तो उसके लिए जो शब्द आया वो सदाग्रह आया। तो गांधी जी ने कहा ये सदाग्रह नहीं, ये सत्याग्रह होगा। वहां से शब्द इंडियन ओपिनियन से सत्याग्रह शब्द आया जो अब सारे विश्व में प्रचलित है
1: जी जी।
0: ऐसे ही आप मॉरिशस को देख लें, मॉरिशस में एक पत्रिका का जिक्र करना चाहता हूं, दुर्गा पत्रिका। अब जब मणिलाल डॉक्टर को भेजा गया तो उन्होंने सबसे पहला काम हिंदी समाचार पत्र निकाला, उन्होंने हिंदुस्तानी पहला समाचार पत्र 15 मई 1909 को निकाला और उसके माध्यम से जागृति लाई। दुर्गा हस्तलिखित पत्रिका 64 पेज की निकलती थी, एक व्यक्ति 64 पेज लिखता था, पढ़ने जाती थी, और उसके उद्देश्य क्या थे अलग अलग, और उसका एक खास उद्देश्य था कि अंग्रेजी और फ्रेंच पर लट्टू होने वालों को यह बताना कि हिंदी कितनी दमदार भाषा है। तो देखिए लोगों ने कितना संघर्ष भाषा के लिए, और उसके माध्यम 3 साल तक निकली वो, और उसमें बहुत लेख छपते थे, लोगों को लिखने के लिए प्रेरित किया जाता था। तो इस हिंदी पत्रकारिता ने पूरे विश्व में हिंदी को आगे बढ़ाने में, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में, और अन्य देशों में भी, अमेरिका में आप देख लो गदर अखबार जो निकला था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, वो केवल अंग्रेजी में नहीं था, वो हिंदी में था, पंजाबी में था, उर्दू में था, पश्तो में था, इतनी भाषाओं में निकालते थे और अद्भुत क्रांति की। फिजी से शांति दूत अखबार आपको लगेगा 1935 से 2020 तक 85 वर्ष तक एक हिंदी अखबार ने हिंदी सिखाई, कितना काम किया। तो ये तो खैर बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस हिंदी पत्रकारिता ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: जी जी जी जी। आपके संपादन में प्रकाशित पुस्तक विश्व में हिंदी में 65 देशों में हिंदी की स्थिति और आकलन किया गया है
0: जी जी।
1: इन देशों के अनुभवों को देखते हुए आज हिंदी के सामने वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण अवसर और चुनौतियां क्या है?
0: हाँ देखिए 70 देशों में हिंदी पर हमने इन 70 देशों के लोगों से लेख लिखा है, क्योंकि हम दरअसल ये बताना चाहते थे कि हिंदी का गौरव कितना है
1: जी।
0: लेकिन चुनौती तो सबसे बड़ी भारत में है, क्योंकि विदेश के लोग तो भारत को देखते हैं ना। जब विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं जब गया था, एक विद्वान थी इटली की मारिया, उन्होंने कहा कि विदेशों में तो हम हिंदी को संभाल लेंगे, आप तो भारत में हिंदी को संभाल लीजिए। तो ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
1: बिल्कुल।
0: विश्व में तो हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, इस पुस्तक को आप देखेंगे तो 70 देशों में हिंदी में किस तरह आगे बढ़ रही है विश्वविद्यालय स्तर पर, सामाजिक जीवन में। तो हमारी चुनौती यही है कि हम अपनी भाषा का सम्मान करना सीखें, उसकी जो उपयोगिता है उसको कम से कम उसको सम्मान की भावना से देखें और अधिकाधिक उसका प्रयोग करें
1: जी। बिल्कुल।
0: हिंदी भाषियों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है उसमें जी जी।
1: अब जैसे डिजिटल युग की बात करें तो डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार की संभावनाओं को आप किस रूप में देखते हैं? क्या तकनीक हिंदी को नई पीढ़ी और नए देशों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है?
0: आप देखिए कि जो हमारी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है वो भाषा प्रौद्योगिकी, वो तो सभी भारतीय भाषाओं में आ गई और उसमें हिंदी का प्रयोग उसके कारण बहुत आसान हुआ। यदि मैं आपको हिंदी पत्रकारिता की बात करूं तो पहले मुद्रित पत्रकारिता थी, आज इस टेक्नोलॉजी के विकास के कारण कितनी ऑनलाइन पत्रिकाएं हिंदी में निकल रही।
1: जी जी जी।
0: जो काम पहले नहीं हो सकता था सारे काम अब प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रहे हैं, चाहे एआई हो, एआई में आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। जितना आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं अभी पोलैंड गया था तो मैंने एआई के माध्यम से हिंदी में सारे निर्देश प्राप्त किए कि मैं इस देश में 24 घंटे हूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए मैं कहां कहां जाऊं। उसने मुझे सारा हिंदी में बता दिया कि आप 2 घंटे यहां जाइए, इसके बाद यहां घूमने जाइए। ये एआई का और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी भाषा प्रौद्योगिकी का भी हिंदी का कमाल है। तो इस प्रकार भाषा प्रौद्योगिकी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन हमारे भाषा कर्मियों को चाहिए कि उसका उपयोग करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जब तक आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी प्रौद्योगिकी कहाँ

0: आगे बढ़ेंगे। जी
1: जी डॉक्टर साहब, आपने वैश्विक हिंदी परिवार के संयोजक के रूप में हिंदी भाषा साहित्य प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी से जुड़े 100 से अधिक वैचारिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों से आपको हिंदी के वैश्विक भविष्य को लेकर क्या अनुभव प्राप्त हुआ?
0: हम लोग अभी भी हर सप्ताह एक कार्यक्रम हिंदी के विषय को लेकर करते हैं और इसके माध्यम से हमने सारे विश्व के लोगों को जोड़ा हुआ है और हम अपने विश्वविद्यालय में भी हर देश को लेकर भी कार्यक्रम करते हैं।
1: जी।
0: जैसे हमारा विश्वरंग होता है तो विश्वरंग जर्मनी, तो उसमें उस देश के लोग अपनी प्रस्तुति देते हैं। अभी तक हम 20-22 देशों का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी तकनीक माध्यम से, खासकर कोरोना के बाद इन ऑनलाइन के माध्यम से हम पूरे विश्व के लोगों को हिंदी के माध्यम से जोड़ने के लिए और उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है और इसके माध्यम से वो अपने अपने देश में बैठकर भाषा को आगे बढ़ाने का, खासकर हिंदी और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास इसके माध्यम से भी हम करवा रहे हैं।
1: कार्यक्रम के अंत में चलते चलते यदि हम आने वाले वर्षों में हिंदी को विश्व स्तर पर और अधिक प्रभावशाली भाषा के रूप में स्थापित होते देखना चाहते हैं तो सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, साहित्यकारों, मीडिया और प्रवासी भारतीय समुदाय को किन क्षेत्रों में मिलकर काम करने की आवश्यकता है?
0: देखिए, सबसे अधिक आवश्यकता है कि हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। आप जब विश्व स्तर की बात करते हैं तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं। अरबी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा है क्योंकि 16 देश हिंदी बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। हमारे देश में हमारी भाषा का प्रयोग कितने लोग करते हैं? बातें तो बहुत करते हैं। तो ये स्थिति जब तक नहीं समाप्त होगी तब तक हम वैश्विक स्तर पर उसको स्थापित करने की बात कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम अपने देश में अपनी भाषा को सम्मान दें, उसका प्रयोग करें और उसको आगे बढ़ाएं, तो अपने आप वो विश्व स्तर पर पहुंच जाएगी।
1: जी, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो दी गई जानकारी उससे हमारे श्रोतागण अवश्य रूप से लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी की सभी श्रोताओं को सीमा शिवरे सुमन का नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी रचना, एक तुम्हारे जाने भर से उजले दिन भी रात हुए, एक तुम्हारे जाने भर से उजले दिन भी रात हुए, पानी बरस रहा अंबर से मुद्दत हुई बरसात हुए। एक तुम्हारे जाने भर से उजले दिन भी रात हुए, पानी बरस रहा अंबर से मुद्दत हुई बरसात हुए। कैसे कह दूँ इसको बारिश, कैसे कह दूँ इसको बारिश, हम तुम दोनों साथ नहीं, तन्हा तन्हा सिसक रहे हैं, हाथों में अब हाथ नहीं, कलकल करते झरने सारे मीठे गीत सुनाते हैं, कलकल करते झरने सारे मीठे गीत सुनाते हैं, दादुर मोर पपीहा कोयल मुझसे सब बतियाते हैं, और एक जमाना बीत गया है मेरी तुमसे बात हुए, पानी बरस रहा अंबर से मुद्दत हुई बरसात हुए। आगे जो विरहणी है वो कहती है कि मन में जलती विरह हुताशन, मन में जलती विरह हुताशन सावन आग लगाता है, और इस भीगे मौसम में तुम बिन मेरा मन घबराता है। मन में जलती विरह हुताशन सावन आग लगाता है, इस भीगे मौसम में तुम बिन मेरा मन घबराता है, गुनगुन करता भवरा अब भी कलियों पर मंडराता है, और भागा भागा रोज चकोरा चांद से मिलने आता है, भागा भागा रोज चकोरा चांद से मिलने आता है, हम तुम दोनों मिल नहीं सकते ये कैसे हालात हुए, पानी बरस रहा अंबर से मुद्दत हुई बरसात हुए, एक तुम्हारे जाने भर से उजले दिन भी रात हुए। विरहणी आगे कहती है कि पायल कंगन चूड़ी गजरा तुम बिन फीके फीके हैं, पायल कंगन चूड़ी गजरा तुम बिन फीके फीके हैं, आँखों से कजरा बहता है नैन ये भीगे भीगे हैं, लेकर तुम बारात ना आए, लेकर तुम बारात ना आए, मेहंदी रंग न लाई है देहरी पर नैना अटके हैं, डोली द्वार ना आई है, मेहंदी रंग न लाई है देहरी पर नैना अटके हैं, डोली द्वार न आई है, दिल ही दिल में मांग भरी है, मन में फेरे साथ हुए, पानी बरस रहा अंबर से मुद्दत हुई बरसात हुए, एक तुम्हारे जाने भर से उछले दिन भी रात हुए। इसके बाद दूसरी रचना में लेती हूँ। मैं श्रोताओं को बता देना चाहती हूँ कि दरख्त का मतलब होता है पेड़। पर्यावरण विशेष पर ये रचना मेरी प्रस्तुत है। कितने ही आशियां दरख्तों से

ये सर्वविदित है कि पेड़ हमारे कितने काम आते हैं। होगा रुखसत जहाँ से जब बंदे, होगा रुखसत जहाँ से जब बंदे, होगा रुखसत जहाँ से जब

आधुनिक युग में हम इतने बड़े बड़े घर बना लेते हैं और पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए जगह ही नहीं छोड़ देते हैं, तब ये पंक्तियाँ आती हैं कि एक कमरा घरों में कम ही सही, एक

हाथों से, जो अच्छा ही है वो हमेशा ही बुराई पर भारी पड़ी है। तब ये पंक्तियां आती हैं कि नेकी बदियों पे है सुमन भारी, नेकी बदियों

बातों से। एक गजल प्रस्तुत है। जो मिली अब की सौगात कुछ और थी, खुद से खुद की मुलाकात कुछ और।

की सौगात कुछ और थी। आगे शेर सुने कि कटता कैसे भला हमसे तन्हा सफर, कटता कैसे भला हमसे तन्हा सफर, साथ वो चल दिए बात कुछ और थी। कटता कैसे भला हमसे तन्हा सफर। और ये शेर भी देखें बतौर खास, दो मुसाफिर मिले एक जहाँ हो गए, दो मुसाफिर मिले एक जहाँ हो गए, फिर सुखों की शुरुआत कुछ और थी। जो मिली अब की सौगात कुछ और थी, खुद से खुद की

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्द सागर। इसमें आपने पहले सुनी भेंटवार्ता विश्व पटल पर हिंदी का प्रभाव, इस विषय पर आप सुन रहे थे डॉक्टर जवाहर कर्नावट से मनीष गजभिये की बातचीत, और बाद में आपने सुना काव्य पाठ सीमा शिवहरे से। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 11वीं कड़ी।

हाँ, बहुत अरसे बाद सरकारी दौरे के सिलसिले में रतनपुर आना हुआ है। रतनपुर जहां मैं पैदा हुआ, मेरा बचपन गुजरा। सिवाय कुछ मामूली बदलावे के रतनपुर आज भी जस का तस वहीं ठस खड़ा है जहां तब था। हम एक एक कर गांव छोड़ गए, हम यानी अम्मा, कुंदनजीत जी और मैं खुद। यही छोटा सा परिवार था हमारा। कुंदनजीत जी ब्याह कर चली गई। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जो गांव छोड़ा तो लौटा नहीं। नौकरी लगने पर अम्मा भी मेरे साथ चली गई। 2 एकड़ का खेत मामा ने हथिया लिया और हमारे कच्चे घर पर कब्जा कर उसे तुड़वाकर गोकुल साहू ने पक्का मकान बना लिया है। हमारा घर, घर की याद के साथ कितनी यादें मन में घुमड़ने लगी हैं।

0: कन्हैया बनता धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे।
1: बनता नहीं, तुम लड़की हो इसलिए बोलो बनती धीरे धीरे।
0: तो चुप कर, मैं कविता याद कर रही हूँ।
1: तो याद करो, पर व्याकरण क्यों भूल रही हो?
0: कविता जैसी होगी वैसी ही याद करेंगे ना हम। माँ इसे कहो ना बीच में पिटर पिटर ना करे।
2: किशन किशन, उसे नाहक परेशान ना कर, चलो अपना सबक जल्दी याद करो दोनों। आज शनिवार है ना, दोनों को हाट भी जाना है। किशन ये लो तुम्हारे पैसे, और कुंदन बेटिया ये रहे तुम्हारे पैसे।
1: अम्मा तुमने मुझे फिर दो पैसे और जिजी को एक पैसा दिया है, ऐसा क्यों?
2: अरे बेटा वो लड़की है
1: इसलिए उसे कम पैसे दिए हैं, ये तो गलत बात है।
2: तुमसे बहस नहीं करना मुझे। और ये बता तेरे माथे पर ये घुमड़ा कैसा?
1: कुछ नहीं अम्मा, बस यूं ही।
2: सच सच बता, फिर किसी से झगड़ा किया ना?
1: अम्मा गणेश मुझे चिढ़ा रहा था कि उसके बापू हैं पर मेरे नहीं। मैंने भी कह दिया फिर कि तेरा बापू मर गया तो तेरे पास भी बाप नहीं होगा।
2: हाय राम, ऐसे कहते हैं क्या किसी को?
1: उसने मुझे ढेला मार दिया।
2: तो और क्या करता मूर्ख वो?
1: पर माँ हमारे बापू क्यों नहीं है?
2: हमारी किस्मत ही फूटी है बेटा, तेरे जन्मते ही तेरे बापू मर गए।

0: आज अम्मा नहीं है इस दुनिया में, पर रतनपुर में बिताए बचपन और अम्मा की यादें तो आज भी मेरे साथ हैं। हम दोनों बच्चों पर जान देती थी हमारी अम्मा। बटाई पर दी 2 एकड़ जमीन से मिलने वाले 8-9 मन अनाज से बस 3 लोगों का पेट भरता था, और बाकी खर्च कहां से पूरा होता। बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ जाता है, फिर अपनों की क्या कहें। मामी ने मां को ही अपने घर और खेती पर मजूरी के लिए रख लिया था। एक दिन की बात है,
1: मैं कहूं आ गई महारानी जी, कितनी देर कर दी।
2: भाभी वो मैं रास्ते से आ ही रही थी।
1: बस बस बस, रास्ते में आते हुए ज्यादा लक्षण न दिखाया करो, लोग हमें 4 बातें सुनाते हैं।
2: भाभी कल रात भर कुंदन को ताप चढ़ा रहा, बेचारी सो ना पाई, सुबह सुबह उसकी आंख लग पाई, इसी कारण देरी होगी। भाभी
1: रहने दो रहने दो, मैं कहूँ तुम्हारे सब बहाने पता है मुझे।
2: भाभी बच्ची की तबीयत का झूठ क्यों बोलूंगी, आपकी सौ
1: है, है, है। मेरी झूठी सौगंध खाती है तू, तो चाहती ही है कि मैं मर जाऊं, सुनते हो जी।
3: अरे सुबह सुबह क्या कुकड़हाओ मचा रखी है घर में।
1: मैं क्यों मचाने लगी कुकड़हाओ, अपनी बहन से कहो मुझसे जबान न लड़ाया करे। लो अब रोना भी चालू कर दिया, खाते पीते घर में काहे बिना बात के ऐसा गुण कर रही है, करम जली।
2: भाभी तुम्हारी बड़ी ननद हूँ, कम से कम गाली तो मत दो।
1: लो जी कुछ बोलना गुनाह हो गया नौकरों को। सुनो जी तुम ही निपटो अपनी बहन से, अब से मैं कुछ ना बोलूंगी।
3: अरे जी जी तुमसे लाख दफे कहा कि आदमी को अपना बखत देखकर बात करनी चाहिए, पर तुम हो कि समझती नहीं हो।
2: मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि कुंदन को ताप चढ़ा था इसलिए देर हो गई।
1: अरे मैं कहूँ ताप ही तो चढ़ा था ना कुंदन को, अरे मर तो ना गई थी।
2: भाभी भगवान से डरो, तुम्हारी भी भांजी है कुंदन और तुम्हारे अपने भी बच्चे हैं।
1: लो पहले अपना खसम खा गई और अब मुझ पर और मेरे बच्चों पर नजर है इस डायन की।
3: देखो जी जी जी जी ये रोज रोज अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी है?
2: तुम्हारे पांव पड़ती हूँ भैया, कहो तो भाभी के पढ़ लूं, मुझे काम से अलग ना करना, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम्हारा ही तो सारा है भैया।
1: क्या क्या बर्दाश्त करें, महारानी जी चोरी करती है वो भी बर्दाश्त करें।

0: भगवान, अब ये सुनना भी पता था भाग में दो बच्चे न होते तो डूब मरती, चोरी का दोष सुनने से तो मरना अच्छा।
1: मैं कहूँ सुनिए आपने इनकी नौटंकी। अरे मैंने खुद इसे अपनी आंखों से पल्लू में छुपा कर मकई के दाने और ककड़ी के टुकड़े ले जाते देखा है।
0: वो तो भाभी तुमने मुझे खाने को दिए थे, वही बच्चों के लिए ले जा रही थी।
1: वही बच्चों के लिए ले जा रही थी, मैं कहूँ रहने दो, खूब समझती हूँ तुम्हारे ये झूठे।
2: अरे अच्छा अच्छा, बहुत हुआ बहुत हुआ, मुझे और भी काम है इस पंचायत के अलावा।
1: एक बात क्या बोल दी तू, इतनी बातें हो गई, चल जा अपना काम निपटा जल्दी।
2: और हाँ जी जी, एक बात साफ साफ सुन लो
0: जी।
2: तुम्हें अपने यहाँ काम दिया है, ध्यान रहे आइंदा शिकायत नहीं आए।
0: अब चाहे जान चली जाए पर कुछ ना कहूंगी।
1: वही तुम्हारे हक में होगा, समझी।
3: गांव की यादों में गोकुल साहू की याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भला? सफेद टोपी वाले खद्दरधारी टाइप देशभक्त गोकुल साहू, उनका गांव में बड़ा वजन, शगुन बांझने, स्टाम्प लिखने, दवा बताने से लेकर नकली मामलों में फंसाने, नकली गवाह तैयार करने तक हर मर्ज का एक इलाज। गोकुल साहू, मुझे और कुंदन को हुक्म था माँ का कि जब वो मजदूरी करने जाए तब हम गोकुल साहू के यहाँ रहें और सेवा टहल करें। इसके एवज में माँ को केवल एक उम्मीद थी कि साहू जी माँ पर मुकदमा ना चलवाएंगे।
4: किशन तू बाहर के दलान की झाड़ू बुहारी निपटा जल्दी, मैं भीतर की जल्दी निपटाती हूँ।
5: जिज्जी थोड़ी मदद तुम भी कर दो।
4: ठीक है, तू इधर साफ कर, मैं उस कोने में शुरू करती हूँ।
6: अरे ओ छोरा छोरी, झाड़ू बुहारी निपटी या नहीं?
4: बस निपटी जाती है बहू माँ।
6: अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, उसके बाद फटाफट पानी भर लेना।
4: जी बहू माँ।
7: किशन, अरे ओ किशन वा।
5: जी बाऊ जी।
7: अरे एक लोटा पानी ला बेटे।
5: अभी लाया।
7: राधे कृष्णा कृष्णा राधे, अभी से धूप कैसी तेज हो गई है, तीखी हो गई है। अरे जा जल्दी से एक लोटा पानी लेकर आ मेरे लिए।
5: अभी ला।

0: घोड़ा गाड़ी में कुछ सामान है, उठाकर भीतर बहू माँ को दिया।
1: जी, बड़ी देर कर दी आने में।
0: अरे पहले थाने गए, वहां से कचहरी और उसके बाद बाजार से सौदा सुल्फा लिया।
1: कुछ काम बना कि नहीं?
0: बना तो, लेकिन थोड़ी मुश्किल से। पहले तो मानता ही न था, कहता था झूठा मामला बनवा रहे आप मुझ पर।
1: हाँ, छोटे लोगों के तेवर तो देखो।
0: देखा देखा क्यों नहीं। अरे हमने तो कहा बच्चू चुपचाप अंगूठा लगा दो कागजों पर, नहीं तो पछताओगे पीछे।
1: अच्छा,
0: लातों के भूत कहीं बातों से मानते हैं भला। अरे हमने तो फिर दरोगा से कहा कि अब आप ही समझाओ इसे।
1: फिर तो भूत भाग गए होंगे उसके। अच्छा सुनो, जगेश्वर आया था तुम्हारे पीछे, सूद की रकम दे गया है। कह रहा था आधी है, आधी अगले महीने के सूद के साथ देगा।
0: इसीलिए मेरे पीछे आया था, पहले पता कर लिया होगा कि मैं तहसील गया हूं, है ना।
2: बहू माँ, झाड़ू लग गई, पानी भर गया।
1: अच्छा जा, कमला और विमला के सिर में तेल थाप दे। और तेरा भाई कहाँ है?
2: औसारी में है, सूख गई बड़ी कचरिया समेट रहा है।
1: ठीक है, चल जा तो तू कमला विमला के पास। और सुन, उसके बाद मेरे पैरों में जरा तेल मल देना, बड़े दुख रहे हैं।
0: अरे कृष्णा, अरे ओ कृष्णा।
2: जी बाबू जी।
0: हाँ अरे देखो, अरे मेरी धोती और कुर्ता उठा लाओ उधर से, अरे नहा लूं तो चैन आए। उफ, ये गर्मी तो अभी से जानलेवा हो रही है।
1: सुनो जी, सुबह सुबह रमिया को क्यों गालियां दे रहे?

0: थे जब वो बच्चों को छोड़ने आई थी।
1: क्यों क्यों क्यों क्यों है? अरे अब मैं नौकरों को भी गाली तुमसे पूछ कर दूंगा भला? अरे
0: सो बात नहीं है, बस यूं ही पूछ लिया मैंने।
1: कहीं काम से जा रहे हैं तभी मरेगी। अरे अपनी काली कलूटी शक्ल लेकर असगुन करने के लिए? अच्छा
0: ठीक ही किया।
1: अच्छा मुझे नहाने दोगी या नहीं?
0: हेलो, तो मैं कौन सा रास्ता रोककर खड़ी हूं तुम्हारा? जाओ नहा लो जाके, और जल्दी करना जरा, खाना तैयार हुआ जाता है तब तक।
1: ए, ए, सुनो, अरे उम्दा भट्टे मिल गए थे, बहुत अच्छे किस्म के, मैं ले आया हूँ, भरता बनवा लो, मजा आ
0: ठीक है
1: जाएगा
0: ठीक
1: खाने
0: है
1: में।
0: ठीक है।
2: मुझे भी अम्मा।
3: हाँ बेटा, बस रोटी तैयार समझो। कुंदन बेटा, जरा प्याज धनिया मिर्च की चटनी पीस ले तब तक।
2: माँ, आज भी खाने में तरकारी नहीं है?
3: मामी से मजूरी मिलने की उम्मीद थी पर नहीं मिली। बेटा कल मजूरी मिलेगी तो जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है?
2: रोज ही ऐसा कहती हो, और रोज ही चटनी से रोटी खानी पड़ती है।
3: मेरा बस चले बेटा तो रोज तुम दोनों को मालपुए खिलाऊं।
4: आज बहू माँ ने दो दो बासी पूड़ी और छोटी सी गुड़ की डली भी दी थी साथ में, है ना किशन?
2: हाँ।
3: कोशिश में हूँ कि चार पैसे बचे तो तुम दोनों को खूब पढ़ाऊं।
2: मैं पढ़ूंगा माँ, खूब बड़ा आदमी बनूंगा।
4: मैं भी खूब पढ़ूंगी, हमारे भी दिन फिरेंगे, है ना अम्मा?
3: जुग जुग जियो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो।
2: अम्मा फिर हम भी हमारे घर में रोज तरकारी बनाएंगे।
4: दाल भात भी होगा साथ में।
3: अच्छा, अभी तो थाली उठा लाओ। अरे कब से हंगामा कर रहे थे, भूख लगी है भूख लगी है। तुम खाओ, मैं फटाफट गरम रोटियां डालती हूँ। हाँ
4: अम्मा, आज तुम भी हमारे साथ खाओ।
3: हट पगली, फिर रोटियां कौन सेकेगा? चलो पहले तुम लोग खा लो,
4: फिर मैं भी बचा कुचा खा लूंगी, है ना?
3: बचा कुचा क्यों खाऊंगी, मैं अपने लिए भी रोटियां सेकूंगी।
2: अगर आटा बचा तो, जो नहीं बचेगा?
3: नहीं रे पगले, बहुत आटा है।
2: हमें झूठ बोलने से मना करती हो और खुद बोलती हो।
3: अच्छा मेरे बापू, बहस बंद कर और खाना खा। तू भी आ कुंदन, आज तुम दोनों के सामने अपनी रोटियां भी थोपूंगी, बस
4: फिर ठीक है।
2: आज तो रोटी के साथ चटनी भी बहुत अच्छी लग रही है।
4: हाँ।
2: अम्मा, मामी बहुत बुरी है, तुमको नाहक गाली देती रहती है।
3: बेटा काम में गलती होने पर कोई भी टोकेगा।
2: टोकना एक बात है और गाली देना दूसरी।
4: किशन, गुस्सा मुझे भी आता है पर
3: बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते।
2: आप भी तो मामा मामी से बड़ी हैं।
3: बेटा गरीब आदमी कभी किसी से बड़ा नहीं होता।
2: मैं बनूंगा माँ बड़ा आदमी,
4: खूब पैसा कमाऊंगा। बोल बोल, वही जो हमेशा बोलता है।
3: अच्छा पंडित जी अभी सो जाओ, बहुत रात हो गई।
4: अम्मा लेटो, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ, दुखते होंगे ना?
3: लाडो मेरी तो सारी थकान तुम दोनों की बातों से ही उतर जाती है।
4: बहुमा के तो हमेशा ही दबाने पड़ते हैं, आज तुम्हारे दबा देती हूँ।
2: वो मोटी काम करे ना धाम, बस जब देखो कुंदन पैर दबा दे, बहुत पिरात है।
4: और वो गंजा साहू, वह भी आज तुम्हें गाली दे रहा था, है ना? टकला कहीं का।
3: फिर वही बात, मना किया ना बड़ों के लिए ऐसी बात बोलने से।
2: तुम ही कहती हो ना हमेशा कि हमारे भी दिन फिरेंगे।
3: हाँ बेटा,
2: एक बार हमारे दिन फिर जाए फिर देखना अम्मा, इन सब को, मामा मामी साहू और वो मोटी को, फिर कनी बना दूंगा।
3: अच्छा बस करो, अब सुबह मामी के यहाँ जल्दी पहुँचना है ना, और तुम दोनों की भी स्कूल है, चलो अब जल्दी करो।
5: कहते हैं मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, इकट्ठी आती है। मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, दे कम इन बटालियंस। सुबह हमारे दरवाजे पर कोटवार खड़ा था।

0: नायब तहसीलदार का फरमान लिए। माँ ने बहुत चिरौरी की, पर वो क्यों मानने लगा? माँ की बात सुनता तो उसकी नौकरी जाने का अंदेशा था।
1: कौन है?
2: कोतवार।
1: कोतवार जी आप?
2: अरे नायब साहब ने बुलाया है तुम्हें।
1: किस लिए?
2: उनसे कोई सवाल कर सकता है क्या है जो तू कर रही है?
1: भैया मैं तुम्हारे पैर पड़ूं, घर में एक दाना अनाज का नहीं है।
2: अरे
1: भौजाई ने रूट कर 3-4 दिन हुए काम से अलग कर दिया है, पहले की मजूरी भी नहीं दी।
2: अरे तो मैं क्या करूं है?
1: मुझ पे दया करो मल्लू भैया, सच में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं।
2: जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। अरे चल नायब साहब के पास चल।
1: मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मुझे छोड़कर किसी और को बेगार मिले जाओ भैया।
2: अरे जबान संभाल कर बोल रहा मियाँ, तू इतनी बड़ी कब से हो गई जो नायब साहब के बुलावे पर भी ना जाएगी हैं?
1: हम तो बहुत छोटी हैं भैया, पर आज तक बेगार पर नहीं गई।
2: अरे तू कौन सी बड़ी पटवारन है जो बेगार में जाते, शर्म लगती है तेरे को है?
1: भैया पटेल दद्दा के पैर पड़ लूंगी, हाथ जोड़ लूंगी, आज मेरी बेगार हटा दो भैया।
2: अरे मुझे क्या जूते खाना है तेरी बेगार छुड़वा कर।
1: पटेल दद्दा मान जाएंगे?
2: अरे ना मानेंगे, उन्होंने तो पहले ही कही थी कि रमिया कभी बेगार में नहीं जाती।
1: फिर भैया?
2: अरे फिर क्या, गोकल साहू ने 4 बंगरियों के नाम दिए थे, उनमें पहला नाम तेरा है। चल देरी मत कर, चल चल। अरे तेरी भौजाई, अरे रहने दे, अब क्या कहूँ तुझसे,
1: कुछ कहने की जरूरत नहीं
2: है। हाँ सारा गांव जानता है तेरी भौजाई और उस गोकल साहू को, समझी के नहीं है?
1: बहुमा आप ही इस मुसीबत से बचा सकती हो।
3: अम्मा अम्मा क्या हुआ और कैसी मुसीबत?
4: कुछ नहीं हुआ, जाओ तुम दोनों जाकर अपना काम करो। बता क्या हुआ?
1: बहुमा नायब जी ने बेगार के लिए बुलाया है, वो खड़ा मल्लू कोटवार मुझे ले जाने आया है।
4: पगली तुझे कौन बेगार में भेजेगा? अरे बड़े आदमी के कुत्ते को भी कोई मारे या दुत्कारे तो मुकदमा चल जाए।
1: कल से तो मैं बड़े आदमी की कुतिया भी नहीं रही बहुमा।
4: क्या बकती है, तुझसे कोई गलती हो गई क्या री?
1: गरीबी की गलती से बड़ी कोई गलती होती है क्या बहुमा?
4: सो तो ठीक है, पर अभी क्या हुआ?
1: परसों संजय को भैया किसी पेशी के मामले में तहसील गए, उन्हें खाना खिलाकर रवाना किया और मैं घर आई। आते वक्त भौजाई ने कहा मेरा पेट दुखता है, गोकुल साहू से कहना कोई दवा भिजवा दे।
4: तो दवा ले जाती?
1: घर जाकर मैं किशन के साथ रामलीला देखने चली गई, बड़ी जिद कर रहा था और मेरी अक्कल पे पत्थर पड़े थे, भौजी का पेट दुखने की बात भूल ही गई।
4: अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है मेरे।
1: मैं क्या जानूं कि भैया की गैर हाजिरी में भौजी के पेट को अगर साहू जी की दवा ना मिली तो वो मेरी नौकरी खाकर पेट ठीक करेंगी।
4: तो तेरी नौकरी ले ली तेरी भौजाई ने?
1: बहुमा पेट में अजीरन होने पर सिर तो दुखने ही लगता है, भाभी के रूठने पर साहू दादा क्यों नहीं रूठते? आपसे कुछ छुपा तो नहीं है ना बहुमा?
4: ठीक है और ज्यादा खुलासे की जरूरत नहीं है अब।
2: अरे रमिया जल्दी कर, नायब साहब गुस्सा होकर मुझ में बस मार देंगे, समझी के नहीं?
1: चलती हूँ भैया। तो बहुमा जाती हूँ मैं बेकार करने।
2: मैंने पहले ही कहा था ना कि साहू जी ने ही नाम जुड़वाया तेरा। अरे अब कुछ नहीं होगा, तू चल।
1: क्या करूँ दादा, बच्चों की शक्लें आंखों के आती हैं।
2: हाँ, तू कुछ मत कर, तू तो जल्दी चल चल, तू गाली खाएगी और मैं जूते खाऊंगा आज तेरे चक्कर में, चल जल्दी चल। हाँ, चल
1: किशन कुंदन। हाँ, मैं जा रही हूँ बेटा।
2: हाँ, चल।
3: शामा, शामा। चल।

0: रोते थे, मुझे भी रोना आ रहा है,
1: मुझे भी रोना आ रहा है।
0: कितना अच्छा होता अगर हमारे भी दादा होते।
1: दादा, दादा तो गए भगवान के पास

मैंने और कुंदन जीजी ने अम्मा को अच्छे दिन दिखाए। कुंदन जीजी आज ससुराल में है मजे से। मां ने भी आंखें मूंदने से पहले सुख देखा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का दूसरा भाग। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में जमीनी स्तर पर रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग के छात्रावासों, आश्रमों और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और चावल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान को सेवा संकल्प और जनभागीदारी से जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। यह अभियान इस महीने की 17 तारीख से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती व महानिदेशालय के निर्देशानुसार आकाशवाणी भोपाल में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान 6.0 तथा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज पौधरोपण किया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के युवावाणी कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका लाला। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम तीन महत्वपूर्ण और बेहद समकालीन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे विश्व हृदय दिवस की और समझेंगे कि हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे खाद्य हानि और अपव्यय के प्रति जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की और जानेंगे कि भोजन की बर्बादी केवल खाने की बर्बादी नहीं बल्कि पानी, ऊर्जा, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों की भी बर्बादी है। और दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है ग्रीन टेक्नोलॉजी और कार्बन कैप्चर।

आज हम समझेंगे कि स्वच्छ और कम कार्बन तकनीकें पर्यावरण संरक्षण में किस तरह मदद कर सकते हैं और कार्बन कैप्चर तकनीक क्या है। और कार्यक्रम में होंगे कुछ मधुर फिल्मी गीत और साथ ही होगी रोजगार सूचना। तो दोस्तों, क्यों ना आज के इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ की जाए।

दोस्तों, आज 29 सितंबर है और पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने और हृदय रोगों से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा हृदय हमारे पूरे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है, इसीलिए हृदय का स्वस्थ रहना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में शारीरिक गतिविधि की कमी, असंतुलित खानपान, तनाव और नींद की कमी जैसे कई कारक हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, हृदय को स्वस्थ रखने की शुरुआत बहुत छोटी छोटी आदतों से हो सकती है, जैसे नियमित शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, भोजन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल कीजिए और बहुत अधिक नमक और चीनी वाले भोजन का सेवन सीमित कीजिए। इसके साथ ही अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसे स्वास्थ्य संकेतकों की समय समय पर जाँच कराना भी उपयोगी है। यदि परिवार में हृदय रोग का इतिहास रहा है तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों, युवाओं के लिए भी हार्ट हेल्थ उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सोच लेना कि हृदय संबंधी समस्याएं केवल उम्रदराज लोगों को होती हैं सही नहीं है। स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव को संभालने की आदतें कम उम्र से ही विकसित करना बेहतर स्वास्थ्य की नींव तैयार करता है। दोस्तों, विश्व हृदय दिवस 2026 की थीम है दिल की धड़कन को न चुके, यानी डोंट मिस अ बीट। यह इस बात पर जोर देता है कि हृदय रोग अक्सर शुरुआती दौर में सूक्ष्म या अनदेखे संकेतों के साथ विकसित होता है। तो आज विश्व हृदय दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, अपने शरीर की ज़रूरतों को समझेंगे और स्वस्थ जीवन शैली को अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाएंगे, क्योंकि स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। और अब समय है एक और मधुर फिल्मी गीत का, फिल्म रांचना से।

दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भोजन की। हर दिन दुनिया भर में बड़ी मात्रा में भोजन खेत से लेकर हमारी थाली तक पहुँचने की प्रक्रिया में नष्ट होता है और हमारी थाली से बचकर कूड़े में चला जाता है। इसी समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट यानी खाद्य हानि और अपव्यय के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ दो शब्दों को समझना ज़रूरी है, फूड लॉस और फूड वेस्ट। फूड लॉस का संबंध उत्पादन, कटाई, भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण जैसी आपूर्ति श्रृंखला की प्रक्रियाओं में भोजन के कम हो जाने या खराब होने से है। वहीं फूड वेस्ट का संबंध मुख्य रूप से खुदरा स्तर, भोजन परोसने और उपभोग के स्तर पर भोजन के फेंके जाने से है। दोस्तों, भोजन की बर्बादी का असर केवल आर्थिक नहीं है। एक खाद्य पदार्थ को पैदा करने में जमीन, पानी, ऊर्जा, श्रम और कई अन्य संसाधनों का उपयोग होता है। जब वही भोजन बिना खाए फेंक दिया जाता है तो इन संसाधनों का भी अप्रत्यक्ष रूप से अपव्यय होता है। इसके अलावा फेंके गए जैविक कचरे के प्रबंधन की भी अपनी पर्यावरणीय चुनौती है। इसलिए फूड लॉस और वेस्ट को कम करना खाद्य सुरक्षा, संसाधन संरक्षण, पर्यावरण और टिकाऊ विकास इन सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों, हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। घर में भोजन की योजना बनाएं, उचित मात्रा में खरीदारी करें और बचे हुए भोजन का सुरक्षित तरीके से उपयोग करें। बाहर भोजन करते समय भी आवश्यकता के अनुसार ही ऑर्डर करना और भोजन को व्यर्थ न छोड़ना ही एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पहल है। और दोस्तों, भोजन का सम्मान केवल उसे बर्बाद न करने में नहीं बल्कि उन किसानों, श्रमिकों और सभी लोगों के श्रम का सम्मान करने में भी है जो भोजन को खेत से हमारी थाली तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। और दोस्तों, अब वक्त है एक और गीत का जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों, अब समय है आज की हमारी चर्चा का, जिसका विषय है ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी हरित प्रौद्योगिकी और कार्बन कैप्चर। ये दोनों शब्द आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की चर्चा में लगातार सुनाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर इनका अर्थ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी ऐसी तकनीकें जो प्राकृतिक संसाधनों के अधिक टिकाऊ उपयोग, प्रदूषण को कम करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को घटाने में मदद करती हैं। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड एनर्जी, ऊर्जा कुशल उपकरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, जल संरक्षण की तकनीकें और कम कार्बन औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे कई क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, ऊर्जा दक्ष उपकरण जिन्हें हम कहते हैं, कम बिजली की खपत करते हैं, जबकि सौर यानी सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी जैसी तकनीकें जीवाश्म ईंधनों यानी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को कम करने में योगदान दे सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं कार्बन कैप्चर पर। दोस्तों, कई औद्योगिक प्रक्रियाओं और बिजली उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जित होती है। कार्बन कैप्चर ऐसी तकनीकों का समूह है जिनका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन स्रोत से अलग या कैप्चर करना है, ताकि उसे वातावरण में जाने से पहले नियंत्रित किया जा सके। कार्बन कैप्चर के बाद कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ परिस्थितियों में परिवहन करके सुरक्षित जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। इसे कार्बन कैप्चर स्टोरेज यानी CCS कहा जाता है। कुछ प्रणालियों में कैप्चर्ड कार्बन को उपयोगी उत्पाद या प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की कोशिश भी की जाती है, जिसे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, कार्बन कैप्चर को जलवायु समाधान का अकेला विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। इसकी लागत, ऊर्जा आवश्यकता, बुनियादी ढांचे, सुरक्षित भंडारण और लंबे समय तक निगरानी जैसे कई व्यावहारिक प्रश्न हैं। इसलिए

है कि जहां उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करना कठिन हो, वहां तकनीकी समाधान किस तरह योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा का संदेश यही है, भविष्य की अर्थव्यवस्था केवल अधिक उत्पादन करने वाली नहीं, बल्कि अधिक टिकाऊ और संसाधन कुशल अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए। और आइए अब सुनते हैं गीत फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से।

दोस्तों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है रोजगार सूचना का। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2026 के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2536 अस्थायी रिक्तियों की घोषणा की है। इस भर्ती में एलडीसी और जेएसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। 12वीं पास अभ्यर्थी

इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज का हमारा युवावाणी कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और इन विषयों पर कुछ नई जानकारी भी ज़रूर मिली होगी। इसी के साथ मुझे आपकी रेडियो साथी प्रियंका लाला को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी युवावाणी के एक नए कार्यक्रम में। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो का बहुत ही प्यारा सा गीत, मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल, पलक मुछाल की आवाज़ में। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत हिमेश रेशमिया का।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह की आवाज़ है, गीत है इरशाद कामिल का और संगीत विशाल शेखर का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। विषय है पीएम किसान सम्मान निधि। विशेषज्ञ हैं श्री अलीम बज़मी, वरिष्ठ पत्रकार, और वार्ताकार हैं अभिषेक कटियार। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए इन प्रयासों का असर लोगों की जिंदगी में भी दिखाई दे रहा है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक मिसाल से रूबरू करा रहे हैं जहां सरकार की सोच और योजना ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है, और वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अलीम बज़मी जी। बज़मी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद। नमस्कार साहब।
1: तो आइए जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। बज़मी जी, सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि को अगर एक योजना के तौर पर हम माने तो इसके आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अभी तक क्या कुछ हुआ है इस योजना में, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है
1: जी।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की थी
1: जी। जी,
2: इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं
1: जी।
2: ये राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है
1: जी।
2: यानी किसान को साल में 3 बार कुछ रकम ऐसी मिलती है जिससे वे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है
1: जी। जी,
2: खेती में कई ऐसे खर्च होते हैं जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन किसान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं
1: जी।
2: मसलन बीज, खाद, कीटनाशक या खेती से जुड़े दूसरे जरूरी खर्च
1: जी।
2: पीएम किसान सम्मान निधि इन कृषि जरूरतों में मदद करती है
1: जी।
2: और किसानों की खेती जारी रखने की क्षमता को मजबूत करती है
1: जी।
2: इस सहायता से कृषि निवेश बढ़ाने और कर्ज पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलती है
1: जी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। एक किसान के लिए ये योजना काफ़ी मायने रखती है और एक किसान के जीवन में इस योजना की काफ़ी कुछ अहमियत है। उनके सपनों को लगातार साकार करती नजर आ रही है ये योजना। अगर हम मध्य प्रदेश पर खास तौर पर बात करें तो हमारे प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का दायरा कितना बड़ा है?
2: देखिए, हमारा मध्य प्रदेश जो है भारत का हृदय प्रदेश है
1: जी।
2: इस कारण से इस योजना का दायरा काफ़ी बड़ा है। मध्य प्रदेश में 20 जून 2026 को जारी 23वीं किस्त में
1: जी
2: प्रदेश के करीब 82 लाख किसानों के खाते में करीब 1634 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए
1: जी।
2: यानी एक ही किस्त में 82 लाख से ज्यादा किसान परिवारों तक आर्थिक मदद पहुंची
1: जी।
2: ये आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ खरीफ की बुआई के समय किसानों को खेती के लिए पूंजी की जरूरत होती है
1: जी। जी,
2: इसी वजह से केंद्र सरकार ने भी 23वीं किस्त को खरीफ सीजन में जारी किया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में केंद्र की पीएम किसान योजना के साथ राज्य की अपनी किसान कल्याण योजनाएं भी हैं
1: जी।
2: इसलिए यहाँ किसान को सिर्फ एक योजना के नजरिए से नहीं
1: जी
2: बल्कि सीधी आर्थिक सहायता, सिंचाई, फसल के दाम, बीमा और कृषि निवेश जैसी पूरी व्यवस्था के संदर्भ में देखना जरूरी है
1: जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक ओवरऑल अगर हम बात करें प्रदेश की जो किसान की योजनाएं हैं और देश की जो किसान सम्मान निधि योजना है, दोनों मिलकर किसानों की आर्थिक समृद्धि को लगातार बढ़ा रही हैं। अगला सवाल भी मेरा इसी दिशा में जाता है। सरकार लगातार कह रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। जमीन पर इसका क्या मतलब समझना चाहिए, हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताइए।
2: देखिए, बात सिर्फ 6,000 रुपए की नहीं है
1: जी।
2: 6,000 रुपए से किसान की पूरी आर्थिक स्थिति बदल जाती है बल्कि इसे किसान की आय और खेती के खर्च के बीच एक अतिरिक्त सहारे के तौर पर समझा जाना वाजिब होगा
1: जी।
2: मान लीजिए किसान के सामने बुआई के समय कुछ जरूरी खर्च है और उसी समय पीएम किसान की किस्त उसके खाते में आती है, वह रकम किसान को उस समय थोड़ी राहत दे सकती है। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव पैसा पहुंचाने के तरीके में आया है। पहले सरकारी सहायता में बिचौलियों और कागजी प्रक्रिया की समस्या हो सकती थी, लेकिन पीएम किसान में सीधी रकम उसके बैंक खाते में पहुंचती है। इसकी मिसाल यह है कि 23वीं किस्त तक देश भर में 4.46 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों को दी जा चुकी है। इसलिए इसे किसान की जिंदगी में एक ऐसे बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है जहां उसे कम से कम एक निश्चित आर्थिक सहायता सीधे और डिजिटल तरीके से मिल रही है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अभी तक करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि जारी की जा चुकी है और इससे उनके सम्मान में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि जरूरत के वक्त जो पैसा मिलता है कहीं ना कहीं उसको सिर्फ छोटी सी एक 6000 रुपए की राशि न मानकर उस जरूरत को पूरा करने के बाद उसके जो परिणाम आते हैं उससे होने वाली आय के संदर्भ में भी देखना चाहिए। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए सुनते हैं कि हमारे प्रदेश के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में क्या कहते हैं। इछावर के अर्जुन वर्मा किसान सम्मान निधि पर सरकार का धन्यवाद करते हुए इसे किसानों में एक नया भरोसा और सम्मान का भाव जगाने वाली योजना बता रहे हैं।
3: मैं अर्जुन वर्मा सीहोर जिले के इछावर का किसान हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि इस दूरदर्शी योजना ने हम छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को एक बड़ा आत्मसम्मान और आर्थिक सहारा दिया है। मैं भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। खेती में सबसे बड़ी चुनौती बुआई के समय सही समय पर नकदी कैश की होती है। योजना के तहत मिलने वाली राशि 6000 की वार्षिक राशि 2000 की 3 किस्तें सीधे बुआई के सीजन में काम आती है, जिससे हमें खाद बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आजकल डीजल सिंचाई और जुताई के खर्च बढ़ गए हैं, यह राशि हमारी खेती की दैनिक लागत को कम करने में एक बड़ा सहारा बनती है, जिससे खेती करना पहले से अधिक सुगम हुआ है। यह केवल 6000 की सहायता नहीं है बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि देश की सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करती है। इससे किसानों में एक नया भरोसा और सम्मान का भाव जागा है।
1: वहीं खंडवा के नरेंद्र काजले कहते हैं कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से खेती किसानी के छोटे मोटे खर्चों को समय पर पूरा करने में सहूलियत होती है।
4: मेरा नाम नरेंद्र काजले है, मैं ग्राम कोठा रैयत से हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से हमें काफी मदद मिल रही है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है, जिससे खेती किसानी से जुड़े छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने में सहूलियत होती है। खाद बीज और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में यह राशि उपयोगी साबित होती है। सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही इस योजना के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। किसान भाइयों के लिए यह आर्थिक सहायता काफी उपयोगी है।
1: खालवा के वरुण यादव कहते हैं कि किसान को जरूरत के समय मिलने वाली छोटी से छोटी मदद भी बहुत मायने रखती है।
5: मेरा नाम वरुण यादव है, खालवा का किसान हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हम जैसे किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। योजना के तरह मिलने वाली राशि से सीधे हमारे खाते में पहुँचती है, जिससे खेत के समय खाद बीज और दूसरी जरूरत किसानों को सामग्री खरीदने में आर्थिक सहायता मिलती है। किसान के लिए समय समय पर मिलने वाली छोटी से छोटी मदद बहुत मायने रखती है। सरकार इस योजना से किसानों को खेती के लिए खर्च में सहारा मिलता है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त।
1: वहीं हरदा के किसान रोहित भी इस किसान सम्मान निधि योजना के लिए सरकार का आभार जता रहे हैं।
6: मेरा नाम रोहित जाट है, मैं मध्य प्रदेश का निवासी जिला हरदा ग्राम खेड़ा का निवासी हूँ। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2000 रुपये मिल रहे हैं साल भर में, 6000 रुपये, उससे किसानों को सहयोग हो रहा है, फसल लेने में भी सहयोग हो रहा है, खाद लेने में, दवाई लेने में, तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
1: तो ये थे हमारे प्रदेश के कुछ किसानों की राय पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में कि किस प्रकार से ये योजना किसानों के छोटे छोटे खर्चों को पूरा करने में उनको समय पर मदद कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि किसानों को लगातार मदद तो करती है, लेकिन इसके साथ ही साथ यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसानों के लिए कई अन्य योजनाओं के माध्यम से भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, इसे किस प्रकार से देखते हैं सर?
2: मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको थोड़ा व्यापक तरीके से देखना समझना होगा। पीएम किसान के तहत केंद्र सरकार से पात्र किसान परिवार को सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। जी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसी योजनाओं के जरिए भी किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन किसान की आर्थिक मजबूती केवल सीधे खाते में आने वाली रकम से तय नहीं होती। किसान के लिए यह भी मायने रखता है कि उसे सिंचाई कितनी उपलब्ध है, फसल का सही दाम मिल रहा है या नहीं, मौसम की मार से नुकसान होने पर बीमा मिल रहा है या नहीं, और फसल को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था कैसी है। मध्य प्रदेश में 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने सिंचाई, प्राकृतिक खेती, भावांतर भुगतान, कृषि आधारित उद्योग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों पर जोर देने की बात कही है। यानी सोच ये है कि किसान को सीधे आर्थिक सहायता ही ना मिले, बल्कि पैदावार, सिंचाई, फसल के दाम और खेती से जुड़ी दूसरी आमदनी के अवसर भी बेहतर हों।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। 6,000 रुपए की मदद मात्र से सिर्फ किसान को 6,000 रुपए नहीं बल्कि कई सारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, क्योंकि जब वो 6,000 रुपए अपनी खेती में लगाता है, चाहे वो बीज के रूप में लगाए, खाद के रूप में लगाए, तो कहीं ना कहीं उसको एक बड़े फायदे के रूप में निकलकर सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं सर अपनी चर्चा के अंत में इस योजना के भविष्य की। यदि हम अगले कुछ वर्षों की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना किसानों की जिंदगी में किस प्रकार का बदलाव ला सकती है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
2: देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि किसान को खेती के दौरान
1: जी
2: कुछ सिंचित, कुछ निश्चित और समय पर मिलने वाला आर्थिक सहारा मिलता रहे। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। अगर इसी अवधि के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए का वित्त प्रावधान किया गया है
1: जी।
2: सरकार का कहना है कि इससे किसानों को समय पर आय सहायता मिलेगी और कृषि में निवेश तथा आजीविका को मजबूत करने में मदद मिलेगी
1: जी।
2: लेकिन अगर हम किसान की जिंदगी में वास्तविक और लंबे समय का बदलाव देखना चाहते हैं तो सिर्फ आय सहायता काफी नहीं होगी। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए सिंचाई, बेहतर तकनीक, अच्छे बीज, फसल का उचित मूल्य, भंडारण, प्रोसेसिंग और बाजार तक सीधी पहुंच भी जरूरी है। इस लिहाज से पीएम किसान को किसान की पूरी आर्थिक समस्या का समाधान नहीं बल्कि एक मजबूत आधार के तौर पर देखा जाना उचित होगा। सीधी आर्थिक मदद किसान को तत्काल सहारा देती है, जबकि दूसरी कृषि योजनाएं उसकी आमदनी को लंबे समय से में मजबूत करने में भूमिका निभा सकती हैं।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा बजमी जी आपने। बहुत ही सरल और सटीक शब्दों में समझाया कि किस तरह पीएम किसान सम्मान निधि और राज्य सरकार की पूरक योजनाएं मिलकर हमारे किसान भाई बहनों को एक संबल और एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। बीज खाद की समय पर उपलब्धता से लेकर खेती की लागत को आसान बनाने में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। बजमी जी, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे श्रोताओं के साथ इतनी बारीकी और गहराई से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ आकाशवाणी भोपाल के इस विशेष कार्यक्रम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की ऐसी ही प्रेरक गाथाओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। विषय था पीएम

किसान सम्मान निधि। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की थी। विशेषज्ञ थे श्री अलीम बज़मी, वरिष्ठ पत्रकार, और आपसे बातचीत कर रहे थे अभिषेक कटियार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

rotata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानीज नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स.
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें.
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया गया. प्रदेश में आज पंचायत उपचुनाव के तहत 103 पदों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 79 सरपंच, 5 जिला पंचायत सदस्य और 4 पंच पद शामिल हैं. आगरमालवा की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष के लिए भी मतदान कराया गया. प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग के छात्रावासों, आश्रमों और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और चावल मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती व महानिदेशालय के निर्देशानुसार आकाशवाणी भोपाल में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान 6.0 तथा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज पौधरोपण किया गया. और भोपाल की मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में महिला ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है. उन्होंने एशियन गेम्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है. आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
0: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल दिवांगन जी ने लिखा है। अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
0: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे, ये सब बात बताते। हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी।
0: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
2: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के 2 एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के 2 ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
0: तो आज सुनिए श्रोताओं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
2: श्रोताओं, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
0: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
2: ओ, क्या हुआ था?
0: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
2: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
0: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
2: जी,
0: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
2: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
0: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
2: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
0: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
2: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया। वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओं, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
2: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया
2: जी।
0: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनकी माता को यह पुरस्कार प्रदान किया।
2: जी
0: आइए श्रोताओं, अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
2: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
0: श्रोताओं, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
2: बिल्कुल सही कहा जीत जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
0: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: जी,
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
3: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था,
4: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
3: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
4: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
3: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
4: है? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
3: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
5: महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
3: बादशाह ने कहा,
4: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
3: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
4: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
3: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
4: बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
3: बीरबल ने उत्तर दिया,
4: हुजूर अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
3: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
2: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है, और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: राम सिंह?
3: हाँ।
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर बना क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा।
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ,
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: हाँ, चलो जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: चलो बता देते।
3: हाँ। जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
4: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
3: जी सर।
4: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
3: जी सर।
4: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
3: जी सर।
4: जय हिंद।
3: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो, तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर! फायर! कालिका माता की
3: जय!
2: भारत माता की
3: जय!
4: आगे बढ़ो।
5: साहब, साहब वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
6: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
5: जी साहब।
0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
2: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा लाके देता हूं असले का। फायर! हुकम सिंह
3: जी सर,
2: एलएम जी संभाल, छोड़ फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
1: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
7: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं, कितना खून बह रहा है, आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
6: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ, मशीन गन लाओ।
7: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
2: अच्छा,
5: सर ये रही मशीन गन।
6: हुकुम सिंह, एक काम करो
5: जी,
6: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
5: जी सर।
6: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को,
5: जल्दी करो।
6: जी सर।
5: बांध दिया सर,
6: ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ। इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ ले। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
5: जी सर।
6: ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
1: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
7: संभल कर, संभल कर।
6: सर टिका लीजिए
7: सर, ऐसे
8: कालिका माता की।
0: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
8: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
0: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी।

0: यारे, मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
1: साहब,
0: तुम लोग आगे निकलो।
1: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
0: साहब नहीं, बात को समझो, अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
1: नहीं साहब।
0: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
1: नहीं साहब, नहीं।
0: आदेश, इट्स एन ऑर्डर
1: सर।
0: जाओ, अलविदा। अलविदा दोस्तों,
2: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांगला घाटी से गुजर रहा था, तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
3: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
4: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
3: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
2: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांगला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है चित्र पर संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं संगीत फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है और संगीत सजाया है आनंद मिलित ने।

मोहम्मद अजीज़ और शोभा जोशी की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं हम फिल्म का गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना आनंद बख्शी की।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मजरूह का लिखा हुआ गीत। संगीत से सजाया है आनंद मिलंद ने और फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक। खूबसूरत आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं एसबी बाल सुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म साजन का बहुत ही प्यारा सा गीत। समीर के बोल हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत के महासागर दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत पहली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहरी ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों की ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बीच मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स वर्ग में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में 7:25 पर सुनिएगा बुंदेली समाचार किसान वाणी। ये कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे 7:30 पर। 8:00 होगा विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 8:35 पर, रात्रि 10:20 पर। 9:30 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम कहकशां, जिसमें सुनेगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम आबशारे गजल। एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे शिराज हुसैन का सारंगी वादन, राग होगा मेघ, समय रहेगा रात्रि 10:30। और अब बारी है हमारे कल के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा आप सुन सकते हैं 8:30 पर। 9:05 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिएगा परन राज भाटिया की गाये चंद गजलें। प्रदेश की सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 9:30 पर। 10:00 हर रोज की तरह आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला संसार 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनाएंगे पंडित गिरिराज का सितार वादन, राग होगा बसंत मुखारी और समय है 10:30। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11:00 सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12:00 और 2:30 पर। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति। 1:00 होगा महिला कार्यक्रम 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 5:33 पर, 6:30 पर, 8:35 पर और रात्रि 10:20 पर। 6:00 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें सुनिएगा भेंटवार्ता, विषय रहेगा आधुनिक विधि से जैविक और अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन। जानकारी देंगे डॉक्टर शनि कुमार और ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। 8:00 सुनेगा विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। 9:30 पर दिल्ली से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स आप सुनेगा 10:00 दिल्ली केंद्र से।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित गिरिराज का सितार वादन, राग होगा रागेश्री। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 20% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी। एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। चित्रकूट की गुप्त गोदावरी गुफा में पत्थर गिरने के बाद श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद। विशेषज्ञों की जांच के बाद खुलेगी गुफा। और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक कमजोर रहेगा बारिश का दौर, 2 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया गया। इनमें पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वनरक्षक और आबकारी आरक्षक के पद शामिल हैं।
4: अग्निवीर हमारे युवाओं के लिए मध्य प्रदेश के 5 विभागों में जहां पर वर्दीधारी सैनिकों की भर्ती करी जाती है, वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल के प्रहरी तथा आबकारी के आरक्षक, इन 5 विभागों में 20% का आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। यह एक मध्य प्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत है।
3: वहीं अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए अगले 5 वर्षों में 5,329 करोड़ रुपए और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की गणवेश राशि के लिए 348 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग के छात्रावासों, आश्रमों और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और चावल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में विद्यार्थियों को 12 किलो गेहूं 5 रुपए और 3 किलो चावल 6.5 रुपए प्रति किलो की दर से मिलता है। नई व्यवस्था से करीब 52 लाख रुपए सालाना अतिरिक्त का भार राज्य सरकार वहन करेगी। भोपाल की मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने जापान में चल रहे एशियन गेम्स में महिला ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने एशियन गेम्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीरू ढांडा को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नीरू की यह उपलब्धि देश और प्रदेश की बेटियों तथा युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। तो वहीं दूसरी तरफ आज भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम ने 3:29.69 सेकेंड के समय के साथ रेस पूरी कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि बहरीन की टीम 3:30.21 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही। ये एशियन गेम्स 2026 में भारत का एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक है। प्रदेश में आज पंचायत उपचुनाव के तहत 103 पदों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 79 सरपंच, 5 जिला पंचायत सदस्य और 4 पंचपद शामिल हैं। आगरमालवा की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष के लिए भी मतदान कराया गया। वहीं झाबुआ और रायसेन जिलों में भी मतदान हुआ। अधिकांश स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न रहा। पंचायत उपचुनाव के लिए मतगणना 3 अक्टूबर को होगी, जबकि जिला पंचायत और पंच पदों के परिणाम 5 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
3: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से रूबरू करा रहे हैं जहां सरकार की सोच और काम ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर को सामने रखा है। तो आइए जानते हैं कि आगरमालवा जिले में मुद्रा योजना कैसे लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है।
5: छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय करने वाले कारोबारियों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर किए गए व्यापार से उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधरी ही है, वहीं परिवार का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हितग्राही आगरमालवा निवासी राजेंद्र सोलंकी ने आकाशवाणी को बताया कि
6: मैं पहले किसी और की दुकान पे टेलरिंग का काम किया करता था, उससे मुझे अपना घर चलाने में बहुत परेशानी आ रही थी। तो फिर मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के बारे में पता चला, मैंने बैंक ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन अप्लाई किया, वहां से मुझे लोन मिला। फिर मैंने अपने खुद का टेलरिंग का बिजनेस डाला और उस बिजनेस में मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूं, मेरा काम अच्छा चल रहा है, घर चलाने में भी आसानी हो रही है।
5: जिले में ऐसे अनेक हितग्राही हैं जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर अपने जीवन में बदलाव की बहार देख रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
3: वहीं सेवा संकल्प अभियान के तहत खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं और भारतीय ज्ञान परंपरा का संदेश दिया। वहीं इस अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर तक निकाली जा रही जन जल यात्रा आज राजगढ़ के सारंगपुर पहुंची, जहां पर कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने यात्रा का स्वागत किया। इस अभियान के तहत मुरैना नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया और धार जिले के धामनोत शहर के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन उत्सव का आयोजन भी किया गया। प्रदेश में 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान अभियान चलाया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत आयोजित इस अभियान में स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृद्धजनों और अनाथ बच्चों की सेवा, नेत्र परीक्षण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, वृक्षारोपण और सैनिकों के सम्मान तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता जैसी 9 गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा से होगी, वहीं 3 अक्टूबर को स्वास्थ्य शिविर, 4 अक्टूबर को वृद्धाश्रम और अनाथालयों में सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, 9 अक्टूबर को वृक्षारोपण और सैनिक सम्मान तथा 10 अक्टूबर को विद्यार्थियों की सहायता की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती एवं महानिदेशालय के निर्देशानुसार आकाशवाणी भोपाल में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान 6.0 तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज पौधरोपण किया गया। आकाशवाणी भोपाल परिसर के उद्यान में 50 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साह के साथ पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया और पौधे रोपित कर उन्हें पानी से सींचा। इस अवसर पर आकाशवाणी भोपाल के क्लस्टर प्रमुख लोकेश कुमार, निदेशक समाचार पूजा वर्धन, उप निदेशक अभियांत्रिकी SK श्रीवास्तव, स्वच्छता ही सेवा अभियान के नोडल अधिकारी सहायक निदेशक देवेंद्र कुमार सक्सेना, कार्यक्रम प्रमुख शुभम तिवारी, विज्ञापन प्रसारण सेवा प्रमुख आनंद सिंह उद्दे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अब्राहम थॉमस, सहायक अनुसंधान अधिकारी दीपक कुमार सचदेव सहित केंद्र के अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। प्रदेश में MBBS इंटर्न्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 21,500 रुपये किए जाने पर इंटर्न्स ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार माना है। इंटर्न्स के प्रतिनिधिमंडल ने आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुष्पगुच्छ भेंट किया। वॉइस ऑफ इंटर्न्स के प्रतिनिधियों ने कहा कि स्टाइपेंड में वृद्धि उनके परिश्रम और मरीजों की सेवा में योगदान के प्रति सम्मान है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि MBBS इंटर्न्स अस्पतालों में मरीजों की सेवा, आपातकालीन चिकित्सा और अन्य जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाते हैं। सतना जिले के चित्रकूट स्थित प्रसिद्ध गुप्त गोदावरी गुफा मंदिर में पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटना के बाद श्रद्धालुओं का प्रवेश 4 दिन से बंद है। लगातार बारिश के दौरान पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गुफा में गिर गया था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गुफा बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के अनुसार विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों की टीम के निरीक्षण के बाद ही गुफा खोलने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई भी सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई हिस्सों में तेज धूप निकल सकती है। बुधवार गुरुवार से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने के संकेत हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना के शासकीय महाविद्यालय कैलारस में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत इटारसी रोड स्थित कुनबी मंगल भवन में 30 सितंबर को प्रातः 10 बजे से विद्युत शिविर का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर वनमंडल के अंतर्गत आने वाले 5 वन ग्रामों कुद्वारा, सौठी, दक्षिण बरेली पठार, गढ़गोरखपुर और सेमरा को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया जारी है। छतरपुर में 37वीं क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दलखेड़ा के छात्र आदित्य ने 6 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता और गुना के रेलवे स्टेशन पर भोजनालय की निरीक्षण में अनियमितताएं पाए जाने पर खाद्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
7: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं भंवर सिंह अहिरवार की गाई ये चौकड़िया।

करण सिंह जाटव से अभी आप ये लमटेरा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर। हमारे केंद्र के कार्यक्रम आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर पर भी सुनते हैं। शाम के 7:30 बजने को हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। अब आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: शुक्रवार से दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी होवे के संकेत हैं। मानसून की वापसी के रेखा प्रदेश के पश्चिमी हिस्से तक पहुंच गई है। इसके कारण उज्जैन और ग्वालियर संभाग में सबसे पहला मानसून विदा हो सकता है। 2 अक्टूबर तक अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने को अनुमान है। बुंदेली समाचार समाप्त भय।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
1: किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन बेवारे सभी जनों को रीता बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम। किसान भैया हरो और बिन्ना हरो। बीज केवल खेती की शुरुआत नहीं होते बल्कि जे हमारी कृषि विरासत को भी महत्वपूर्ण हिस्सा होते। अपने क्षेत्र के उपयोग बीज को संरक्षण सही तरीका से भंडारण करवो और जरूरतमंद किसानन के लाने उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करवो सामुदायिक प्रयास से ही संभव हो सकत है। और जे प्रयास करवे को कहो जाते सामुदायिक बीज बैंक। अगर हम ये संक्षेप में कहें सो सामुदायिक बीज बैंक एक ऐसा स्थानीय भंडारण केंद्र है जी में किसान पारंपरिक और स्वदेशी बीज को सुरक्षित रखते हैं और आपस में आदान प्रदान करते हैं। जलवायु के अनुकूल पुरानी और लगभग विलुप्त हो रही देसी किस्मन के बीजन को बचा के इनको संरक्षण करो जाते हैं। इन बैंकों से किसान खेती के लाने बीज लेते और फसल पकवे के बाद जैसे कि नियम है उनके अनुसार डेढ़ गुना बीज वापस बैंक को कर देते हैं। ऐसो करवे से किसानन की महंगे हाइब्रिड और रासायनिक बीज पर निर्भरता कम होते और विपरीत मौसम प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी खेती सुरक्षित और टिकाऊ बनत है। सो किसान भैया हरो सहेज है हर एक अनोखो बीज कैसे के जेई है प्रकृति की अनमोल चीज। किसान भैया हरो खेती किसानी तो सब करते हैं लेकिन एक ऐसी खेती जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखवे के संगे किसान को अतिरिक्त आय भी देते बाहोत है औषधीय पौधन की खेती। भारत जैसे देश में पुराने समय से तुलसी अश्वगंधा शतावरी कालमेघ सफेद मूसली एलोवेरा जैसे अनेक पौधन को उपयोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियन के लाने करो जाते। औषधीय पौधों की खेती से किसानन को पारंपरिक फसलों की तुलना में दोगुने से अधिक कमाई और बंजर भूमि को सही उपयोग जैसे कई बड़े लाभ मिलते हैं। वर्तमान समय में औषधीय सुगंधित पौधन की बाजार में भारी मांग होने के कारण किसानन को ऊंचे दाम भी मिलते हैं और किसान को कम लागत में भारी मुनाफा होते है। जिन जमीन पे हमारी पारंपरिक फसलें जैसे गेहूं धान नहीं उग सकते हैं उते अश्वगंधा सतावर खस या ब्रह्मी जैसे औषधीय पौधे आसानी से उग जाते हैं। ये उगाए में कम पानी की जरूरत होते है। ई फसल को बेचे के लाने किसानन को बाजार भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और किसान को कहीं भटकने नहीं पड़ते। और अगर हम सरकारी सहायता की बात करें सो किसान भैया हरो राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत औषधीय खेती को बढ़ाए के लाने सरकार द्वारा किसानन को 30% से 75% तक अनुदान और वित्तीय सहायता दी जाते हैं। किसान भैया हरो औषधीय खेती अपनाओ सेहत और समृद्धि दोनों पाओ।
3: किसान भैया हरो पिछले दिना हमने कृषि विज्ञान केंद्र देवास में जाके कृषि विशेषज्ञ से बातचीत करी और जे कृषि विशेषज्ञ भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर से आए हते और इनसे बातचीत करी है पूनम सरावगी बहन ने।
4: कृषि के क्षेत्र में जल उत्पादकता बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार की तरफ से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार पंडा जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्ते
4: सर, इसके बारे में कुछ बताइए कि जल प्रबंधन हम कैसे बढ़ा सकते हैं कृषि उत्पादकता क्षेत्र में।
5: देखिए हमारा जो देश है ये वार्षिक औसतम जो वृष्टिपात है ये लगभग 1200 मिलीमीटर है, लेकिन जब वृष्टिपात का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप हमारा पश्चिम में जो राजस्थान है उसका बाड़मेर जैसलमेर जिले को देखेंगे तो लगभग 250 मिलीमीटर रेनफॉल से शुरू होता है। आप पूर्वोत्तर राज्य की तरफ जब जाएंगे मौसन नाम जो मेघालय में है उसमें 11000 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो बारिश है उसको हम ऐसे प्रबंधन करें कि जैसे कि हमारा जल उत्पादकता भी बढ़े और फसलों का उपज भी बढ़े और किसान का लाभ वृद्धि हो और हमारा जो भूजल स्थल जो ह्रास हो रहा है वो भी न हो, हमारा जो भूतल जल है वो बरकरार रहे। ये सब चुनौती भरा क्षेत्र है जिसको हम वैज्ञानिकों कृषि अधिकारी और किसान सब मिल करके सिविल सोसाइटी ये सब मिल करके इसका हल निकालना है। आपको जो हम बताना चाहते हैं कि आप हमारा जो कृषि क्षेत्र में जो जल उत्पादकता जब देखा जाए लगभग 40% है, लेकिन इसको बढ़ा के हमको 60% तक लेना है, यानी जल उपयोगिता का जो स्टैटिस्टिक्स है उसको, वाटर यूज एफिशिएंसी हमको बढ़ा करके हमको लगभग 60% तक लेना है। इसके लिए कई प्रयास जरूरत है। प्रथम तो किसान भाई आप सब जानना जरूरी है कि हमारा जितना जल है समग्र धरती में
4: जी।
5: उससे 97 लगभग परसेंटेज जो है ये नमकीन पानी और खारी पानी
4: जी।
5: सिर्फ 3% जो मीठे पानी है जिसको हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं, जो कि हमारा खाने और घरेलू उपयोग और कृषि कार्य में लग, ये 3% से फिर क्या है कि 88% हमारा अनुपलब्धता है। कैसे न, उसी 3% जो फ्रेश वाटर और मीठी जल है उससे 77% लगभग वो हमारा जो बर्फ मेरु खंड, जो उत्तर मेरु है, दक्षिण मेरु है, हिमालय बर्फ खंड ग्लेशियर है, उसमें सीमित है, जो उस उपलब्धता हम लोगों के लिए नहीं है, वो आम जनता के लिए अनुपलब्ध है। ऐसे और 11% जल जो कि भूपृष्ठ के नीचे 800 मीटर के नीचे है, जो वो भी हमारा पास उपलब्ध नहीं है। सिर्फ हमारा पास 12% मीठा जल उपलब्धता है हमारा पास। वो क्या है कि भूपृष्ठ से नीचे 800 मीटर तक लगभग 11% जल है और 1% सरफेस जल है जो नदी में है, तालाब में है, झील में है, यानी 97% चला गया नमकीन में, कोई काम का नहीं है। वो जो 3% मीठे जल अच्छा जल बचा उसी से भी 88% चला गया, वो भी काम का नहीं है, 12% रहा। किसान भाई आप सब जानना जरूरी है कि ये जो मीठा जल कितने महत्वपूर्ण है। ये मीठा जल कुछ नहीं है, ये बारिश का पानी है
4: जी।
5: यही बारिश का पानी हमारा झील में, हमारा नदी में, तालाब में, खेत में रहता है। अब ये हमारा विभिन्न जरूरत को पूरा करता है, फसल उत्पन्न होता है और ये फिर भूजल जमीन के नीचे जाके भूजल बनता है, उसको है फिर हम लिफ्ट पॉइंट के माध्यम से उत्तोलन करके एक्सट्रैक्शन करके उसको रबी ऋतु में हम फसल में लेते हैं। और जो केनाल चलता है ये भी यही वर्षा जल संरक्षण है। तो ये कुल मिला करके वर्षा जल जल का मुख्य स्रोत है
4: जी।
5: उसको हम लोगों को क्या करना है, ज्यादातर ज्यादा जैसे चाषी भाई जो किसान भाई ये लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन को समतुल करें और जमीन का मेड बनाएं और जहां नाली गुजर रहा है उसमें चेक डैम डालें, ज्यादा से ज्यादा जो तालाब पोखरी और खोदें, वर्षा जल को उधर संरक्षित करें। उससे क्या होगा, भूजल भरण भी होगा और हमारा जल उपयोग के लिए जल भी मिलेगा, ये एक साइड है। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी भारतीय जल प्रबंधन संस्थान और विभिन्न गवेषणा प्रतिष्ठान जो सब वर्षा जल संरक्षण तकनीक विकसित किए हैं कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए, उसको अपनाएं, ये वर्षा जल संरक्षण

0: करके हमको क्या करना है, फसल का पैदावार बढ़ाना है,
1: जी
0: ये एक साइड। दूसरा हमको क्या करना है, जो केनाल क्षेत्र है जहाँ हम लोग सब बृहत मध्यम क्षुद्र डैम बनाए हैं, जल भंडार बनाए हैं, उसी जल को हम क्या करें ज्यादा मात्रा में फसल में न दे के फसल के आवश्यकता के अनुसार उसका विभिन्न स्तर में फसल का आवश्यकता है अनुसार जल उपयोग करें। उपयोग करके हम क्या करें जल उपयोगिता को बढ़ाएं, उसका सूचकांक को उसको बढ़ाएं, जैसे कि कम जल में हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें और कम जल को हम ज्यादा एरिया में सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके लिए हमको केनाल क्षेत्र में और जो हार्वेस्टेड संग्रहित जल में हमको सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन, जो बूंदा जल सेचन है यानी फुहारा जल सेचन है, इसको काम में लेना है, जिससे कि हम कम जल को हम ज्यादा से ज्यादा फसल में प्रयोग कर सकते हैं और हमारा पैदावार बढ़ा सकते हैं।
1: जी
0: तीसरा चीज है, जब हम भूजल जल उपयोग करते हैं, वो ग्राउंड वाटर आप जानते हैं सबसे कीमती है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर बूंद बूंद जाके भरता है, इसलिए हमको वो जल को संरक्षित करके रखना है। और उसको जब हम समरसिबल पंप से हम जब निकालते हैं बाहर से, उसको हम जितना आवश्यक है फसल का उतना तक हम काम में लें, क्योंकि ये भूतल जल जब खत्म हो जाएगा दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रबी फसल नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े पेड़ जो देख रहे हैं वो सब मर जाएंगे, फिर जो हमारा अच्छा एरिया है वो धीरे धीरे बंजर होके वो मरुस्थल बन जाता है। तो इसीलिए भूतल जल को बचा के रखना है, और हमारा जो किसान भाई भूजल को निकाल रहे हैं उसको भी फसल के जल आवश्यकता अनुसार कम कम सिंचाई कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा फुहारा सिंचाई, बूंदा सिंचन, ये सब प्रणाली को अपनाइए, जैसे कि हमको कम भूजल जल निकालना पड़े भूगर्भ से।
1: जी
0: और तीसरा चीज है, जो शहर के आसपास क्षेत्र है किसी गांव में जहाँ सब नाली निकल रहा है, बर्ज्य जल काफी मात्रा में हमारा देश में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आजकल गांव छोड़ के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, हम लोग को ये देखना है जो पर्याप्त मात्रा में बर्ज्य जल जो उत्पादन हो रहा है उसको कैसे विशोधन करके, उसको शोधन करके हम खेती में लगाएं, क्योंकि वो खेती में लगाने में एक फायदा क्या होगा, हमको जल पर्याप्त मिल जाएगा,
1: जी
0: दूसरा ये जो हमारा नदी को हमारा परिसंस्था परिवेश को जो प्रदूषित कर रहा है, वो पर्यावरण को जो प्रदूषित कर रहा है वो प्रदूषित नहीं करेगा, वो उपयोग में आ जाएगा, हमारा जो जल समस्या भी कुछ की तरफ सॉल्व होगा, और ये जो बड़े जल जो वेस्ट वाटर है उसका भी सही इस्तेमाल हो पाएगा। लेकिन ध्यान यही रखना है, बड़े जल को कभी सलाद वाली फसल में उपयोग नहीं करना है, उसको साग में जितना ग्रीन्स है उसमें उपयोग नहीं करना है, जैसे नॉन एडिबल पर्पस है, जैसे फूल है और पेड़ पौधा है, कोई ऐसा चीज है जिसमें पेपर बन रहा है, दूसरा कुछ हैंडक्राफ्ट बन रहा है उस टाइप का पौधा लगाना है, फाइबर क्रॉप्स है जैसे कपास है, दूसरा टाइप का है कि जैसे वो जो बड़े जड़ में आप जानते हैं काफी मात्रा में हैवी मेटल्स रहते हैं, फिर दूसरा उसमें बहुत सारा माइक्रोब्स भी रहते हैं, ये सब चीज जब फूड चेन को आता है वो ह्यूमन शरीर के अंदर में विभिन्न रोग पैदा करने का पोटेंशियल क्षमता रखता है, तो इसको भी हम कम कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप जब कहेंगे कि ये जो जल है ये बहुत कीमती है, ये जल को हमको ऐसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि 1950 में जब हमको शुरुआत दौर पर आजादी मिली थी उसके आसपास में हमारा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता लगभग 5577 मीटर क्यू था, जो घन मीटर था, लेकिन अभी घट करके 1450 मीटर क्यू हो गया है, यानी हम जल संपद में स्वच्छल देश से अभी हम जल स्ट्रेस्ड नेशन हो गए हैं, यानी जल संकट के आसपास आ गए हैं, और जब ये स्तर 1000 से नीचे आ जाएगा, यानी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1000 मीटर क्यू से कम हो जाएगा, हम जल संकट अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर ये देश को जल संकट अवस्था से बचा के रखें। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कह रहे हैं आप संग्रह की बात, ये दो तरीका से हो सकता है, एक हमारा खेती बाड़ी में हमारा जो कृषि में कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें उसका उपयोग करें, दूसरा जो डोमेस्टिक एरिया है जो शहर है और जो घर है उससे जो छत से हमको जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है उसको कैसे हम संग्रहित करें। देखिए छत से तो सिंपल तरीका है, हमारे पास अभी बहुत सारा पीवीसी पाइप है, हम ले आए छत से लगा के, उसको नीचे हमको कोई वाटर टैंक बनाना है, आरसीसी का बना सकते हैं, ईट का बना सकते हैं, और पीवीसी टैंक भी लगा सकते हैं। उसी पानी को हम पंप के द्वारा, हम क्या करते हैं कि जैसे गाड़ी सफाई है, हमारा ड्रेस का क्लीन साफ करना, और हमारा जितना किचन गार्डन का पौधा है उसमें सब सिंचाई करना, वो सब काम के लिए बहुत अच्छा है। बर्तन धोना, ये सब काम में
1: दिया जा सकता
0: उपयोग
1: है।
0: हो सकता है। इवन उसको हम फिल्टर करके, क्योंकि साफ छाप जब हम साफ रखेंगे, वो अच्छी पानी है, वो फिल्टर से उसको हम उपयोग में भी ले सकते हैं, घरों उपयोग में, जैसे हम उसमें नहा सकते हैं, ये सब काम करा सकते हैं, उसमें कोई वो खराब नहीं है। दूसरा चीज है कि ये जो पाइप है उससे जल को हम डायरेक्ट भूजल भरण के लिए भी भेज सकते हैं। हम क्या करें, छोटा सा टैंक बनाएं, नीचे हम ऐसे मिट्टी रखें पोरोस टाइप का, जब ऊपर से पानी आएगा ये मिट्टी के नीचे जाएगा और हमारा भूजल तक ये धीरे धीरे धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहेगा, वो भी एक उपयोग है। तीसरा उपयोग है कि ये पानी को हम संग्रहित करी, हम किचन गार्डन में छोड़ दें, किचन गार्डन में डिफरेंट फसल लगाएं कि जो कि वो इसी पानी से सिंचाई हो जाएगा बरसात के मौसम में, दूसरा सीजन में तो मिलता नहीं है, हम दूसरे सोर्स से उसको सिंचाई करें हमारा किचन गार्डन फसल को। इस तरीका से हम रेन वाटर का संग्रहित कर सकते हैं, उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, के लिए और जीवन यापन करना बहुत मुश्किल और कष्टकर हो जाएगा।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी।
0: थैंक यू।
2: इसी क्रम में फब्बारा विधि से फसल उत्पादकता में वृद्धि, इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी दी भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर के ही प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ध्रुव चरण साहू ने। वर्तमान समय में सिंचाई की बहुत सारी पद्धतियां हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी फव्वारा पद्धति थोड़ी सी उनके लिए नई है। जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए फव्वारा पद्धति आज के समय में बड़ी ही महत्वपूर्ण पद्धति है, और इसी के संबंध में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं, बातचीत करते हैं डॉक्टर ध्रुव चरण साहू के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फव्वारा पद्धति क्या होती है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है?
3: एक्चुअली आज के दिन में अगर हमने कोई किसान भाई से अगर पूछे आपका खेती करने में क्या समस्या है, तो उनका पहला उत्तर आएगा पानी का अभाव। तो पानी का अभाव जब बोलते हैं तो ये चिंता का विषय है, क्या सच में पानी का अभाव है कि पानी का प्रबंधन का अभाव है। क्योंकि देखा जाए तो पूरा भारतवर्ष में जितना बारिश होता है, पर्टिकुलरली अगर हमने एमपी का बात करें, मध्य प्रदेश का बात करेंगे और देवास का बात करेंगे, तो देवास में लगभग 1000 से 1100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, और ये बारिश होता है मानसून की पीरियड में, जून जुलाई से लेकर सितंबर तक हम मान सकते हैं, उसका लगभग 90% बारिश हो जाता है, और बाकी जो रबी फसल के लिए बचता है केवल 10% पानी, तो 100-150 मिलीमीटर का बारिश होता है। तो इसीलिए हमेशा किसान भाइयों लोग बोलते हैं कि पानी का अभाव है, इसीलिए हमने खेती नहीं कर पाते। लेकिन ये प्रश्न आता है कि जब इतना बारिश हो जाता है, हमको जो रबी के टाइम में जो फसल उगाना है तो उसके लिए कितना पानी का ज़रूरत है। उदाहरण स्वरूप हम अगर देखेंगे, अगर गेहूं लगाना है, गेहूं बोना है, तो उसमें 500 से लेकर 600 मिलीमीटर तक बारिश में पानी में पूरा खेती हो जाता है। ऐसा अगर चिकपी का बात करें तो उसमें भी 350-400 मिलीमीटर पानी में खेती हो जाता है। लेकिन हमारे पास जब 1100 मिलीमीटर का बारिश होता है, तब इतना पानी का जो 500 मिलीमीटर हुआ कि 300 से 400 मिलीमीटर का हुआ, तो गेहूं, चिकपी और सोयाबीन टाइप का जो फसल है, उसके लिए पानी का अभाव क्यों आता है? तो अभाव इसीलिए आता है कि वो पानी का जो प्रबंधन, जो मैनेजमेंट है, उसमें हमारा कुछ कमियाँ हैं। कमियाँ क्या है, जो बारिश के दिन में जो थोड़ा सा टाइम के लिए मानसून के पीरियड में इतना सारा बारिश हो जाता है, वो पानी को हम उचित ढंग से संरक्षण नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादातर का पानी तो वेस्ट हो जाता है, नदी नाला में बह जाता है। तो वो पानी को हमने जितना अधिक संरक्षण करेंगे तो इतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमको रबी के टाइम में खेती करने में मिलेगा। और दूसरा बात है, अगर पानी को संरक्षण भी कर लेते हैं, रबी सीजन में जब हमने खेती करने जाते हैं, हमने बहुत सारा फसलों में क्या सरफेस मेथड में सिंचाई करते हैं, तो ऊपर से पानी चैनल बना के चैनल में पानी दे के खेती करते हैं, बट उसमें जो एफिशिएंसी जो बात करते हैं, उसका जो क्षमता है, तो पूरा मात्रा में नहीं हो पाता है। सरफेस मेथड में क्या होता है, ओनली 30-40% पानी हमारा फसल के लिए काम में आता है, और बाकी लगभग 60% तक, 60-70% पानी वेस्ट चला जाता है। तो इसीलिए तब जब पानी रबी में तो कम तो मिलता है और जितना मिलता है अगर उसमें से हम 40% केवल फसल के लिए व्यवहार कर पाते हैं और बाकी वेस्ट चला जाता है, ये तो चिंता का विषय है। तो इसीलिए अगर हमको ज्यादा से ज्यादा जमीन पे खेती करना है तब हमको पूरा का पूरा पानी जितना मिलता है उसका कैसे फसल के लिए व्यवहार कर पाए, तो इसीलिए हमने जो सरफेस मेथड में जो सिंचाई करते हैं उसको छोड़ के अभी जो स्प्रिंकलर जो फुपारा मेथड बोल रहे हैं वो स्प्रिंकलर मेथड उसी में हमको इरिगेशन करना चाहिए, जिसमें हमने जो सरफेस मेथड का कंपैरिजन तुलना में उसका डबल से ज़्यादा एरिया में भी खेती कर सकते हैं। यहाँ अगर हमने 30-40% एफिशिएंसी मानते हैं तो हमने स्प्रिंकलर मेथड में अगर खेती करेंगे तो वहाँ 85-90% तक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सरफेस इरिगेशन को हमने छोड़ के स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे तो जितना जमीन हमने सरफेस इरिगेशन में कर पाते हैं उसका 2 गुना से ज़्यादा एरिया हमने खेती कर सकते हैं।
2: ये कितनी कारगर साबित होती है, किसानों को ये समझ में आता है कि ये कैसे करना है?
3: हाँ, किसान को अभी तो समझ में आ गया लेकिन उसका जो अडॉप्शन जो बोलते हैं हमने तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ है जो किसान तक नहीं पहुंच पाता है और कुछ चीज़ है उसका जो बोलते हैं कि हमने जो इनिशियल जो खर्चा लगता है उसमें थोड़ा बहुत तो किसान सारे खर्चा उठाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए ये जो टेक्निक है स्प्रिंकलर इरीगेशन वो पहुँचने में टाइम लग जाता है। नहीं तो इस इरिगेशन मेथड जो स्प्रिंकलर का है उसमें तो कोई कमी नहीं है, बट कमी है कि जो किसान भाइयों का जो थोड़ा पैसा इनिशियली जो लगता है तो इतना खर्च करने का जब सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। और इसीलिए भी अभी सरकार की तरफ से बहुत सारे योजना है जिसमें किसान भाइयों को बहुत सब्सिडी मिलता है, अगर वो सब्सिडी को पूरा मात्रा से व्यवहार करें तो करके फिर वो स्प्रिंकलर मेथड को अपना सकते हैं।
2: किसानों को इसकी जानकारी आप लोग कैसे दें?
3: जानकारी हम लोग जैसे अभी जैसे ट्रेनिंग चल रहा है, हमने विभिन्न जगह पे जाके किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं उसका कैसे उसका यूज करें, उसका मेंटेनेंस रख रखाव कैसे करें और ये सब चीज़ कहाँ मिलता है, कितना खर्चे मिलता है, सरकार का क्या क्या सुविधा है, सब्सिडी किस में मिलता है, कितना तक मिलता है, ये सब जानकारी हम किसानों को सीधा देते हैं। और जहाँ तक संभव फिर हमने जो विभागीय अधिकारी लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, उनके माध्यम से वो बात जाके भी किसान तक पहुंचेगा, वो भी उसका लाभ ले पाए।
2: इसके अलावा एक और चीज़ हमारे किसान भाइयों को जानने की जो जरूरी है वो ये है कि ये मेथड इसकी जानकारी अब किन माध्यमों से हमारे किसानों तक पहुंचाते हैं?
3: हम लोग का जो है हम तो डायरेक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से पहुँचाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से पहुँचाते हैं। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया है जैसे यूट्यूब हुआ और कुछ भी है, उसमें क्या करते हैं हम लोग कोई वीडियो होता है उसको भी अपलोड करते हैं, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, एक्स हुआ, तो टेलीग्राम, इसमें हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं और डायरेक्ट फिजिकल मोड में ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकल मोड में बताते हैं, किसान भाइयों को बताते हैं, ऑफिसर्स लोगों को बताते हैं। तो आजकल तो बात पहुँचाना थोड़ा आसान हो गया इतना सोशल मीडिया में।
2: आप हमारे किसानों को और क्या संदेश देना चाहते हैं ड्रिप इरिगेशन के फायदों को लेकर?
3: फायदा तो अभी अगर आपने ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का देखेंगे फायदा अनेक है, अगर गिनेंगे तो एक दो में कुछ कुछ फायदा तो अभी आप बता सकता हूँ, जिसमें जैसे मान लीजिए आपका पहले तो जैसे बताया था आपने अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन यूज किए हैं तो उसमें आपने बाकी मेथड में जितना जमीन सिंचाई कर पाते हैं इसमें 2 गुना से ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं उतने पानी में, और उसके साथ साथ आपका जो पानी का जो एप्लीकेशन रेट और यूनिफॉर्मिटी जो है तो इतना बढ़िया होता है कि उसमें आपका सारे क्रॉप का जो जर्मिनेशन है वो बढ़िया होता है, उपज बार 20-30% से ज़्यादा हो जाता है। तो जो हम वाटर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं पानी का व्यवहार करके हम कितना फसल उगा सकते हैं तो उसमें भी ज़्यादा होता है नॉर्मल मेथड्स। तो उसके साथ कोई जमीन मान लो असमतल है तो उसमें सरफेस मेथड में करने में हमको बहुत सारे परेशानियाँ होता है, तो एक जगह पे ज़्यादा पानी हो जाता है तो एक जगह पे पानी पहुँचता नहीं है, तो वो सब जगह पे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन बड़ा आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ जैसे दिन में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई लेबर नहीं मिला, कभी और कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ये सब सिस्टम के लिए हमको इतना लेबर इतना कुछ नहीं चाहिए जो आसानी से हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे फायदा है।
2: बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैडम।
4: किसान भैया आपने सुनी जे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम, आप सुनते हैं लोकगीत, ये गाँव है बलराम रैकवार ने।

0: किसान भैया हरो, अब हम आप और उनको मंडी भाव से भी अवगत करा देते हैं। आज के मंडी भाव में गेहूं न्यूनतम 2081 प्रति क्विंटल से लेके अधिकतम 3006 रुपया प्रति क्विंटल के भाव के हिसाब से और मॉडल भाव 2680 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है। ऐसे ही सोयाबीन को भाव 4800 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम 5460 प्रति क्विंटल है। सरसों में न्यूनतम 7200 रुपया प्रति क्विंटल से लेके 7700 प्रति क्विंटल तक भाव है। ऐसे ही अरहर में 7095 से लेके अधिकतम 7600 रुपया प्रति क्विंटल भाव है। और अंत में मूंग की बात करत हैं, सो मूंग के भाव हैं 7700 रुपया प्रति क्विंटल से लेके 8500 रुपया प्रति क्विंटल है। सो किसान भैया हरो, जे हती आज के मंडी भाव, जे कार्यक्रम आप और उनको कैसो लगत है, सो हमें के बारे में जरूर आप सूचित करियो। और अब स्वीकार करें रीता बहन की राम राम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
2: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे हैं 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा की। आज के हमारे खास अतिथि हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, जो कि 16वें फाइनेंस कमीशन के सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं और साथ ही साथ SBI के चीफ ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर सौम्या कांति घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
3: चर्चा शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को किस तरह नई गति देने में योगदान दिया है।
4: एक समय भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती थी। बैंकों की फाइलों में ऐसे ऋण बढ़ रहे थे जिनकी वापसी मुश्किल हो रही थी। इन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। इसका असर सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं था। जब बैंक का पैसा फंसा रहता है तो नए ऋण देने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक और कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट ने मिलकर उस समय ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को जन्म दिया था। इसी चुनौती से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था एसेट क्वालिटी रिव्यू, यानी बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की विस्तृत जांच। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि बैंकों की किताबों में छिपे वित्तीय दबाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और खराब ऋणों की सही पहचान की जा सके। खराब ऋणों की पहचान के बाद अगली चुनौती थी इनका समाधान कैसे किया जाए। इसी क्रम में वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC लागू किया गया। इसका उद्देश्य कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए एक समयबद्ध और व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध कराना था। IBC के तहत ऋणदाता और देनदार दोनों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की महत्वपूर्ण भूमिका है। NCLT के समक्ष कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जबकि इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए NCLT का प्रावधान है। वहीं IBC के क्रियान्वयन और उससे जुड़े पेशेवर तंत्र की निगरानी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI की स्थापना की गई। IBBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक IBC के तहत कुल 1194 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस व्यवस्था के कारण कई मामलों में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही देनदारों ने अपने बकाए का निपटारा किया, लेकिन केवल खराब ऋणों की पहचान और समाधान ही पर्याप्त नहीं था। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होना भी जरूरी था ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकें और नए ऋण उपलब्ध करा सकें। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में कदम उठाए। पूंजी बढ़ने से बैंकों को अपने वित्तीय आधार को मजबूत करने और ऋण देने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिली। RBI के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण ने भी बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत करने में योगदान दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना, उनकी परिचालन क्षमता बढ़ाना और बेहतर तरीके से जोखिम का प्रबंधन करना था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2020 के बीच कई बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ और वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बैंकिंग सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा बैंकों के कामकाज में बेहतर प्रशासन। प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और तकनीक का इस्तेमाल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज यानी इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जैसे सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से शासन, जिम्मेदार ऋण वितरण, जोखिम प्रबंधन और तकनीक आधारित बैंकिंग पर जोर दिया गया। इन सभी कदमों का व्यापक उद्देश्य एक ही था, बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना, वित्तीय जोखिम को कम करना और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रभाव को बेहतर करना। इन सुधारों के परिणाम बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों में भी दिखाई दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2016 में 14.5% था, जो मार्च 2024 तक घटकर 2.8% रह गया। सर्वेक्षण के अनुसार बैंकिंग नियमन को मजबूत करने, ऋण वसूली कानूनों में बदलाव, IBC और अन्य उपायों ने बैंक तथा कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया 2018-19 से जारी रही और सितंबर 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। यही बदलाव उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण ने ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज के रूप में रेखांकित किया है, यानी बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों की बैलेंस शीट में पहले की तुलना में सुधार। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है तो वे कारोबार, उद्योग और आम लोगों की ऋण जरूरतों को अधिक मजबूती से पूरा कर सकते हैं। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: डॉक्टर घोष, इससे पहले कि हम एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड या फिर बैंक रिकैपिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स के बारे में चर्चा करें, हम थोड़ी सी नजर हमारे अर्थव्यवस्था के हाल पर डालना चाहेंगे। 90 से लेकर अब तक हमारी अर्थव्यवस्था किस माहौल से, किस दौर से गुजर रही थी?
5: इंडियन इकोनॉमी ने, अगर आपने इसका जर्नी देखते हैं कि 1990 से अगर हम शुरू करते हैं, 1991 में जब पहले हम रिफॉर्म शुरू किया था, उसी टाइम में रिफॉर्म वाज बिकॉज ऑफ नेसेसिटी एंड कंपल्शन। नाउ रिफॉर्म इज बेसिकली एक पार्ट है, हमको रिफॉर्म करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। उसी टाइम भी हमने रिफॉर्म किया था, काफी मार्केट में रिफॉर्म किया था, एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म किया था, रूपी को हमने डिवैल्यू किया था, लाइसेंसिंग राज को खत्म करने का कोशिश किया था, लेकिन काफी सारे उसके बाद 1996 के बाद 1990 से 2004 का जो पहले जो सेशन था NDA, उसमें तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें आपको पता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने थे, टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुआ थे, पावर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फिर उसी टाइम में आपको क्रेडिट ब्यूरो का भी आपका स्थापना हुआ था, और उसी टाइम इतने सारे रिफॉर्म्स हुआ था। उसी टाइम में आपको FRBM कमिटी का भी रिफॉर्म हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है उसमें हमने पहले बार देखा था कि मार्केट में उसको एक जो बोलते हैं कि रिपो रेट, जो आज हम जानते हैं, जहाँ से वो सब लोग उसको देख के बैंक्स बोरो करते हैं, तो ये सारे रिफॉर्म्स उसी टाइम में हुआ था। पावर सेक्टर का पहले जो रिफॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेक्टर एक काफी सेंसिटिव इशू है, और अभी से लास्ट 30 साल से पावर सेक्टर को हम रिफॉर्म करने चाहते हैं, तो उसी टाइम खास पावर सेक्टर के भी रिफॉर्म हमने लेके आए थे, तो बहुत सारे रिफॉर्म उसी टाइम चालू हुआ था। फिर 2004 से अगर हम देखें, उसके बाद हमारा उसी जो 4-8 में ग्रोथ हमारा अच्छा था, उसी टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था ग्रोथ का जो पुश था, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी उसी टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उसके लिए क्या हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी का मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी को भी मिल गया था, इसके लिए उसी टाइम हम अच्छा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2007-8 में एक फिनेंशियल क्राइसिस आ गया। जैसे ही फिनेंशियल क्राइसिस आ गया, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था 2008-09 में जो क्राइसिस के बाद, उसी टाइम क्या हुआ था, उसी टाइम हम बहुत सारे एक्चुअली हमने बहुत फिजिकली एक्स्ट्रा वैकेंट हो गया था। आपको अगर याद है 2009 में हमने पे कमीशन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था जी। हमने उसके साथ हमने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, और उसके साथ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो बोलते हैं वो भी काफी बढ़ गया था। उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके बाद आपको उसी टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 10% से ऊपर रहते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक टैग आ गया कि हमने फ्रेजाइल 5 का हो गया। बैंकिंग सेक्टर का उसी टाइम एसेट क्वालिटी खराब होना शुरू किया, और ये क्या हुआ था कि उसी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बैंक्स ने लेन किया था, लेकिन उसका इशू क्या था कि क्योंकि ग्लोबली जो कमोडिटी साइकिल था उसी टाइम बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसका प्राइसेस का दाम कम हो गया। इसके लिए जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें सारे उनका लोन्स काफी बिगड़ गया। फिर उसके बाद क्या किया, 2015 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हमको सारे बैंक्स को क्लीन अप करके एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आना है। तो उन्होंने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, फिर सारे बैंक्स को एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, जितना उसका लोन्स था और लोन्स को रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये लोन्स बैड लोन्स है, ये हम वापस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बैंक्स का जो था पोजीशन बढ़ गया था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया था और सारे जो नंबर्स था वो बिगड़ गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन भी गवर्नमेंट में किया था और उसके बाद उनका साथ उन्होंने ईज ऑफ बैंकिंग को रिफॉर्म्स किया था। तो इसके चलते क्या हुआ, 3-4-5 साल के बाद बैंकिंग सेक्टर का हालत, पैंडेमिक के बाद आपको पता है कि पैंडेमिक में पूरा इकोनॉमी बंद हो गया, लेकिन हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग सिस्टम उसमें एक्चुअली वो अच्छा किया उसी टाइम में। तो मैं आपको कुछ अगर नंबर बताऊं कि ये जो AQR हुआ, फिर बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 10 साल में जितना उन्होंने रिफॉर्म्स लेके गवर्नमेंट आया है, उसको हम ईज रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसमें बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन किया था, बैंक को कंसोलिडेशन किया है, बैंक्स नॉर्म्स को चेंज किया है और बैंक्स को पूरा फ्रीडम दिया है कि आप इसको काम कीजिए। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, कुछ डेटा 2017-18 में बैंकिंग प्रॉफिट था नेगेटिव, मैंने 32,400 करोड़ सारे बैंक्स का प्रॉफिट था 2017-18। आज का दिन 2025-26 में बैंक का प्रॉफिट है 4 लाख करोड़। तो उसका मतलब ये प्रॉफिट आपको 5 गुना बढ़ गया, 5 से 6 गुना बढ़ गया। ग्रॉस एनपीए रेशियो रिकॉग्निशन हम AQR करने के लिए जो 11% था 2017-18 में, आज का दिनों नंबर है 1.7%, तो सबसे अच्छा नंबर है 13 साल का। नेट एनपीओ रेशियो उसका मतलब कितना जो लोन हमारा खड़ा था उसका हमने प्रोविजन किया, आज उसका रेशियो है 0.4%। उसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का जो सारे लोन्स है वो सारे लोन्स एडिक्वेटली कवर्ड है। स्लिपेज रेशियो जो हम बोलते हैं कितना लोन, वो 7.5% था उसी टाइम में, आज वो 1% का आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है 2017-18 में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 174% गिरा था, आज का दिन वो 2025-26 में और 26-27 पे और 10% से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सारे नंबर्स आज काफी अच्छा है। और हमको अनुमान है कि ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हुआ है, काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, और एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स इसमें जो हुआ है अपार्ट फ्रॉम द AQR, सेक्टर वाइज अगर आप मुझे पूछे SME जो सेक्टर है आपका, जो पता है जो बैंक सेक्टर जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है 18-19% हो रहा है, बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपको इतना क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगा, आगे जाके ये चल सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है कि इसमें ये SME क्रेडिट ग्रोथ 23-24% लास्ट 2 साल से चल रहा है, एंड दे आर ऑल सॉलिड ग्रोथ। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट में काफी सारे इंसेंटिव्स दिया इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और बैंकिंग सिस्टम में जुड़ा है, वैल्यू चेन में ऊपर गया है, और आज का दिन उसका हमने उसका बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे गया है। पहले भी रिफॉर्म्स हुआ था 1998 में, अगर आप देखें उसी जो हमने आपके पहले बोला उसी टाइम नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन आए थे, फिर उसके बाद बेसेल कमेटी रिकमेंडेशन भी उसी टाइम चालू हुआ था, फिर 2014 के बाद हमने काफी सारे रिफॉर्म्स किया। एक तो उसमें है जो रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड जो हमने किया है। तो मुझे चलते ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज नाउ पॉइज्ड फॉर अ वेरी गुड रन, बिकॉज इसका जो बेसिस है वो काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स।
3: जी बिल्कुल, और अब इन्हीं सब विषयों के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू से। हमारा मानना यह है कि हमारी जो सरकार है उनकी योजना हमेशा से रही है कि पहले समस्या को ढूंढा जाए, फिर उसका समाधान ढूंढा जाए और फिर बैंकिंग सेक्टर में मजबूती लाई जाए। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो पहले समस्या को ढूंढने पर निर्भर था और उसके जरिए बैंकों की जो स्ट्रेस लोन्स की स्थिति थी वो ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आए। तो आपके नजरिए से एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाद में सुधार लाने में इसकी क्या भूमिका रही?
5: देखिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू तो इनेविटेबल था। प्रॉब्लम ये था कि हम उसको पहले 2009 के बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में गया था, हम हो सकते थे उसी टाइम जो लोन खराब है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हम उसको 3-4 साल ऐसे जाने दिया कि उसको हम नहीं करे, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन आगे जाके जो होना था वही हुआ, जैसे ही ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ था, ये सारे जो लोन्स था बिगड़ गया। और इसमें आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बैंक्स का लोन था 20-30% सारे लोन मोस्टली उसी सेक्टर्स पे उस पर बिगड़ गया था। रोड्स था, पावर था, ट्रांसपोर्ट था, इस पे काफी सारे लोन आपको बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बिगड़ गया उसके बाद आरबीआई ने एक रिफॉर्म्स लाया, AQR रिव्यू, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल आर, रिफॉर्म्स रिकैपिटलाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। तो रिफॉर्म्स किया, रिकैपिटलाइजेशन, गवर्नमेंट में 3 trillion रिकैपिटलाइज किया, फिर रिजोल्यूशन किया और रिफॉर्म्स किया। तो ये तीनों आरोप करके बैंकिंग सेक्टर में और जो ग्रोथ हुआ, सबसे बड़ा चीज की पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आज जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो नंबर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा है, ये पहले था।

0: तो ये जो आप बीच बीच पे आप काफी टाइम आपने ये बात सुनता है कि इतने सारे लोन्स को हमने बैंक्स का राइट ऑफ कर दिया, ये बेसिकली एक ही हुआ था, ये लोन जो पहले था ये लोन को आपको क्लीन अप करना था, क्लीन अप पहले हुआ नहीं, बाद में क्लीन अप हुआ, जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का नेगेटिव था, आज जो 4 लाख करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी है। और मैं आपको बाकी भी जो नंबर्स दिया कि लिक्विडिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सारे नंबर्स डिकेड हाई में है। तो मेरे यही कहना है कि एक ही वर इनेविटेबल, एक नेसेसरी इविल था, हम उसको करना था, हमने कर लिया। 2-3 साल के लिए बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद सारे बैंक्स इन इंडिया आर ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वार्ड फुटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फुटिंग। एंड मुझे लगता है कि जो अब इकोनॉमी आज ग्रो हो रहा है 18-19% में, जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, इसका रीजन हम उस रिफॉर्म्स के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सारे सेक्टर में रिफॉर्म्स किया, हमने एसएमई में भी काफी रिफॉर्म्स किया, हम बाकी जो सेक्टर्स लोन से, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने रिफॉर्म्स किया है, जो लोन्स का जो रूल्स है उसको भी हमने अच्छा किया, बैंक्स का अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव हो गया। तो सारे चीज अगर हम मिला, सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी सब डिजिटाइज हो गया। अगर आपको आज का दिन आपको अगर कुछ लोन चाहिए तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर है। तो सारे चीज मिला के आई थिंक ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आज बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली एक ग्रोथ का बैकबोन हो गया, एंड इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल कि हाउ कैन अ बैंकिंग सेक्टर टेक फॉरवर्ड एन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द फाइनेंशियल इकोनॉमी क्रेडिट नीड्स।
1: आपने एसएमईज का भी जिक्र किया था अपने जवाब में, तो मैं चाहूंगी कि आप एसएमई सेक्टर में जो रिफॉर्म आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और साथ ही साथ 2016 में आए आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के बारे में भी बताएं, और आईबीसी के आने के बाद कंपनियों के बैड लोन से निपटने के तरीके में किस तरह बदलाव आया।
0: देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो मैं आईबीसी लेके आता हूँ। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी को 2016 में आए थे, और वो बेसिकली वो एक डिमांड था बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि अगर हमको कोई लोन को रिजोल्व करना है उसको हमको कोर्ट, अगर नहीं होता है उसको हम एक कलेक्टिव मेकानिज्म में डालेंगे, उसमें उसका रिजोल्यूशन होगा। पहले क्या होता था कि अगर हम किसी को रिजोल्यूशन के लिए बैंकिंग सेक्टर किसी प्रोमोटर से किसी को बुलाते थे, वो करते नहीं था। तो ये कोड आने के बाद ये उनके लिए मस्ट हो गया, अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको मार्केट में चला जाएंगे, दूसरा किसी के हाथ में चला जाएंगे। ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि आप अगर ये देख डिबेट देखे, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव डिबेट है कि इतना पैसा आपने लोन उसको मकूब कर दिया, लेकिन
1: जी
0: उनके साथ ये बात भी बोलना है कि लोन राइट ऑफ जो होता है बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप के लिए, उसके बाद उनके हाथों से उस कंपनी का मैनेजमेंट चला जाते हैं, बिकॉज ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड में एक बीडिंग होता है, जो सबसे अच्छा बीट करेंगे उसको कंपनी मिलेगा। इसके बाद हमने देखा कि काफी स्टील सेक्टर में जो सबसे खराब सिचुएशन से गुजरा था, सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन स्टील सेक्टर में हुआ था। कुछ कंपनीज का नाम आपको पता है, तो भूषण स्टील फॉर एग्जाम्पल, उसको टेक ओवर हुआ और उसी टाइम में करके वो कंपनी आगे चलते रहा। तो ये तो पहला बात है। दूसरा बात है कि अगर आप एसएमई सेक्टर को बात करें, एसएमई सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। पहले रिफॉर्म जो आए थे कि वो जो ईसीएलजीए स्कीम, बेसिकली लोन गारंटी, गवर्नमेंट में बोला था कि जो लोन बैंक्स एक्सटेंड करेंगे पैंडेमिक टाइम्स पे उसके लिए कोई उसको रिस्क वेट नहीं लगेंगे, तो उसके लिए वो लोन काफी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट में फिर ईसीएलजीएस लेके, आपको अगर पता है कि कुछ दिन पहले ये वेस्ट एशियन क्राइसिस में ईसीएलजीएस में 2,50,000 करोड़ का लोन बैंकिंग सिस्टम ने दिया है। और उसके साथ एसएमई सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। एक तो फॉर एग्जाम्पल जो एसएमई सेक्टर में अभी स्ट्रीमलाइंड हो गया, लोन अगर मिलना है तो आपको पास अगर पेपर्स है प्रॉपर, ये लोन आप 59 मिनट्स में मिल सकते हैं। उसके बाद जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थे एसएमई सेक्टर, उसको भी सिंप्लीफाई हुआ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक पोर्टल खुला हुआ है, उसका आपको पता है कि उसका नाम है उद्यम पोर्टल। उसमें जितने सारे एमएसएमई सेक्टर का प्लेयर्स है जो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, वहां पर आपका अगर नाम डालेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से आप जोड़ सकते हैं। तो सारे चीज अगर देखे, ये सारे चीज देख के आज का दिन मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ एसएमई सेक्टर का 24% चल रहा है। एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि जो उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है वो 7 करोड़ का ऊपर है, और हमको 7 करोड़ में अगर पहुंचना है तो हमको और ज्यादा लोन एमएसएमई सेक्टर को हम दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका डिजिटाइजेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, अब रिकॉर्ड आपके पास हो जाते हैं, आप देन लोन देना आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो यही चीज सबसे

0: से अच्छा हुआ है एसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि पहले ये लोग का बीच जो पेपर्स था वो फॉर्मलाइज नहीं था। अभी फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इनका बैंकिंग सेक्टर में इससे जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक छोटा सा चीज में इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए बोलना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए आपने सुना है कि बीच बीच में एक खबर आते हैं कि इसका जो रिकवरी हुआ है बहुत कम हुआ है, इसका रिकवरी और होना चाहिए था। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसमें एक बात आपको मानना चाहिए कि बीच में जब इंसॉल्वेंसी कोर्ट का दो फेज है, पैंडेमिक का पहले, पैंडेमिक के बाद। पैंडेमिक का पहले क्या हो रहा था कि पैंडेमिक का पहले उन्हें कोर्ट पे बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, लेकिन पैंडेमिक के बाद शायद 1-2 साल आपको पता है कि कोर्ट बंद था, काम नहीं हुआ, उसके लिए काफी सारे आपको बैकलॉग आ गया। तो हो सकता है कि इसमें हम और कुछ रिफॉर्म करें, और कुछ सुधार लेके आए, और ज्यादा कोर्ट्स बनाए, और थोड़ा जैसे मेकानिज्म है थोड़ा ठीक से देखे, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आनी है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई जब लॉ आते हैं उस लॉ में अमेंडमेंट्स लेके उसको हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हो सकता है मैं फ्यूचर में इसका हम इम्प्रूवमेंट में इसका कुछ स्कोप है, बट ऑन द होल ये अच्छी रिफॉर्म्स है। एंड हमको जानना, आपको मानना पड़ेंगे कि इस रिफॉर्म्स के लिए जो कंपनी का कंट्रोल आपका हाथों में होता है वो चला जाते हैं दूसरा किसी का हाथों में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये रिजोल्यूशन कोर्ट का।
1: इससे पहले कि मैं IBBI यानी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एनक्लैट और एनसीएलटी की चर्चा करूं, मैं आपसे एक और विषय में बात करना चाहती हूं जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। यानी कि एक तरफ तो हमारे बैंक्स थे जो कि स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और दूसरी तरफ थी हमारी कंपनीज जो कि सेम समस्या से गुजर रही थी। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इसको एक साथ एड्रेस करना कितना जरूरी था, बजाय इसके कि दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग समस्याओं का समाधान होता। यानी एक तरफ हम बैंकों का समाधान ढूंढते और दूसरी तरफ हम कंपनियों के खराब हुए लोन्स का समाधान ढूंढते।
0: देखिए, ये दोनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए, बैंक्स ने रिकॉग्नाइज किया, लोन रिकवरी चालू हो गया, उसके साथ काफी सारे सेटलमेंट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, मतलब आप टेबल में आ जाओ, आप कितना पैसा आप दे सकते हैं उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट होगा। तो क्या हुआ उसके बाद, ये सेटलमेंट चालू हुआ कंपनीज का, कंपनीज का बैलेंस शीट का भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। आपको, आप सुनने में आश्चर्य हो जाएंगे, 2020 से 2026 तक आप देखें कंपनीज को जो मार्केट से जो पैसा उठा है 15-16 लाख करोड़, उनका ओवरऑल कैपिटल उन्होंने मार्केट से उठाया है। और अगर आपका कैश भी देखे, उसका कैश भी उसका काफी सारा अच्छा, 14 से 15 लाख करोड़ कैश है। तो उसका मतलब कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में काफी क्लीन हो गया। उसका पैंडेमिक के टाइम में इंटरेस्ट रेट काफी नीचे चला गया, इसके लिए जो पुराना लोन उन्होंने लिया था वो सारे लोन उन्होंने रिपेमेंट कर दिया। उसका बैलेंस शीट में अभी कोई लेवरेज नहीं है। तो एक तरफ बैंक का बैलेंस शीट इज परफेक्टली फाइन नाउ, कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट है वो काफी अच्छा अभी है, क्योंकि बैंक का कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट में अभी कैश काफी हैंड में है, कैश इन हैंड अच्छे में है, और पैसा भी उठा सकते हैं, और उसका रेटिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हमारा ट्वाइन बैलेंस शीट के था, दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट।
1: हमारे श्रोताओं के लिए एक बार आप अगर संक्षिप्त में एवरग्रीनिंग का मतलब समझा सकें तो शायद हमें आगे की बात समझने में और आसानी होगी।
0: एवरग्रीन का जो प्रॉब्लम था, पहले ये बात होते थे कि पहले जब ग्लोबल क्राइसिस के बाद 2009-10 में क्या होते थे कि एक लोन अगर खराब हो गया, उसमें के उसी लोन को आप ठीक करने के लिए और लोन उस कंपनी ले रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका मेवर ग्रीनिंग बोलते हैं। जब आपको पता है कि ये लोन वो वापस नहीं कर पाएंगे, आप उसको और एक दूसरा लोन देंगे उसी लोन को वापस करने के लिए, तो उसका मेवर ग्रीनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए AQR रिव्यू हुआ था, देखना चाहते थे RBI गवर्नमेंट की कितना सारे स्ट्रेस बैंक के ऊपर है। ये अच्छा है कि वो हम चीज निकल लिया। बैंकिंग सेक्टर का आज जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मैं आपको दोबारा बार बार बोलना चाहता हूँ, राजा रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ है, और इसी आगे चलते भी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे ही रहेगा।
1: जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि समस्या के तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया समस्या को पहचानना, जो कि एसेट क्वालिटी रिव्यू ने किया। दूसरा हिस्सा हो गया समस्या का समाधान ढूंढना, और तीसरा हो गया उसे इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम देखें तो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: 2016-17 में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी सारे लोन वेवर चलते थे। अगर कोई भी आ गया, बैंक्स कोई बोलते थे हम गवर्नमेंट पावर में आएंगे तो हमको लोन वेव कर देंगे। इसके लिए क्या होता है कि जो पहले जो लोन वापस कर रहे थे वो भी बंद कर देते। तो तो वो लोन वाइवर खत्म हो गया, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्रीकल्चर जो फार्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उसके लिए आप उनको केवाईसी उसका केसीसी नॉर्म्स हो गया और लोन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया, तो इसमें भी काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है एलाइड सेक्टर के लिए काफी सारे।

0: कैसे हो रहा है, बट इसके अगेंस्ट में सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स भी बैठे हुए हैं।
1: अब वक्त आ गया है कि हम हमारी चर्चा को बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की तरफ लेकर चलें। जब हम बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की बात करते हैं तो इसमें दो अहम कदम उठाए गए थे। पहला था बैंक रिकैपिटलाइजेशन और दूसरा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करना। पहले हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो रिकैपिटलाइजेशन जो है वो कितना अहम कदम था ताकि पुराने नुकसानों को आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सके।
0: नहीं देखिए, रिकैपिटलाइजेशन तो करना था क्योंकि सेक्टर के लॉस था, और रिकैपिटलाइजेशन जब कैसे किया भी था, कोई इनोवेटिव उपाय से गवर्नमेंट ने किया था। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स था, तो उसके लिए क्या था, वो कैश न्यूट्रल था। उसके लिए क्या हुआ था, डेट बढ़े थे लेकिन फिजिकल डिफिसिट उसमें नहीं बढ़े थे। तो सबसे बड़ा पहले ये चीज है। तो उसपे आई थिंक ये मुझे इतना याद है, 3 लाख करोड़ का अराउंड रिकैपिटलाइजेशन हुआ था 1-2 साल में। तो सबसे बड़ा चीज वो था। दूसरा जो चीज था कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर उसमें बढ़ गया था। इसके लिए आगे चलते अगर गवर्नमेंट उसको स्टेक को नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी पता है कि वो थोड़ा सा दूसरा का बात है कि गवर्नमेंट IDBI बैंक को डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले बात है। रिकैपिटलाइजेशन तो होना था, रिकैपिटलाइजेशन हमने 3 ट्रिलियन किया था, लेकिन रिकैपिटलाइजेशन हमने कैसे किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से किया था। इसके लिए हमारा ये कैश न्यूट्रल था, उसका मतलब फिजिकल डेफिसिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारा डेट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। ये तो पहला बात है, और ये बहुत सक्सेसफुल भी था रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज। लेकिन उसके साथ, इसके साथ जो गवर्नमेंट ने किया है, जो मार्जेस, आपको पता है कि हमारा ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक 27 था, लेकिन आज का दिन मार्जर होकर ये 12 था। आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में अनाउंस किया कि एक बैंकिंग सेक्टर कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका रोल होगा कि बैंकिंग सेक्टर का रोड मैप देखने के लिए। इंडिया में एक डिबेट है, अगर आप इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में जो 4-5 लार्ज बैंक्स है, इंडिया में अभी काफी 12 लार्ज बैंक्स है। उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन GDP का 22% होता है। तो ये जो 27 से 12 हो गया, इसके लिए आपको क्या हो गया था कि कंसोलिडेशन हुआ। आगे चलते हमारा कोशिश है कि हमारा बैंक दुनिया के सबसे अच्छा बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अगर आप देखें वो बहुत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स है, और इसका SBI फॉर एग्जाम्पल, उसका रैंकिंग भी काफी अच्छे है अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स देखें। और आगे चलते हमारा यही कोशिश रहेगा, ये कंसोलिडेशन जो हमने 27 से 12 तक लेके आए, अगर हम और कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, दुनिया का जो सबसे अच्छी बैंक्स है उसमें हमें इंडिया का बैंक्स का भी रहेगा। तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल अगर ऐसे हम चलते रहे तो अगले 4-5 साल से हम उसी तरफ जा सकते हैं।
1: डॉक्टर घोष, क्या मर्जर का मतलब हमेशा मजबूती और एफिशिएंसी होता है या इसका एक दूसरा पहलू भी है?
0: नहीं देखिए, इसका पहले तो बहुत सारे है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको एफिशिएंसी, एंड इसको हम इकोनॉमिक स्केल इकोनॉमीज बोलते हैं। जो काम आप समझ रहे हैं को एक बैंक कर रहे हैं, अगर दोनों बैंक एक साथ जुड़ जाए उसमें स्केल इकोनॉमीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक एक एरिया में अच्छा है, दूसरा बैंक दूसरा जगह में अच्छा कर रहे हैं, प्रेजेंस दूसरा तरफ है, तो अगर दोनों बैंक को आप जोड़ दे उसका प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा, और इसको हम स्केल इकोनॉमी बोलते हैं। और उसपे क्या होता है, उसपे खर्चा भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर सारे बैंक्स एक साथ आता है तो डिजिटाइजेशन के चक्कर में उसका खर्चा भी कम होता है। तो खर्चा कम होता है, स्केल इकोनॉमीज इंप्रूव होता है, जो अलग अलग मार्केट्स होता है कंसोलिडेट हो जाते हैं, और विजन उसका एक साथ बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बैंकिंग कंसोलिडेशन एक अहम मुद्दा है, तो फ्यूचर में भी ये शायद होगा। और इंडिया को, जो मैं आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज हमको करना है कि बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमको मर्जर का जरूरत है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बैंक्स तभी हो सकते हैं जब बहुत सारे बैंक्स एक साथ जुड़ जाए।
1: जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी चर्चा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम इन सब रिफॉर्म्स को एक बड़े रूप में देखें, इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इनके पीछे जो व्यापक विजन था वो क्या था हमारी सरकार का, हमारी लीडरशिप का, और साथ ही साथ हमारी आगे की ग्रोथ स्टोरी, हमारे बैंकिंग सेक्टर की आगे की यात्रा किस तरह की दिख रही है?
0: बैंकिंग सेक्टर, अगर आप मुझे देखें, बैंकिंग सेक्टर का फंडामेंटल साउंड है, स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, अंडर राइटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंक डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज में बहुत आगे हो चुका है,

0: बैंक्स का आज आप देखें एक फिजिकल एक्सपीरियंस है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 20% तक जा रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ भी आप ज्यादा हो गई एफसीएल में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का। आपको पता है कि एफसीएल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हमने 140 US बिलियन की ज्यादा मोबिलाइज किया। बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेंथ है और सारे चीज मिला के मुझे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो विजन है वो 2047 तक एक रोड मैप है, जिसे रोड मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा बैंकिंग सेक्टर की कस्टमर फास्ट। इसके लिए इसमें अभी जो डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, एआई का यूज करके बैंकिंग सेक्टर को उसका बेस को बढ़ा रहे हैं। और चैलेंजेस तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग सेक्टर को रहेगा डिजिटाइजेशन का युग होगा साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए बैंक्स को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड विल कंटिन्यूअसली हैपन और फ्यूचर बैंक्स का इंडिया में काफी अच्छा होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में एक आई थिंक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बोला था, शायद बिल गेट्स बोले थे कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट बैंक्स बट इज अबाउट बैंकिंग। तो बेसिकली बैंक्स का सर्विसेज के लिए एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड। ये जो करंट जेनरेशन था 10 साल 20 साल में हो सकता है बैंक्स में बैंक्स के तरफ लोग और ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली बैंक को सेवी होना है और ये एक प्रोसेस जो चलते रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारत का ग्रोथ स्टोरी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर होश हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें बताए और बहुत ही सफाई से हमें ये समझाया कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे मजबूती की ओर बढ़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका रही। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे थे 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं उत्सव फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में वसंत देव का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत फिल्म तपस्या से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज़ है, बोल हैं एमजी हशमत के और संगीत रविंद्र जैन का।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरें, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
4: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
5: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
3: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
5: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
3: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
7: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
8: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज कर

0: बताएं, ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
3: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
2: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
4: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
5: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
6: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें DBT के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपए मिलता है।
4: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। DBT ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: हर खबर से जुड़े रहिए जहां भी हो, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
8: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
2: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Defense Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defense preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Keralam and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400 meter relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. And now the news in detail.

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है प्रोग्राम उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

मेरी तसानीफ में कुए मलामत दुनिया के किनारे से सना और तरह की और कुल्यात अंजुम रुमानी शामिल हैं। उनकी शख्सियत का इम्तिजाज एक तरफ इल्म व मंतिक और दूसरी तरफ शेर व एहसास उनकी शेरी मिजाज को एक मुनफरिद रंग अता करता है। शायद इसीलिए उनके यहाँ जिंदगी को देखने का अंदाज महज जज्बाती नहीं बल्कि गौर व फिक्र है। इंसानों के दरमियान रहते हुए भी इंसान के अंदर एक अलग दुनिया आबाद होती है और कभी यही दाखिली दुनिया उसे अपने अंदर इर्द गिर्द से एक फासले का एहसास दिलाती है। अंजुम रुमानी ने इस कैफियत को इस तरह इस शेर में सादगी के साथ कहा है। कुछ अजनबी से लोग थे, कुछ अजनबी से हम, दुनिया में ना हो पाए शनासा किसी से हम। ये शेर अंजुम रुमानी के उस शेरी मिजाज की अक्कासी करता है जहाँ जाती एहसास एक वसी इंसानी तजर्बे में ढल जाता है। यही वो मकाम है जहाँ अंजुम रुमानी की शायरी महज शायर की बात नहीं रहती बल्कि हमारी अपनी जिंदगी से हम कलाम होने लगती है। उनके फिक्र फन का यही पहलू आज की इस अदबी महफिल का नुक्ता आगाज है। सामीन, अब हम इस प्रोग्राम की पहली पेशकश की जानिब रुख करते हैं जहां हम सुनेंगे गुलकारा सविता सेठी की आवाज में ये खूबसूरत गजल। समाप्त कीजिए।

दोस्तों, अभी आप सविता सेठी की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे। अंजुम रुमानी की शायरी में ज़िंदगी का ये एहसास सिर्फ ज़ाती तन्हाई या दाखली कैफियत तक महदूद नहीं रहता, ये अपने इर्द गिर्द की दुनिया तक फैल जाता है। वो अपने अहद के हालात, माशरती रवैयों और बदलते हुए माहौल को भी एक हसास शायर की निगाह से देखते हैं। उनके यहाँ मौसम सिर्फ मौसम नहीं रहता, हवा सिर्फ हवा नहीं रहती, ये सब इंसानी तजर्बे और फिक्र की अलामतें बन जाते हैं। इसलिए उनकी शायरी पढ़ते हुए महसूस होता है कि शायर अपने जमाने से आंखें नहीं चुराता, बल्कि उसे देखता, परखता और अपने मखसूस शायरी अंदाज में हमारे सामने रखता है। उनकी एक गजल में मौसम और हवा के इस्तियारे के जरिए जिंदगी की इसी कैफियत को कुछ उन्होंने इस तरह समेटा है। मौसम का आह नाला से अंदाजा कीजिए, ताज़ा हवा पे बनना दरवाज़ा कीजिए। कितनी खूबसूरत बात है कि ताज़ा हवा के लिए दरवाज़ा खुला रखने की बात करते हुए शायर जिंदगी के इम्कानात को भी खुला रखने का एहसास पैदा कर देता है। अंजुम रुमानी के यहाँ यही शेरी अंदाज बार बार सामने आता है कि एक मामूली सा मंजर फिक्री वसत इख्तियार कर लेता है और अपने अहद की परेशानियों से भी वाकिफ है, मगर उनकी शायरी सिर्फ शिकवे पर ख़त्म नहीं होती, उसमें बिखरी हुई चीज़ों को समेटने की ख्वाहिश भी है। इसीलिए वो इस गज़ल में कुछ यूं कहते हैं, या लब पे लाइए ना परेशानियों की बात, या जमा बैठ कर कभी शिराजा कीजिए। ये लहजा अंजुम रुमानी के फिक्रोफन की एक नुमाया खसूसियत है। वो जिंदगी के दुख से आंखें नहीं चुराते, उनके यहाँ एहसास के साथ शऊर मौजूद है और यही शऊर उनकी शायरी को एक खास फिक्री गहराई अता करता है। इसी वजह से उनके अशार पढ़ते हुए हमें सिर्फ शायर की कैफियत नहीं मिलती, अपने माहौल को देखने का एक नया जाविया भी मिलता है। जिंदगी अगर बिखरती है तो उसे समझने की कोशिश भी जरूरी है, यही अंजुम रुमानी के शायरी सफर की एक खूबसूरत जहत है। सामीन, इस प्रोग्राम की अगली पेशकश गुलुकारा चित्रा सिंह की खूबसूरत आवाज में और कलाम है रईस अख्तर का, समाप्त कीजिए।

दोस्तों, अभी आप गुलकारा चित्रा सिंह की खूबसूरत आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे और कलाम था रईस अख्तर का। अपने मौजू पर हम वापस आते हैं और बात करते हैं अंजुम रमानी की। उनके यहाँ फिक्र फन का दायरा यहाँ आकर और वसी हो जाता है, जब शायर होना सिर्फ अपने एहसासात को लफ्ज़ देने का काम नहीं रहता, बल्कि अपने ज़माने के बदलते हुए चेहरों को देखना और उनके अंदर छिपी तब्दीली को महसूस करना भी शामिल हो जाता है। मुआशरा बदलता है तो इंसान के रवैये बदलते हैं, जिंदगी के अंदाज भी बदलते हैं और तरजीहात भी बदल जाती हैं। अंजुम रमानी ने अपने अहद की इस तब्दीली को भी अपनी शायरी में महसूस किया। उनके यहाँ जमाना महज एक तारीखी मरहला नहीं, बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जिसमें इंसान के रवैये, चाल ढाल और जिंदगी के तरीके तक तब्दील होते दिखाई देते हैं। जैसा कि उनका ये शेर, नई जिंदगी के नए मकरूफन

नए आदमी की नई चाल ढाल। यही बदलती हुई जिंदगी शायर को अपने जमाने के साथ मुकालमा करने पर मजबूर करती है। अंजुम रुमानी अपने माहौल से बेखबर नहीं है, तब्दीली को देखते हैं और इसके असरात को महसूस भी करते हैं। उनकी शायरी में सिर्फ मुशाहिदा नहीं, एक दाखिली सवाल भी मौजूद है। बदलती हुई दुनिया में इंसान खुद कहाँ खड़ा है, उसके असूल, उसकी जिम्मेदारियाँ और उसके अमल की अहमियत क्या रह जाती है, यही सवाल उनके लहजे को महज बयान से फिक्र की तरफ ले जाता है। वो अपने जमाने के रवैयों को देखते हुए अमल की जरूरत की तरफ भी इशारा करते हैं और अपने शेर में कहते हैं, जरूरत थी कि जो मैदान में निकले सर बकफ निकले, मगर हम हैं कि निकले भी तो लेकर चंगो दफ निकले। अंजुम रुमानी के यहाँ इस तरह के अशार उनकी शेरी मिजाज की एक अहम जहत सामने लाते हैं। वो अपने अहद को सिर्फ बाहर से नहीं देखते, उसमें मौजूद इंसान को भी सवाल के दायरे में लाते हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी में फिक्र एक खुश्क फलसफियाना बहस नहीं बनती, वो जिंदगी के तजर्बे से पैदा होती है और शेर के रास्ते से हमारे सामने आती है। अंजुम रुमानी की शायरी का हुस्न यही है कि वो हमें किसी एक नतीजे तक पहुंचाने की बजाय सोचने की जगह फराहम करती है। उनके यहाँ रिवायत भी है, जदीद हसीयत भी है, जाती एहसास भी है और इज्तिमाही शऊर भी, और यही इम्तिजाज उनके फन को एक ऐसी अदबी शनाख्त देता है जिसमें शायर अपने अहद का गवाह भी है और इससे सवाल करने वाला भी। सामईन, अब इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गुलकार तलत अजीज और पीनाज मसानी की आवाज में और कलाम है प्रभा माथुर का, ये खूबसूरत गजल समात फरमाइए।

दोस्तों अभी आप गुलूकार तलत अजीज और पीनाज मसानी की आवाज में गजल समाअत फरमा रहे थे और कलाम था प्रभा माथुर का। अंजुम रोमानी 13 अप्रैल 2001 को लाहौर में इंतकाल कर गए। अंजुम रोमानी को याद करना दरअसल उर्दू शायरी की उस रिवायत को याद करना है जहां शेर जिंदगी से अलग नहीं जिंदगी की ही एक गहरी आवाज बन जाता है। अंजुम रोमानी की शायरी के सफर को समेटते हुए ये कहना बेजा ना होगा कि उनके फिक्र फन में जिंदगी मुशाहिदा इंसानी एहसास अहद की आगाही और जबान का शेरी हुस्न एक साथ दिखाई देता है। वो उन शायरों में शामिल है जिनके यहाँ शेर सिर्फ कैफियत बयान नहीं करता बल्कि अपने अंदर एक सवाल भी रखता है। उनकी शायरी हमें अपने अंदर झांकने के साथ अपने इर्द गिर्द दुनिया को देखने का सलीका भी देती है। शायद यही वजह है कि अंजुम रोमानी का कलाम अपने जमाने की हदों से निकल कर आज भी कारी और सामे से रिश्ता कायम कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और तजावीज हमें जरूर अरसाल करें क्योंकि आपकी आवाज़ कहकशा की रोशनी है। हमारा पता नोट फरमाइए, उर्दू प्रोग्राम कहकशा, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। उर्दू प्रोग्राम कहकशा को बरोज मंगल रात 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरीन खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: हरियाणा के एक छोटे से शहर में जन्मी एक नन्ही लड़की को घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती। निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी।

0: निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड, और यही नहीं उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने एक स्वर्ण और एक रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
2: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days and something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support, got her back into the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
0: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी, और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़ जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया, और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया, और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे। तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया। 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका, लेकिन 4था स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें, तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में। यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
3: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल।

0: recap the action from the morning session, the Indian boxing contingent put on explosive performances, locking in three major medal outcomes. In the women's 65 kg semi-final, Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
1: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी तीन धनुर्धर चिड़िया की आंख यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम की तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
1: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है, नए स्टार्स पैदा, महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गईं। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पुलसी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
3: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज़्बेकिस्तान के सरगेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और

0: के सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1-7-5 से मैच अपने नाम किया, जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2-6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के यूडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भांबरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों सेट हार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
2: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज्ड द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस्ड 2 सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4-point लीड मिडवे थ्रू द सेट। 2 सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट देयर होप्स अलाइव बाय taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tiebreak to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
0: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला केनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगू कैसी रही जानते हैं अभिनव से।
2: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
0: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्काटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने 7वें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा

0: भवन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ती सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया। किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही हैं मुदिता।
2: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप, आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
0: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगा पूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
3: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
1: कल कुश्ती आरंभ होगी, जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में सरफरोश फिल्म का बहुत ही प्यारी सी गज़ल, लिखा है निदा फाजली ने और संगीत जतन ललित का।

आपकी रेडियो सेट पर आ रही है उमराव जान फिल्म की बहुत ही खूबसूरत गज़ल तलत अज़ीज़ की आवाज़ में। शायर हैं शहरयार और धुन बनाई है खयाम ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि की 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए शिराज हुसैन खान का सारंगी वादन। राग है मेघ। तबले पर संगत की है रामेंद्र सिंह सोलंकी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे शिराज हुसैन खान का सारंगी वादन। राग था मेघ, तबले पर संगत की थी रामेंद्र सिंह सोलंकी ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
4: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।

0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि ये खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amid challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026, in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, उड़द और मसूर एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी।
3: इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर दैट फार्मर्स गेट अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। वी नीड टू कनेक्ट फार्मर्स विद द